मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55:30 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। नमस्ते लखनऊ की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं इस प्यारी सी सुबह में कहीं मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं, कहीं चाय की प्यालियों से उठती भाप दिन की शुरुआत का एहसास करा रही है। वास्तव में सुबह का ये समय केवल एक दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से जगाने और जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी देता है। दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को हैं और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। समाचारों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का नमस्ते लखनऊ में। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आज की चर्चा में डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी दे रहे हैं उन्नत मत्स्य पालन की।
1: शुभ प्रभात। विविधीकृत खेती की बात जब हम करते हैं तो पशुपालन और मत्स्य पालन के साथ साथ कुक्कुट पालन को विशेष महत्व देते हैं, लेकिन मत्स्य पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो वर्ष भर हमें आय देता है। मछली पालन करने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि तालाब का निर्माण, वहाँ की मिट्टी की स्थिति और मिट्टी के अनुसार ही उसकी लवणीयता या क्षारीयता की जांच करा करके करना बेहतर होता है, जिससे कि उत्पादन मत्स्य का हमें बेहतर मिल सके। मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलचर जीव है, यह हम सभी जानते ही जानते हैं। जलीय पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पानी में मछली नहीं हो तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं है, एक ऐसी सोच होती है। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक माना गया है। विभिन्न जल स्रोतों में, चाहे तीव्र अथवा मंद गति से प्रवाहित होने वाली नदियां हों या फिर प्राकृतिक झीलें, तालाब या मानव निर्मित बड़े या मध्यम आकार के जलाशय, सभी के पर्यावरण का यदि सूक्ष्म अध्ययन किया जाए तो हम जरूर पाएंगे कि पानी और मछली दोनों एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। पर्यावरण को संतुलित रखने में मछली की विशेष उपयोगिता तो है ही है, साथ ही साथ हमारी आय का साधन बेहतर बनाता है यह। मछली एक उच्च कोटि का खाद्य पदार्थ है। इसके उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन विभाग निरंतर प्रयत्नशील भी है। उत्तर प्रदेश के अपने ग्रामीण अंचलों में विभिन्न प्रकार के तालाब, पोखरे और जल प्रणालियां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसमें वैज्ञानिक रूप से मत्स्य पालन अपनाकर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करके लोगों को पोषक और संतुलित आहार उपलब्ध तो कराया ही जा सकता है, अतिरिक्त आय भी ली जा सकती है। मत्स्य पालन के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसके पास अपना निजी तालाब हो अथवा निजी भूमि या पट्टे का तालाब, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में मत्स्य पालन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके पास अपनी निजी भूमि या तालाब हो, वह उस भूमि संबंधी खसरा खतौनी लेकर जनपदीय कार्यालय में संपर्क करें। पट्टे के तालाब पर मत्स्य पालन के लिए पट्टा निर्गमन प्रमाण पत्र के साथ जनपदीय कार्यालय संपर्क किया जा सकता है। तालाबों, प्रस्तावित तालाबों की भूमि का मृदा जल के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में निःशुल्क किया जाता है, इसलिए जरा सा भी हिचकिचाहट न रखें बल्कि उसकी जांच कराएं और इसके विधिवत जानकारी इच्छुक व्यक्ति को दी भी जाती है, जैसे अन्य तरह की मिट्टी जाँच होती है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी द्वारा भूमि या तालाब का सर्वेक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। मृदा जल के परीक्षणों उपरांत कोई कमी पाई जाती है तो उसका उपचार निदान मत्स्य पालन हेतु इच्छुक जो व्यक्ति हैं उनको बताया भी जाता है विभाग द्वारा। यदि भूमि या तालाब मत्स्य पालन योग्य है तो जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर संस्तुति सहित प्रोजेक्ट बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भी भेजा जाता है, जिससे वित्तीय स्थिति के बारे में ज्यादा सोचना न पड़े। बैंक स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुदान की राशि बैंक को भेज दी जाती है। मत्स्य पालन की तकनीकी जानकारी एवं मत्स्य पालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण ब्लॉक या तहसील स्तर पर क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी जो होते हैं उनके, या फिर जनपदीय के साथ साथ मंडलीय कार्यालय से संपर्क कर भी प्राप्त किया जा सकता है। मत्स्य बीज की आपूर्ति मत्स्य विभाग, मत्स्य विकास निगम द्वारा किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति या जो पालक हैं, मत्स्य पालक, उनके द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर कृषि मेलों, प्रदर्शनियों में विभागीय योजनाओं एवं मत्स्य पालकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी दी जाती है, इसलिए सचेष्ट रहें। कहीं आसपास इस तरह के मेले या प्रदर्शनी लग रहे हैं तो उसमें हिस्सा लें, बेहतर जानकारी भी मिलेगी और जो छूट या फिर अन्य सरकारी सुविधाएं हैं त्वरित रूप से वहां निस्तारित भी की जाती हैं। मत्स्य विपणन के विषय में जानकारी संबंधित जनपदीय कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको आपको अपने जहन में रखना चाहिए। उपयुक्त तालाब का चुनाव करना चाहिए। मई जून के महीने में विशेष रूप से यह कार्य संपादित कर लेना चाहिए। नए तालाब के निर्माण के लिए

0: उपयुक्त जल स्थल का चयन करने के पश्चात मिट्टी पानी की जांच भी कराएं। तालाब सुधार निर्माण के लिए भी मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से तकनीकी व आर्थिक सहयोग लेते हुए तालाब सुधार का निर्माण या फिर कहें कि उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। अवांछनीय जलीय वनस्पतियों की सफाई के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं। अगर नहीं है तो भी आप स्वतः इसे करें, बेहतर स्थिति बनती है। 1 मीटर पानी की गहराई वाले 1 हेक्टेयर के तालाब में 25 क्विंटल महुआ की खली के प्रयोग के द्वारा या फिर बार बार जाल चलवाकर अवांछनीय मछलियों की निकासी भी कर लेना चाहिए इसी समय।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी से जानकारी उन्नत मत्स्य पालन के विषय में। इस जानकारी के साथ ही अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुने आज का सुविचार मधुर वाणी।
2: मानव की सबसे बड़ी विशेषता है मधुर संभाषण। हमें वाणी मिली है, हम इसका निरंतर उपयोग तो करते हैं किंतु इसके महत्व को नहीं समझते हैं, इसका यथार्थ मूल्यांकन नहीं करते। हमारे प्रबल पुण्यों का उदय है जिसे हमें वाणी और भाषा मिली है, शब्द संपदा मिली है जिसके बल पर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नीतिकारों ने लिखा है, संसार के कड़वे वृक्ष में दो ही फल अमृत के समान है, वो है सुभाषित मधुर संभाषण और सुसंगति। जुबान प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसे सार्थकता प्रदान करना। वाणी की मिठास ही वाणी की सार्थकता है। वाणी की मधुरता पूरे वातावरण में समरसता घोल देती है। इसीलिए कहा गया है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजते वचन कठोर। प्रेम के लिए वचनों की मधुरता अनिवार्य है, वचनों की मधुरता प्रेम का साम्राज्य स्थापित करती है तो वाणी की कड़वाहट शांत वातावरण में भी कड़वाहट खोल देती है। महाभारत भी वचनों के कारण हुआ था। द्रौपदी के ये वचन कि अंधों के अंधे ही होते हैं दुर्योधन के हृदय में चुभ गए, परिणाम महाभारत हुआ। जिह्वा में अमृत भी है और जहर भी है। वाणी में ऐसी सामर्थ्य है कि वो पानी में आग लगा थे। विद्वानों का मानना है कि जिह्वा में अमृत बसे विष भी जिसके पास, एक बोले तो लाख ले इकते लाख विनाश। हमें अपनी वाणी पर सदैव अंकुश रखना चाहिए। संत कहते हैं, बोलो पर बोलने से पूर्व विचार कर लो। जो व्यक्ति बोलने से पूर्व विचार करता है उसे फिर कभी पुनर्विचार नहीं करना पड़ता है। जो विचार करके करता है वो शूर है और जो करके विचारता है वो घूर है। इसलिए कहते हैं, वाणी का घाव वाण के घाव से भी गहरा होता है। वाण का घाव भर सकता है लेकिन वाणी का घाव कभी भी नहीं भर सकता। जीव की क्षमता को अनर्गल बातें कहने में नष्ट ना करो, उससे वो कहो जिससे तुम्हारा गौरव और सुनने वालों का भविष्य बने। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, कर्ण द्वार ते संचरे साले सकल शरीर। जितना बने विनम्र बनो, सरल व्यवहार रखो और अपनी जिह्वा में हमेशा लचीलापन बनाए रखो। आखिर हमारे मुख में कड़वाहट आती कहाँ से है, ये विचारणीय प्रश्न है। 5 कारणों से आदमी अप्रशस्त वचनों का प्रयोग करता है, क्रोध, लोभ, भय, मजाक और आदत। ये 5 कारण हैं जिनके कारण आदमी अपने मुख से वो शब्द निकाल देता है जिसे उसे कभी नहीं निकालना चाहिए। हम अपनी वाणी में मधुरता लाने का प्रयत्न करें क्योंकि वाणी से ही व्यक्तित्व की पहचान होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक मधुर संभाषी होगा वो व्यक्ति उतना ही अधिक आदरणीय और प्रतिष्ठित माना जाता है। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे।
1: मधुर वाणी, अभी आप सुन रहे थे आज का ये सुविचार। वचन स्वर था राकेश खरे का। एवं आलेख था बहादुर सिंह गौर का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता और मंगलकारी भगवान श्री गणेश की आराधना के बिना कोई शुभ कार्य पूर्ण ही नहीं हो सकता। तो आइए बिना देर किए हम भी कार्यक्रम आराधना का शुभारंभ करते हैं गणपति बप्पा की वंदना से और सुनते हैं ये भक्तिमय भजन।

गणेश जी की वंदना के साथ ही आरंभ हो चुकी है आज की आराधना। श्रोताओं, आज मंगलवार है और आइए अब चलते हैं महाबली बजरंग बली की शरण में, जिनके स्मरण मात्र से ही मन में शक्ति, साहस और विश्वास का संचार हो जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित ये भजन।

जी हाँ श्रोताओं, हनुमान जी वो नाम है जिनसे भय मिटता है, दुख दूर होते हैं और जीवन में नया उत्साह भर जाता है। उनकी भक्ति, उनका पराक्रम और उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा है। आइए इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं एक और हनुमान भजन।

बजरंग बली सबका कल्याण करें। श्रोताओं, मर्यादा, करुणा और धर्म के प्रतीक प्रभु श्री राम का नाम मन को शांति और जीवन को नई दिशा देता है। आइए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं प्रभु श्री राम को समर्पित ये मधुर भजन, जो उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं।

ईश्वर निराकार हैं, वो हर कण में विद्यमान हैं। उनकी भक्ति किसी रूप या नाम की सीमा में नहीं बंधती। उनकी भक्ति और कृपा के बिना जीवन का एक पल भी काटना असंभव है। इसलिए श्रोताओं, स्वयं को उन्हें सौंप दीजिए, वे हर कदम पर आपका कल्याण ही करेंगे।

श्रोताओं, इसी भक्तिमय भावना के साथ अब कार्यक्रम आराधना को यहीं विराम देने का समय है। प्रभु की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखे। अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भक्ति में इस पावन बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 169। आज का प्रसंग है गहन वन में जाते समय रास्ते में श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रति वनवासियों का अगाध प्रेम और स्नेह का वर्णन।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री राम ने उन्हें अपने घर लौट जाने को सहमत किया और आप लक्ष्मण तथा सीता समेत गहन वन की ओर चले। राह में उन्हें अनेक वनवासी मिलते हैं, जिन्हें दोनों भाइयों के रूप स्वरूप में राज चिन्ह देखकर बड़ा सोच होता है। ऐसे राजसी लक्षणों वाले कुमार तापस वेश में वन में पैदल चले जा रहे हैं, ये देख वनवासियों को ज्योतिष शास्त्र भी असत्य प्रतीत होता है। वनवासी उन्हें रास्ता दिखाने बताने को अनायास ही प्रेरित हो जाते हैं। आज्ञा चाहते हैं कि जहां तक उन्हें जाना है वहां तक पहुंचाकर उन्हें प्रणाम कर वे वापस लौट आएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। कृपा सिंधु उनसे विनय भरे वचन बोलकर उन्हें लौटा देते हैं, किंतु वन में यहाँ वहाँ बसे गांव और पूर्वों के बालक, वृद्ध, नर नारी, किशोर किशोरियाँ बार बार उनके दर्शनों को दौड़ते आते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता कर अपना प्रेम दर्शाते थकते नहीं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी कविता कृष्णमूर्ति और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिम एशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां संबोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरन्तर प्रयासैः भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात आरभ्य संयुक्तारबामीरात नीदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड् दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पंच देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्री मोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमंत्री शुक्रवासरे नीदरलैंड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2000 वर्षे स्वान्तिम यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमंत्रिणः नीदरलैंड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामि यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असम राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असम राज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां

धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं त्रिस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में। प्रातः के 7 बज रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। आज की चर्चा में नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं औषधीय गुणों से भरपूर बेल के विषय में। आइए हम सब सुने।
1: नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे फल की बात करने जा रहे हैं जिसे आयुर्वेद में वर्षों से एक औषधीय फल माना गया है। गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाला, पेट को आराम देने वाला और पूरे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने वाला ये फल है बेल। बेल का पेड़ भारतीय संस्कृति में जितना पूजनीय है उतना ही इसके फल का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। गर्मी के मौसम में जब शरीर लू से तपने लगता है, प्यास बुझती नहीं और पेट की समस्याएं सताने लगती हैं, तब बेल शरबत की एक ठंडी कटोरी जैसे जीवनदायिनी प्रतीत होती है। बेल का गूदा गाढ़ा होता है, स्वाद में कुछ खट्टा मीठा और सुगंध ऐसी कि ताजगी का एहसास दे। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये प्राकृतिक रूप से ठंडक देने वाला फल है और शरीर की गर्मी को संतुलित करता है। आयुर्वेद में बेल को त्रिदोष नाशक माना गया है, यानी ये वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों को संतुलित करने में सहायक होता है। ये विशेष रूप से पाचन तंत्र के लिए अमृत समान है। जिन लोगों को बार बार दस्त, पेचिश या IBS जैसी आंतों से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उनके लिए बेल अत्यंत उपयोगी है। इसका सेवन आंतों को मजबूत करता है, मल को बांधता है और पाचन क्रिया को संतुलित रखता है। बेल का गूदा जब पानी में मिलाकर छाना जाता है और उसमें गुड़ या शहद मिलाकर पिया जाता है तो ये शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और आंतरिक सूजन को भी कम करता है। बेल के सेवन से गैस, एसिडिटी, अपच जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है। ये पेट की भीतरी परत को सुरक्षा प्रदान करता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। विशेष बात ये है कि बेल के फल में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व आंतों में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। यही कारण है कि पुराने समय में गर्मियों में घर घर में बेल का शरबत बनता था, स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी। बेल का प्रभाव केवल पेट तक ही सीमित नहीं है, इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करने में सहायक होते हैं। ये लिवर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और ये भी देखा गया है कि बेल लिवर डिटॉक्स में भी मददगार है। जो लोग भारी या तैलीय भोजन का सेवन करते हैं उनके लिए बेल एक संतुलन बनाने का काम करता है। ये शरीर की थकावट को दूर कर ऊर्जा प्रदान करता है। गर्मियों में लू से बचाव के लिए बेल विशेष रूप से उपयोगी है। जब शरीर अधिक तापमान में कमजोर होने लगता है और लू लगने की संभावना होती है तब बेल का शरबत एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है। ये शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखता है और साथ ही साथ थकान और चक्कर आने जैसी समस्याओं से राहत देता है। बेल की औषधीय महत्ता सिर्फ आयुर्वेद तक सीमित नहीं है बल्कि आधुनिक विज्ञान भी इसके गुणों की पुष्टि करता है। इसमें मौजूद टैनिन, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक यौगिक शरीर में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रभाव डालते हैं। बेल के पत्ते भी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और उनका उपयोग मधुमेह व श्वास संबंधी समस्याओं में लाभकारी माना जाता है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी चीज के साथ होता है, बेल का सेवन भी संतुलित मात्रा में करना जरूरी है। अधिक मात्रा में या पूरी तरह कच्चा बेल खाना कुछ लोगों के लिए कब्ज की समस्या बढ़ा सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह पका हुआ और छाना हुआ सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को पाचन से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं वे चिकित्सकीय सलाह के बाद ही इसका नियमित सेवन करें। बेल का मौसम कुछ ही महीनों का होता है लेकिन इसके फायदे साल भर याद रहते हैं। ये हमें प्रकृति की ओर से गर्मियों का एक अनमोल तोहफा

0: वह है एक ऐसा फल जो स्वाद, सेहत और संतुलन का मेल है। जब अगली बार आप बेल देखें तो इसे केवल ठंडा शरबत मानकर नजरअंदाज ना करें, बल्कि इसे शरीर और मन की शुद्धि का माध्यम समझें। श्रोताओं, आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमने जाना कि बेल केवल एक फल ही नहीं बल्कि गर्मियों में सेहत का रक्षक भी है। आइए इस मौसम में हम सब इस देसी और प्राकृतिक औषधि को अपनाएं और अपने शरीर को तरोताजा और स्वस्थ बनाए रखें। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: औषधीय गुणों से भरपूर बेल। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नीना सोनकर से ये जानकारी। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, और लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण आप सुनेंगे आज रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम में खेल समाचारों के साथ ही शरद श्रीवास्तव की वार्ता सुनिएगा आईपीएल खेलों का आर्थिक पक्ष। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समाध फरमाइएगा शेरी नशिस्त। शुरका होंगे अहमद नबी, मोहम्मद जलीलुद्दीन और डॉक्टर इसरार खान। आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे रूपाली श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:50 पर, और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। शहरी बहनों का कार्यक्रम अपराजिता होगा दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर कार्यक्रम सेवा, संवेदना और समर्पण, नर्सों को शत शत नमन। प्रेजेंटर होंगी स्नेहल श्रीवास्तव। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा सूर्य कुमार त्रिपाठी की वार्ता, विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण से सशक्तिकरण। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज विशाल सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुन सकेंगे। बातचीत का विषय रहेगा ग्रीष्मकालीन जुताई, कब, क्यों और कैसे। रात 8 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज आनंद लीजिएगा अनूप मणि त्रिपाठी के काव्य पाठ का। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे मेनका मिश्रा के गाए भजन। 9:30 पर अपनी पसंद के फिल्मी नगमे श्रोता सुन सकेंगे। कार्यक्रम होगा हेलो मेरी पसंद। रात्रि 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे अजय कुमार का ध्रुपद गायन, और अब से थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा अच्छे

संप्रेषण का महत्व और जानकारी के साथ मनोरंजन का खजाना लेकर आएगा कार्यक्रम आज सुबह प्रातः 7:31 पर। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

शब्दों में होती है वो ताकत जो रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। बात कहने का अंदाज अगर सलीकेदार हो तो हर दिल तक वो छोटी सी बात पहुंच जाती है। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और आपका स्वागत है कार्यक्रम विविधा में। दोस्तों, हम सब रोज बोलते हैं, सुनते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बात कहने का तरीका ही हमारी पहचान बन जाता है? कई बार एक छोटी सी मीठी बात बिगड़ी स्थिति को संभाल लेती है और कई बार सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो दूरी पैदा कर देती है। तो आज विविधा में हम बात करेंगे अच्छे संप्रेषण के महत्व की, यानी बेहतर संवाद और प्रभावशाली बातचीत की कला के बारे में। दोस्तों, संप्रेषण केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ये भावनाओं, विचारों और विश्वास का पुल होता है। जब हम किसी से मुस्कुराकर बात करते हैं, सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखते हैं तो रिश्तों में अपनापन बढ़ता है। यही अच्छा संप्रेषण है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग एक दूसरे के पास तो हैं, लेकिन दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये बात आपने भी महसूस की होगी और आप जानते हैं इसका एक बड़ा कारण है संवाद की कमी। कई बार हम सुनते कम हैं और जवाब देने की जल्दी हमें ज्यादा होती है, जबकि एक अच्छा श्रोता बनना भी प्रभावी संप्रेषण का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपने सुना ही होगा कि एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। आपने गौर भी किया होगा कि घर में, दफ्तर में या दोस्तों के बीच, समाज में जहां वाद अच्छा होता है ना, वहां विवाद कम होते हैं। एक परिवार में यदि लोग खुलकर अपनी बातें साझा करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तो संबंध और मजबूत बनते हैं। वहीं चुप्पी, गलतफहमियां और अधूरी बातें अक्सर दूरियों को बढ़ा देती हैं।

दोस्तों, अच्छा संप्रेषण केवल बोलना नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि कब, कहां और कैसे बोलना है। मीठी वाणी का असर हमेशा गहरा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते थे कि ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। यानी हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को सुकून दे और खुद हमारे मन को भी शांत रखे। आज के समय में संप्रेषण के तौर तरीके भी बदल गए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने दुनिया को बहुत करीब ला दिया है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी आई है। लोग आमने सामने कम और स्क्रीन पर ज्यादा समय बातचीत करने लगे हैं। कई बार संदेशों में भावनाएं ठीक से व्यक्त नहीं हो पाती और नतीजे

जो गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। इसलिए तकनीक के साथ संवेदनशीलता और समझदारी होना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, कार्यक्षेत्र में भी अच्छे संप्रेषण का बहुत महत्व है। किसी भी कार्यालय या संस्था में वही व्यक्ति अधिक सफल माना जाता है जो अपनी बात स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रख सके। आप जानते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास में भी अच्छे संप्रेषण की बहुत भूमिका होती है। अगर बच्चों को बचपन से खुलकर अपनी बात कहने, प्रश्न पूछने और दूसरों की बात ध्यान से सुनने की आदत सिखाई जाए ना, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर समाज में बेहतर नेतृत्वकर्ता बनते हैं। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो केवल बोलना नहीं जानता बल्कि सामने वाले के मन को समझना भी जानता हो। कभी कभी छोटे छोटे शब्द जैसे धन्यवाद, कृपया और माफ कीजिएगा, ये रिश्तों में बड़ी मिठास घोल देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम केवल अपनी बात कहने पर ही ध्यान ना दें बल्कि दूसरों को समझने की कला भी सीखें। जब संवाद सकारात्मक होता है तो जीवन आसान और रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। हमारे समाज में कई समस्याएं केवल इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। यदि संवाद खुला और सकारात्मक हो तो कई विवाद शुरुआत में ही खत्म हो सकते हैं। चाहे परिवार हो, समाज हो या देश, संवाद ही हर रिश्ते की बुनियाद है। तो आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम अपनी वाणी में मधुरता लाएंगे, दूसरों की बात धैर्य से सुनेंगे और हर संवाद को सकारात्मक बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अच्छे शब्द केवल कानों तक नहीं पहुंचते, वो सीधे दिलों में उतर जाते हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत विचार के साथ अब मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए आज के कार्यक्रम से अनुमति। फिर होगी किसी रोज आपसे मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मीठा बोले और रिश्तों की मिठास बनाए रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है।

0: इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के कार्यक्रम में कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
2: इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुए मंत्री समूह की बैठक में यह जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ लोगों को यह याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
3: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।

0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोमनाथ मंदिर गुजरात में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष महापूजा का सजीव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हम सभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार होते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर सहित अनेक पवित्र तीर्थस्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं।
1: सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। सोमनाथ महादेव के स्वाभिमान पर्व के साथ ही उसके पुनर्प्रतिष्ठा के अमृत पर्व के साथ जोड़ करके काशी विश्वनाथ धाम में इस आयोजन के कार्यक्रम को अपनी आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव के पुनर्जागरण का महायज्ञ है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश में निवेश के नए द्वार खोले हैं।
2: मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब हम लोग आए थे 17 में, तब यूपी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 13वें 14वें स्थान पर था। आज वह देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश का अपना स्थान है। मैं मानता था कि तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। सबसे पहली सुरक्षा, दूसरा हम प्रदेश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही को उभारें और यूपी के अंदर हम अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरल पॉलिसीज तैयार करें। और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी वह थी सबसे पहले हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ को आगे बढ़ाना।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अयोध्या में 2 दिवसीय श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित हनुमान जी की गैलरी के सभी कार्य 30 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित अत्याधुनिक संरक्षण प्रयोगशाला में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 2 विशेषज्ञ अगले 3 वर्षों तक स्थानीय कर्मचारियों को संरक्षण तकनीकों का प्रशिक्षण देंगे।
4: कोई टेक्सटाइल पे पेंटिंग हो, कोई अन्य प्रकार की कलाकृति हो जो खुदाई में पत्थर मिले, तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लैब जो बनाई गई है यह IGNCA दिल्ली में है, उनके साथ समझौता करके यह लैब बनाई गई है। उन्होंने 2 अनुभवी कर्मचारी अपनी संस्था से दिए हैं। लगभग 3 साल में वह हमारे स्टाफ को प्रशिक्षण देंगे।
0: राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।

0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का किया आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा अटूट आस्था दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित CII वार्षिक बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान बना रहा है उत्तर प्रदेश। और केंद्र सरकार ने जारी की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्ते लखनऊ में अब सुनिए कार्यक्रम आज सुबह।

0: सुबह की किरणों ने फिर दस्तक दी है, नई उम्मीदों ने आंखें खोली हैं। हर दिन जिंदगी हमें एक नया मौका देती है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का। और दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों और विचारों के साथ मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा,
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। आप सभी को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज सुबह में। अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ लेकर आए हैं ढेर सारी बातें, मुस्कुराहटें, प्रेरणादायक विचार, इतिहास के पन्नों से कुछ रोचक जानकारी, मौसम का हाल और शानदार गीतों की सौगात।
0: क्योंकि वाह श्रद्धा, एक सांस में इतनी ढेर सारी जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे दी, आज क्या कुछ खास रहने वाला है।
1: खास तो है ना कि हमारा तुम्हारा साथ है और मंगलवार का दिन भी है, हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं।
0: एक तो और संदेश इसके साथ आपने दिया अपने श्रोताओं को कि भाई देखिए अगले आधे घंटे तक हिलिएगा नहीं, चाय का जो बड़ा वाला कप आपके घर में है ना उसे भर के रख लीजिए,
1: बैठिएगा।
0: तो भाई श्रद्धा ने अब बता दिया कि आज हम क्या कुछ करने वाले हैं। और दोस्तों देखिए ना, जो सुबह है ना, ये केवल दिन की शुरुआत नहीं होती बल्कि ये हमारे विचारों और ऊर्जा की भी नई शुरुआत होती है। जैसे आज ऊर्जा से भरी हुई श्रद्धा है हमारे साथ
1: जी।
0: और अगर दिन की शुरुआत सकारात्मक हो जाए तो पूरा दिन खूबसूरत बन जाता है। और श्रद्धा, मेरा दिन तो खूबसूरत बना दिया आपने,
1: बिल्कुल आपके साथ तो दिन और भी खूबसूरत।
0: और मुझे उम्मीद है हमारे श्रोताओं का दिन भी खूबसूरत हो गया होगा।
1: हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आज सुबह की आपकी सुबह बने हल्की फुल्की, ज्ञान से भरी, दिल को सुकून देने वाली।
0: जी हाँ, क्योंकि हमारे श्रोता खुश तो हम भी अपने आप को कामयाब मानते हैं। तो चलो श्रद्धा, जब इतनी अच्छी बातें हो ही रही हैं तो क्यों ना अपने श्रोताओं को आज का सुविचार भी बता दिया जाए।
1: बिल्कुल, अच्छे शब्द और अच्छी सोच जीवन के सबसे सस्ते लेकिन सबसे अनमोल उपहार हैं।
0: वाह, सच्ची तो है श्रद्धा। कई बार हम सोचते हैं कि किसी की मदद करने

0: के लिए बहुत बड़े साधनों की जरूरत होगी, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। कई बार हम इससे ना डर के थोड़ा सा कदम पीछे भी हटा लेते हैं
1: और सोचते हैं कि पता नहीं हम उनकी मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे
0: जी, और हम अच्छा करने जाएं कहीं कुछ हम गलत ना कर दें। लेकिन दोस्तों, कभी कभी किसी के लिए बोले गए दो अच्छे शब्द ही उसका पूरा दिन बदल देते हैं।
1: और अच्छे शब्दों के साथ पता है रिंकी, किसी के साथ आपका जो सांत्वना भरा व्यवहार होता है, एक हौसला भरी जो आपकी थपथपाहट होती है ना किसी की पीठ पर, वो भी बहुत मायने रखती है।
0: और देखिए, आपको नहीं पता कि अगले की जिंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपकी जो ये गर्वाहट भरी, गर्मजोशी भरे अपनापन है, दो शब्द है और प्यार से गले लगाने वाली बात है, वो उसके दिल को छू जाए और उसके दिल के दर्द को जो शायद वो अपनी जिंदगी में कहीं महसूस कर रहा है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, उस पर दो बूंद प्यार के, अपनत्व के वहां पर पड़ जाए और उसे आराम मिले, अच्छा लगे।
1: तो इसलिए अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है ना
0: जी। तो इसीलिए ऐसे में अगर हम मुस्कुराकर बात करें, उसका हाल पूछ लें, उसकी बात सुन लें, तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छाई होती है।
1: बिल्कुल, और अच्छी सोच का असर केवल दूसरों पर नहीं, खुद हमारे जीवन पर भी पड़ता है। सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है।
0: तो आइए आज की सुबह हम ये कोशिश जरूर करें कि हमारे शब्दों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए
1: और हमारे व्यवहार से किसी का मन हल्का हो जाए। तो भाई रिंकी, हमारे श्रोता हमारी इतनी सारी अच्छी बातें सुन चुके हैं ना, तो उन्हें अब चाय के साथ साथ एक अच्छे से गीत का भी इंतजार होगा।
0: बिल्कुल, और देखिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप साथ हैं तो ये सफर जो है यूं ही कट जाएगा प्यार से चलते चलते।

0: जी हाँ श्रोताओं, जब अपने साथ चलते हैं कदम से कदम मिलाकर, तो सफर इतना आसान हो जाता है कि मीलों का रास्ता भी छोटा सा लगता है। आप रास्ते की बात कर रहे हैं, जिंदगी का सफर भी बहुत आसान हो जाता है। खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म का नाम था हम हैं राही प्यार के,
1: और ये खूबसूरत सा गीत राग शिवरंजनी पर आधारित था। ये राग अपनी मधुरता और गहरे प्रेम के भाव के लिए जाना जाता है।

0: तो श्रद्धा, खूबसूरत सा नगमा तो आपने अपने श्रोताओं को सुनवा दिया, और बताएं आजकल क्या कुछ कर रही हैं आप?
1: जी भाई, हम एक अच्छी सी जानकारी लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए। ये सुबह की इस ताजगी में अब समय है कि एक और विशेष आवश्यक जानकारी जो हम अपने श्रोताओं को दें।
0: जी हाँ भाई, देखिए, इन दिनों देश भर में जनगणना को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, और हर नागरिक की इसमें जागरूकता के साथ भागीदारी हो, ये भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, जनगणना सिर्फ आंकड़ों का नाम नहीं बल्कि हमारे देश के विकास की दिशा तय करने का एक महत्वपूर्ण आधार भी है।
0: सही कहा श्रद्धा आपने, और इसीलिए हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं एक विशेष जानकारी।
1: तो आइए सुनते हैं जनगणना 2027 और जन भागीदारी विषय पर श्रीमती शीतल वर्मा, निदेशक एवं प्रधान जनगणना अधिकारी उत्तर प्रदेश की ये वार्ता।
2: सभी को मेरा नमस्कार। जिसको हम जनगणना 2027 कहते हैं, वो प्रक्रिया जनगणना जून 2025 से प्रक्रियाधीन है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी कार्यवाही हो रही है, और अब क्योंकि फील्ड ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें हम आम जन के साथ भेंट करते हैं, एक एक घर घर जाके सर्वे करते हैं। जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं, हम किसी एक समय के बिंदु पर जनसंख्या की बात करते हैं। जिस जनसंख्या 2027 की हम बात कर रहे हैं, उसका जो टाइम स्टैम्प होगा, जब हम बताएंगे कि भारत की जनसंख्या इतनी है, वो होगी 1 मार्च 2027 को रात को 12 बजे। जनसंख्या का मतलब है, यदि आप सामान्य रूप से किसी जगह पर निवास कर रहे हैं, आप वहां की पॉपुलेशन का पार्ट है और आपकी गणना की जाएगी। जब तक कि आप डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ना हो, आप किसी और देश के नागरिक ना हो, यू विल बी पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जनगणना ही एकमात्र ऐसा ऑपरेशन है जो यूनिवर्सल है। हम हर आम नागरिक तक, हम हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी गणना करते हैं। हम लोग घरों की गणना करते हैं और घर की परिसंपत्तियों के बारे में बात करते हैं। जब हम फेज टू में जाएंगे, जो फरवरी में होगा, तो हम बहुत सारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो व्यक्तिगत आपकी विशेषताएं हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्टिलिटी डेटा, लिटरेसी डेटा, आप क्या कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। इस बार जातिगत जनगणना भी की जाएगी। जनगणना ही एक ऐसा सोत्र है जिसके माध्यम से हमें राजस्व ग्राम वार, वार्ड वार डेटा मिलता है। बहुत सारी चीजों पे जिसपे हमने बात की कि हाउसिंग कंडीशन कैसी है, आपकी सोशल स्टेटस कैसा है, लिटरेसी लेवल्स कैसे हैं, फर्टिलिटी लेवल्स कैसे हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब भी हम लोग बात करते हैं। पॉपुलेशन हम किसको मानेंगे, जो भी जहाँ सामान्यतः निवासरत हो, जो जहाँ पर रह रहा है, उसको वहीं पर गणना की जाएगी। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हमारा बेटा तो शहर में नौकरी करता है और वो शहर में ही रहता है अपने परिवार के साथ, तो उसकी जो गणना है वो शहर में की जाएगी। केवल माता पिता की गणना ऐसी स्थिति में गाँव में होगी। जो जनगणना के प्रश्न होते हैं, इसके लिए टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी भारत सरकार में शीर्ष स्तर पर बनाई जाती है। सभी क्वेश्चंस पर बहुत विचार करके इन क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है, और उससे बहुत सारे हमारे सोशल इंडिकेटर्स पे काम होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे काम होता है। हमारे प्रदेश द्वारा 22 मई से 20 जून तक का समय निर्धारित किया गया है प्रथम फेज के लिए। पर मैं बताना चाहूंगी, प्रथम फेज हाउसहोल्ड लेवल गणना करता है, मतलब कि ग्रह में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी क्या क्या इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम फेज वन में नहीं कवर करते हैं। वो फेज टू में आता है कि प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलीजन, कास्ट, लिटरेसी, ये सभी क्वेश्चन जब हम इंडिविजुअल गणना करते हैं, जब हम व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति की जनों की गणना करते हैं, वो फेज टू होगा, जो फरवरी 2027 में पूरे देश में एक साथ होगा। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी। फेज टू होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक एक व्यक्ति की गणना होगी। हमारी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 350 तहसील, और ये इस प्रकार से हमारी पूरे प्रदेश की संरचना है। पूरे

देश को ग्रिड के छोटे छोटे खंड बनाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं गणना ब्लॉक या मकान सूचीकरण ब्लॉक। ये गणना ब्लॉक 120 से 180 घर के करीब होते हैं, इनमें करीब 800 से 1000 के बीच में हम लोग पॉपुलेशन रखते हैं। पूरा प्रदेश ऐसे प्रखंड में बांटा जाता है और इस बार ये कार्य डिजिटली किया गया। ये पोर्टल के माध्यम से इन सबकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बनाई गई हैं, सबकी बाउंड्री को टैग करके बनाया गया है। हमारे प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था ने ये कार्य एक महीना पहले पूरा कर लिया। हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा 22 मई से और 20 अप्रैल तक हमारे सभी जनपदों ने ये जो गणना ब्लॉक के चिन्हांकन का कार्य था, सीमांकन का कार्य था, इसको पूर्ण कर लिया था पोर्टल पे डिजिटली। हम लोग 5 लाख कार्मिकों को इस कार्य के लिए सम्मिलित करेंगे। ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर एंड सुपरवाइजर एसडीएम को करानी है, एसडीएम के नेतृत्व में जिलाधिकारी को करानी है। वो कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है, हमारी 10 मई तक पूरे प्रदेश में सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। हमारा गणना ब्लॉक ऐसा नहीं है कि चौकोर होता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं नदी जा रही है तो नदी को सम्मिलित करना पड़ता है, हाईवे जा रहा है तो हाईवे को सम्मिलित करना पड़ता है, मतलब हाईवे को हम पार नहीं करते हैं। गणना ब्लॉक एक ऐसे छोटे से खंड को कहते हैं जो कि एक प्रगणक चलकर पूरा देख ले। तो छोटा सा एक खंड होता है जो कि हम एक प्रगणक को आवंटित करते हैं और इसकी 700 से 800 तक पॉपुलेशन होती है। ऐसे हम लोग पोर्टल के माध्यम से इसका चिन्हांकन करते हैं। पोर्टल के माध्यम से ये कार्य प्रत्येक सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश की भूमि का किसी ना किसी गणना ब्लॉक में होगा। अगर गैर आबाद गांव है तो भी गणना ब्लॉक होगा। जनगणना ही वो प्रक्रिया है जिसमें एक राजस्व ग्राम आबाद और गैर आबाद डिक्लेयर होता है। अगर जीरो पॉपुलेशन है तो वो गैर आबाद डिक्लेयर हो जाएगा, परंतु अगर वो पहले से गैर आबाद चल रहा है तो भी हम वहां जनगणना करने जाएंगे, और अगर 5 लोग या 1 लोग भी अगर वहां रहता हुआ पाया गया तो हम उसको आबाद डिक्लेयर करेंगे। सभी तहसीलें 350 समस्त हमारे छोटे बड़े नगर निकाय और जो हमारे नगर निगम है उसकी जोन्स, ये कुल मिला के फर्स्ट फेज में जब हम जा रहे हैं तो हम 1200 चार्जेस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में जाते हो तो हम हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन करते हैं, घरों की गणना करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां आपको आम नागरिक को जाना मना होता है, हमारे देश की सुरक्षा के कारणों से या बहुत सारे कारणों से बाहर का एन्यूमरेटर नहीं जाता है। तो फर्स्ट फेज में हम उसको स्पेशल चार्ज मानकर, हमें वहां की फैसिलिटीज पहले से पता है, हम उसकी गणना नहीं करते। सेकेंड फेज में उसकी भी गणना होगी, उसके भी अंदर हम जाएंगे, उन्हीं के एक आदमी को ट्रेन करके उससे डेटा प्राप्त करेंगे और इंडिविजुअल डेटा हम कलेक्ट करेंगे। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं 50-60 घर बने हुए हैं जिनमें की भौतिक सुविधाएं नहीं है और वो कच्चे स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं, तो हम उसको एक अलग गणना ब्लॉक बनाते हैं। स्लम केवल नगरीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। वो व्यक्ति जो जनगणना करने जाएगा, एन्यूमरेटर को हम लोग प्रगणक कहते हैं और जो सुपरवाइजर होता है उसको पर्यवेक्षक कहते हैं। 6 एन्यूमरेटर पे एक पर्यवेक्षक होता है और पर्यवेक्षक की ये दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र में गुणवत्ता और यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसको मीट करे। 4 मुख्य बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, प्रीमाइसिस बिल्डिंग, जनगणना मकान, जनगणना परिवार। एक प्रांगण हो सकता है, जैसे ये प्रांगण है, इसमें 4 अलग अलग भवन है। बिल्डिंग मतलब भवन। एक भवन में बहुत सारे जनगणना मकान हो सकते हैं कि हर फ्लोर पे एक अलग घर है। मकान का मोटा मोटा एस्टिमेशन होता है, अगर उसकी अलग एंट्रेंस है तो वो एक अलग मकान समझा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, आप अपार्टमेंट्स में देखेंगे आगे एक परिवार रह रहा है और पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स में अलग एंट्रेंस के माध्यम से एक और परिवार रह रहा है। परिवार का आशय कॉमन किचन से है। अगर आप एक किचन से खाना खाते हैं तो आप एक परिवार हैं, जनगणना परिवार। बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि एक ही घर में 2 भाइयों की फैमिलीज अलग अलग खाना बना रही हैं, तो एक जनगणना मकान 2 जनगणना परिवार, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। हम परिवार के स्तर पे जाके गणना करते हैं। बहुत बार ये ऐसा शहरों में देखते हैं कि एक ही घर है, ऊपर किराएदार भी रह रहा है, फिर एक और कोई पेइंग गेस्ट भी रह रहा है। इसमें मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूशनल हाउसहोल्ड्स होते हैं, हमारे कुछ संस्थागत परिवार होते हैं, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स मेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, पेइंग गेस्ट, ये सभी एक ही किचन से खाना खा रहे हैं, तो ये एक संस्थागत परिवार है। स्वगणना का प्रोसेस, एक हम पोर्टल पे जाते हैं, अपनी लैंग्वेज को चयनित करते हैं, अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से अपनी लोकेशन लेके आप ये सारे क्वेश्चंस पोर्टल पे फिल कर सकते हैं। आपको एक आईडी मिलेगी, एन्यूमरेटर आपके घर आएगा, आपसे वो आईडी लेगा। जब आप एन्यूमरेटर को आईडी देंगे, आपके पास 3 विकल्प हैं। आप उसको कहें जैसा मैंने भरा वैसे भर दो, आप उसको कहें इसको संशोधित कर दो, मेरे से गलत हो गया था एक क्वेश्चन, या आप उसको कहें इसको छोड़ो, ये तो मैंने ऐसे ही भर लिया था, एक नया भर दो। ठीक है, तो तीनों विकल्प हमारे जो परिवारजन है उनके पास ओपन है। बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत सारी इकाइयां हैं, तो हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपनी गणना करे। उत्तर प्रदेश में सभी विषमताओं के बाद भी हम लोग जनगणना कराएंगे, तो आपका सहयोग अपेक्षित है। हमारी जो बेसिक इकाई है जनगणना की, वो राजस्व ग्राम है। अगर छोटा राजस्व ग्राम है तो वहां शायद 1 गणना ब्लॉक होगा, बड़ा राजस्व ग्राम है तो 4 गणना ब्लॉक है। उस गणना ब्लॉक पे हमारे एन्यूमरेटर की ड्यूटी होगी, जैसे कि बाकी सभी

0: जिस ग्रामों में गणना की जाती है उसी प्रकार से इंटरनेशनल बॉर्डर पे की जाएगी। बेघर लोगों की भी गणना द्वितीय चरण में की जाती है। द्वितीय चरण में आखिरी दिन 28 फरवरी को शाम को 7 बजे से सुबह के 12 बजे तक ऐसे सभी लोग जो जहां होता है प्रत्येक गणना ब्लॉक में उसको पहले ही चिन्हांकित कर लिया जाता है, ऐसे बेघर लोगों की गणना की जाती है। सेंसस है वो आपकी फैमिली जो रिपोर्ट करती है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, हम आपसे कोई रिकॉर्ड नहीं मांगते हैं ना हम किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। जनगणना में आप जो भी सूचना देते हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कभी शेयर नहीं होती। जनगणना में आपने जो व्यक्तिगत सूचना दी एक बार आपका शेड्यूल भर गया तो वो गोपनीय है, वो कभी शेयर नहीं होता। मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, जनगणना का कॉन्सेप्ट का सिटीजनशिप से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप कहीं पर 180 दिन से रहते हैं और आप बार्ड नहीं है अन्य किसी कारण से, आप इलीगल माइग्रेंट नहीं है, आपके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है, तो यू विल बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। इस बार सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने पूरे देश में कमिटमेंट किया है कि डिजिटल जनगणना होगी। बहुत ही लाइट ऐप है, पुराने एंड्रॉइड पे भी चलता है। एक मकान कितने भी आदमी कर सकते हैं बट एक मोबाइल नंबर पोर्टल में एक बार यूज हो। जिसको सेंसस की ड्यूटी दी जाती है, अगर वो आम नागरिक है उसको भी यदि सेंसस की ड्यूटी मिलती है तो इट इज अ कंपल्सरी ड्यूटी, इट इज पार्ट ऑफ नेशनल ड्यूटी। आमजन को बताना चाहते हैं कि आपको प्रिपेयर करना है, हम आपके घर आने वाले हैं या आपकी सहभागिता का समय अब शुरू हो रहा है। अगले दो फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्वगणना और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन वो समय होगा जब हम एक एक घर जाएंगे। हमारे कुल 7,000 फील्ड ट्रेनर बने, यही फील्ड ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर मिलकर आज की तारीख में प्रत्येक छोटी छोटी जगहों पर तहसील स्तर पे, नगर निकाय स्तर पर हमारे जो एन्यूमरेटर और सुपरवाइजर हैं उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। अधिकतम 10 मई तक हमारा ये सभी कार्य पूर्ण हो जाएगा।
1: श्रोताओं, हमारे साथी श्रीमती शीतल वर्मा, निदेशक एवं मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी उत्तर प्रदेश, जिन्होंने जनगणना 2027 और जन भागीदारी विषय पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे साझा की।
2: हमें उम्मीद है कि इस जानकारी ने हमारे श्रोताओं को जनगणना में अपनी भागीदारी के प्रति अधिक जागरूक किया होगा, क्यों रिंकी?
3: बिल्कुल, और आने वाली जनगणना में हमारे श्रोता जो है, जो हमें सुन रहे हैं, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पूरी भागीदारी और ईमानदारी से उसमें सम्मिलित होंगे।
2: बिल्कुल।
3: और अब वक्त है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का।
2: बिल्कुल रिंकी, इतनी अच्छी जानकारी हमने अपने श्रोताओं तक पहुंचाई, तो एक जानकारी और दे दी जाए जो भाई पल पल बदलते मौसम की है। देखिए ना, कभी सुबह शाम ठंडा हो रहा है, दोपहर में गर्मी हो रही है और कब पता नहीं पानी बरस जाए।
3: सही श्रद्धा, मौसम हमारे दिनचर्या का बहुत अहम हिस्सा होता है। कहीं धूप, कहीं बादल, तो कहीं हल्की हवाएं, हर मौसम अपने साथ एक अलग एहसास लेकर आता है ना।
2: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं मौसम विभाग से मोहम्मद दानिश जी से ये विशेष जानकारी।
4: हेलो,
5: नमस्ते सर।
4: नमस्ते
5: सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज सुबह में। सर, हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज के मौसम का क्या हाल रहेगा।
4: जी गुड मॉर्निंग, मौसम की बात करें तो मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। जैसा कल गर्मी था उसी क्रम में आज भी रहेगा, तो दिन में थोड़ी गर्मी का एहसास रहेगा
5: जी सर,
4: और शाम से जो रात का मौसम थोड़ा खुशनुमा रहेगा। तो कुल मिला के कहें तो एक तरीके से मौसम दिन में थोड़ी गर्मी से रहेगा, बाकी सुहाना रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान में अभी 2-3 डिग्री और बढ़ने की संभावना रहेगी।
5: यानी अभी खुशनुमा है मौसम, फिर गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी।
4: जी बिल्कुल
5: जी सर। सर, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद।
3: तो श्रोताओं, मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। मौसम की जानकारी हमें दे रहे थे आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी।
2: बिल्कुल, पर्याप्त पानी पीते रहें और तेज धूप में निकलते समय सावधानी बरतें।
3: और अब मौसम के सुहाने अंदाज के साथ श्रद्धा, एक नगमा अपने श्रोताओं को सुनवा दिया जाए, कैसा रहेगा?
2: बिल्कुल, हमें भी इंतजार है अपने श्रोताओं के साथ।

0: वाकई श्रद्धा, कभी कभी ऐसा समय होता है ना, समझ में नहीं आता है, रोए हंसे जागे
1: भाई
0: सोए
1: मुश्किल हो जाती
0: खेले,
1: है।
0: बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। वाकई जिंदगी के जो खट्टे मीठे अनुभव है, इन्हें हमारे गीतकारों ने बहुत ही खूबसूरती से पिरोया है। और फिल्म अंजाम में अभिजीत भट्टाचार्य का गाया खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, राग यमन में।
1: और रिंकी, अपने श्रोताओं को बता दें कि आज का दिन क्यों विशेष है, आज हम कौन कौन से दिवस मनाते हैं।
0: जी हाँ, चलिए श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और आप जानते हैं, ये दिन आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1820 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सेवा, समर्पण और मानवता की जो मिसाल पेश की, वो आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन घोषित किया गया है।
0: श्रोताओं, अगर इतिहास की बात करें 12 मई की, तो वो भी बहुत खास है। आप जानते हैं कि 1459 में राव जोधा ने राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर सन सिटी की स्थापना की थी।
1: और आज ही के दिन सन 1926 में इतावली निर्मित एयरशिप नॉर्ज उत्तरी ध्रुव पर उड़ने वाला पहला पोत बना था।
0: श्रोताओं, आपको बता दें, 1638 में लाल किले का निर्माण, सम्राट शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के निर्माण का आदेश आज ही के दिन दिया था। आपको बता दें कि मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करते समय लाल किले के निर्माण का आदेश दिया था। ये भव्य किला, जिसे 1639 में शुरू कर 1648 में पूरा किया गया, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था।
1: और दोस्तों, हमारे लिए ये भी जरूरी है कि वे इतिहास को केवल तारीखों के रूप में ना देखें, बल्कि उससे प्रेरणा भी लें।
0: बिल्कुल श्रद्धा, और देखिए, बातों के साथ साथ अब समय कितनी तेजी से भाग गया कि हमें पता ही नहीं चला कि अपने श्रोताओं के साथ कब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए।
1: लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात, जिंदगी में बड़े बदलाव हमेशा बड़े प्रयासों से नहीं आते। कभी कभी एक अच्छी आदत, एक सकारात्मक विचार और किसी के लिए निकाला गया थोड़ा सा समय भी जीवन को खूबसूरत बना देता है।
0: दोस्तों, हर सुबह हमें मौका देती है कि बीती बातों की धूल झाड़कर नए उत्साह के साथ हम आगे बढ़ें। इसलिए मुस्कुराइए, लोगों से जुड़िए और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए।
1: तो इसी प्यारे से संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए श्रद्धा और
0: रिंकी कहते हैं आपसे
1: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ ही अब नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को

0: संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे

0: जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
3: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
4: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
2: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
5: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
2: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
6: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी

0: क्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. ADRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods

0: अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के दौरान ज़र मुबादला बचाने के लिए अवाम से ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। कल शाम गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कोरोना के वक्त के तौर तरीकों जैसे घर से काम करने, ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग्स, नीस पेट्रोल और डीजल के कम इस्तेमाल को दोबारा अपनाने की अपनी सबका अपील को दोहराया। दरामदात में कमी लाने और मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सभी को मिलकर मुल्क के वसाइल पर बोझ कम करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए।
1: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
0: वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत बैरून मुल्क से बहुत सी मसनूआत दरामद करने पर ज़र मुबादला की मद में लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि मौजूदा बहरान के बाईस दरामद होने वाली अशिया की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो गया है और आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि इस बहरान के असरात मुल्क के शहरियों पर कम से कम पड़ें।
1: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
0: उन्होंने कहा कि जब तक हालात मामूल पर नहीं आ जाते, मुल्क के मुफाद में हर छोटा और बामानी कदम जरूरी है। वज़ीर आज़म ने सरकारी ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसों और कार पुलिंग को अपनाने के जरिए पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील का इरादा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हालात के मामूल पर आने तक सोना खरीदने से गुरेज करने की भी अपील की। एक अहम सियासी और तारीखी पेशरफ्त के तहत हेमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी मुद्दत कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से आज हलफ लेंगे। वह आसाम की तारीख में लगातार दूसरी मरतबा इस ओहदे पर फाइज होने वाले पहले गैर कांग्रेसी लीडर होंगे। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, डॉ शर्मा और उनकी वजारती कौंसिल को ओहदे और राजधानी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: डॉ हेमंत बिस्वा सरमा के बतौर वजीर आला के अलावा वजारती कौंसिल के चार अराकीन भी आज हलफ लेंगे। ये चार काबिनी वजीर हैं रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, दिगर कई मरकजी वुजरा और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला शिरकत करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब की मेज़बानी के लिए गुवाहाटी के कानपाड़ा के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड को मुकम्मल तौर पर सजाया गया है। तकरीब के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों के इज्तिमा को देखते हुए खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। कामरूप मेट्रो ज़िला इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक और गाड़ियों की हसब मामूल आमोदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मगरबी बंगाल हुकूमत के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के साबिक वजीर सुजीत बसु को कोलकाता में जुनूबी दमदम म्यूनिसपैलिटी भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी हुकाम के मुताबिक सुजीत बसु पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिका टीएमसी हुकूमत के दौरान जुनूबी दमदम म्यूनिसपैलिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर तकर्री के लिए तकरीबन 150 उम्मीदवारों की सिफारिश माली फायदे हासिल करने के लिए की थी। उन्होंने बताया कि ईडी ने रिश्वत से हासिल शुदा आमदनी के बराह रास्त शवाहिद का सुराग लगाया है, जिनमें ऐसे फ्लैट्स शामिल हैं जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ अफराद को म्यूनिसपल नौकरियां दिलाने के एवज हासिल किए गए थे। तहकीकती एजेंसी ने उनके बैंक खातों में बड़ी मकदार

0: में नकद रकम जमा होने की भी निशानदेही की है। सुजीत बसु को आज खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ये थी खबरें, अब ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा जुमे से मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। ये दौरा हाल ही में तय पाने वाले भारत यूरोप यूनियन आज़ाद तिजारती माहदे FTA के तनाजुर में यूरोप के साथ खासतौर पर तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में भारत की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई नाजुक हालत में है और बमुश्किल कायम की है। जनाब ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ट्रंप महीनों तवील जंग के खात्मे के ईरान के तजवीज़ को पूरी तरह नाकाबिले कबूल करार देकर मुस्तरद कर चुके हैं। ईरान के साथ जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के ज़िम्न में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों को बताया कि जंगबंदी इंतहाई नाजुक सूरतहाल का शिकार है। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से भेजी गई तजवीज़ को रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल करार दिया। व्हाइट हाउस में जच्चा की सेहत देखभाल से मुतालिक तकरीब में ट्रंप ने शुरका से कहा कि वो अपनी बातों को मुख्तसर करें क्योंकि उन्हें ईरान के मामले पर जनरलों के बड़े ग्रुप से तबादले ख्याल करना है। सदर ट्रंप को इतवार के रोज ईरानी तजवीज मौसूल हुई जिससे उम्मीद की जा रही थी कि वो 28 फरवरी को ईरान के साथ शुरू हुए जंग के खात्मे का कोई रास्ता निकल आएगा। इस जंग से तेल की आलमी सप्लाई के अहम समुद्री रास्ते मसदूद हो गए हैं जिसके नतीजे में कई मुल्कों में तेल की किल्लत पैदा हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के साथ जंगबंदी को इंतहाई नाजुक करार देने के बाद तेल के बाजार लड़खड़ा गए हैं और भारतीय कशीदगी में इजाफा हो गया। जनाब ट्रंप की जानिब से इस तबसरे के बाद जंगबंदी के बरकरार रहने से मुतालिक ताज़ा खदशात में इजाफा हो गया है। इससे पहले ईरान ने अमरीकी अमन तजावीज पर अपना जवाब भेजा जिसमें सभी महाजों पर मुखासमत के खात्मे, अमरीकी पाबंदियां हटाने, ईरान के मुंजमद असासे जारी करने, अमरीका की बहरी नाकाबंदी खत्म करने और आबनाए हुरमुज पर ईरान के इंतजाम को तस्लीम करने की बात कही गई थी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: ईरान के मुतालबात बुनियादी तौर पर फौरी न्यूक्लियाई रियायतों के बजाय जंग के हालात और इकतसादी सूरतहाल पर मबनी है जिसे वाशिंगटन इस मरहले पर कबूल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। दोनों फरीकों के दरमियान काफ़ी दूरी है और मसालहतकार मुश्तरक हल ढूंढने में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं क्योंकि पूरे मगरबी एशिया में जंग का दबाव और इकतसादी दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में हुकूमत कौमी बुनियादी ढांचे पर हमले के जवाब को कतई शक्ल दे रही है। हुकाम ने 2800 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिज़ाइल हमलों के जरिए अमारती हदूद में हुए नुकसान को दर्ज करने के लिए कौमी कमेटी तश्कील दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी अहम तनसीबात और तवानाई के मराकज पर हमलों के जवाब में बैनुल अक्वामी कानूनी जवाबदेही तय करने और हर्जाना हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकमा करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाक़े को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के RTO जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे मरकज के जेर इंतजाम

रिया, जया और दर्शन भाई। एक मेल हमारे पास आई है, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश भी मेल कर रहे हैं। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं आप में से एक श्रोता की पसंद के इस खूबसूरत से नगमे से। फिल्म का नाम है राजकुमार, गीत में आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है और संगीत दिया है इस गीत का शंकर जयकिशन ने, बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

दोस्तों, जिंदगी की इस भाग दौड़ में अगर कुछ पल सुकून दे जाते हैं तो वो हैं अपने पसंदीदा गीत के साथ बिताए हुए लम्हे। और आपको ये मौका देता है आकाशवाणी लखनऊ अपने कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत के माध्यम से। हमारे पास अपनी अगली फरमाइश भेजी है मेरठ कैंट से कविता, संजय ढींगिया, राधा, नामदेव, अनिल जैन, संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई ने। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो भी हमें मेल कर रहे हैं। एक मेल आई है हमारे पास नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौली सीता मढ़ी से। भेजने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा कोआथ बिहार से, शेख जफर हसन और नरगिस जफर हसन। तो श्रोताओं, आप में से ही श्रोता की पसंद है कि एक खूबसूरत सा नगमा उन्हें सुनना है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। तो ये खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंच रहा है, इसे एंजॉय कीजिए।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी वापस आते हैं।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। दोस्तों, रिश्तों की मिठास सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपनापन जताने से भी बढ़ती है, और इसी अपनेपन के साथ आप हमें भेजते हैं बहुत सारे खूबसूरत से ईमेल, जिसमें आप बहुत ही प्यार से फरमाइश करते हैं एक गीत शामिल करने की, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपकी फरमाइश शामिल कर पाए, क्योंकि आप हैं, आपकी फरमाइश है तभी ये कार्यक्रम है। हमारा अगला मेल है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का। एक मेल हमारे पास आया है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी ये मेल कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये मेल करने के लिए। और इन्होंने लिखा है कि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, रिश्ता वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। वाह, क्या खूबसूरत बात कही आपने, और ऐसे ही अगर हर किसी की सोच हो जाए तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। एक मेल हमारे पास आया है

भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का दत्त रेंगी से, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से मेल कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। वहीं भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल आई है सोहन जोशी और पायल जोशी की। तो आप में से ही एक श्रोता ने पसंद किया है फिल्म पारस का एक गाना, तो ये गाना आप तक पहुंच रहा है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

दोस्तों, कभी कोई धुन पुरानी यादें ताजा कर देती है तो कभी कोई गीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है ना। और हमें उम्मीद है कि आज जो ये खूबसूरत से नगमे हमारे श्रोता पसंद कर रहे हैं, ये गीत भले ही आपकी फरमाइश में हो, किसी और ने फरमाइश की हो, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान ज़रूर ले आए होंगे और एक बार आपकी यादें किसी न किसी कोने की ज़रूर ताज़ा हो गई होंगी। कार्यक्रम का एक मेल हमारे पास आया है एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान, शमा अंसारी और दानिश जी का, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। इन्होंने बड़े मंगल की शुभकामनाएं दी हैं, तो आपको भी बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे पास एक मेल आई है पांडर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से, इसे भेजा है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, भला शाह से सूरज लोढ़े, प्राची लोढ़े, एक लव्य लोढ़े, इन्होंने ये मेल किया है। और जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मेल की है मुकेश कश्यप।

शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने एक मेल हमें की है। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह और संकल्प ने, और एक मेल जी हाँ हमारे पास आ चुकी है रश्मि झरना की राजकोट गुजरात से। तो आप सभी को सुनवा रहे हैं फिल्म भीगी पलके का एक बेहद ही खूबसूरत सा नगमा। एक बार फिर इस गीत में आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

जी हाँ श्रोताओं, जन्म जन्म का साथ है आकाशवाणी लखनऊ का और आपका, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और इसी तरह आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप तक आपकी फरमाइश का, आपकी पसंद का नगमा पहुंचाते रहें। देखिए अगला मेल हमारे पास आ चुका है और इसे भेजा है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। एक मेल हमारे पास आई है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की। ये हमारे रेगुलर श्रोता हैं और हर रोज़ मेल करते हैं। आपका

बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें मेल करते हैं। और सोनू सुरेश बलवीर सिंह का भी मेल हमारे पास आ चुका है। वहीं रिंगिनी छत्तीसगढ़ से एक मेल आई है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की। तो आप सभी को एक खूबसूरत सा नगमा सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की मीठी सी आवाज़ में, और ये गीत आप में से ही एक श्रोता की फरमाइश है।

0: यादों की कसम इस फिल्म में गाए लता मंगेशकर के इसी खूबसूरत गीत के साथ अब आपके मेल आपके गीत का सफर यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को। श्रोताओं, जिन श्रोताओं के संदेश आज शामिल नहीं हो पाए हैं उनसे आग्रह है कि अपने प्यार भरे मेल और फरमाइशें हमें यूं ही भेजते रहिए, शायद अगली महफिल आपके नाम हो। नमस्कार। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: जिले में स्वगणना प्रक्रिया को नागरिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई इस ऑनलाइन सुविधा के तहत लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से खुद ही जनगणना कर रहे हैं। अभियान के दूसरे दिन 2400 से ज्यादा नागरिकों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी की, जिससे कुल संख्या बढ़कर लगभग 3200 तक पहुँच गई है, जबकि पहले दिन जनप्रतिनिधियों अधिकारियों

0: और आम नागरिकों समेत 762 लोगों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की थी। ये ऑनलाइन व्यवस्था सरल, सुरक्षित और समय की बचत करने वाली है। नागरिक अपने मोबाइल नंबर के ओटीपी सत्यापन के बाद निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कर परिवार से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। फॉर्म हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें आवास, परिवार और सामाजिक स्थिति से जुड़े लगभग 33 बिंदुओं की जानकारी मांगी जाती है। फॉर्म जमा होने के बाद नागरिकों को एक विशेष SEID प्राप्त होती है, जिसे बाद में सत्यापन के दौरान जनगणना अधिकारी को दिखाना होगा। ये प्रक्रिया 21 मई तक जारी रहेगी और प्रशासन लगातार लोगों को स्वगणना के लिए प्रेरित कर रहा है। बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरचंदपुर कला में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब उनके मानदेय को बढ़ाकर 18,000 रुपए किए जाने की घोषणा का जिक्र हुआ। समारोह का शुभारंभ मारेरा विधायक वीरेन सिंह लोधी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे शिक्षा मित्रों और अधिकारियों ने ध्यानपूर्वक सुना। विधायक वीरेन सिंह लोधी ने शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय के प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए। जिले में पोषण और बाल विकास सेवाओं को मजबूत करने के लिए 3 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की तैयारी तेज कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को बेहतर वातावरण और सुविधाएं मिल सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि जलेसर क्षेत्र के कोसमा, बिचपुर और अवागढ़ के पुनहरा में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जलेसर के दोनों केंद्रों पर लगभग 27,80,000 रुपए की लागत आएगी, जबकि पुनहरा केंद्र पर करीब 30,22,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र के लिए पहली किस्त के रूप में 10-10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन केंद्रों में बेबी टॉयलेट, बाल अनुकूल शौचालय, मल्टीपर्पज हॉल, किचन शेड, स्टोर रूम और विस्तृत बरामदा जैसी सुविधाएं होंगी। बच्चों के खेलने और गतिविधियों के लिए आकर्षक लॉन भी विकसित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इन मॉडल केंद्रों के माध्यम से बच्चों के पोषण, प्री स्कूल शिक्षा, महिलाओं में जागरूकता और किशोरियों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। खरीफ सीजन से पहले किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए कृषि विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग इस बार किसानों को धान की उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाली कई किस्मों के साथ उड़द का बीज भी 50% अनुदान पर उपलब्ध कराएगा। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग और फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह ने बताया कि जिले के लिए 1,540 क्विंटल धान बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 552 क्विंटल धान बीज प्राप्त हो चुका है और बाकी बीज जल्द ही पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि उपलब्ध कराई जा रही धान की किस्में अधिक उत्पादन देने वाली, रोग प्रतिरोधी और बेहतर गुणवत्ता वाली हैं। विभाग ने किसानों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की है, जिससे कि उन्हें योजना का लाभ आसानी से मिल सके। वीरंगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की साइटोपैथोलॉजी लैब ने चिकित्सा क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। पैथोलॉजी टीम ने मरीज के हाथ में बनी सामान्य दिखाई देने वाली गांठ की जांच के दौरान फाइलेरिया के जीवित माइक्रो फाइलेरिया की पहचान की है। जांच के दौरान FNC तकनीक के माध्यम से फाइलेरिया के परजीवी की पुष्टि की गई। गौरतलब है कि भारत सरकार ने वर्ष 2027 तक देश से फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साइटो लैब इंचार्ज डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कहा,
1: जब मरीज को सिम्टम आना शुरू होते हैं तो उसके कॉमन जो लक्षण है वो है बुखार आना, दर्द होना, तो लसिका तंत्र को ब्लॉक कर देता है, उसको खराब कर देता है। तो पैरों में सूजन आना, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, तो हाथी पांव नामक बीमारी हो सकती है। फाइलेरिया लाइलाज बीमारी नहीं है जब तक वो लेट ना हो।
2: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: कौशाम्बी जिले में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला होमगार्ड कार्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा

0: की 284 करोड़ की लागत यह भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। उन्होंने कहा
1: सन 62 में होमगार्ड का विभाग का गठन हुआ, 62 के बाद 17 तक के और 17 से अब तक के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक होमगार्ड विभाग के लिए है, मैं कह सकता हूँ ये कीर्तिमान है। वर्दी भत्ता हो चाहे दैनिक भत्ता हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री दैनिक भत्ता एक किया, 42 दिन की ट्रेनिंग को 90 दिन की किया कि हमारा होमगार्ड का जवान दक्ष हो और शारीरिक क्षमता उसकी बढ़े। 17 से पहले कोई होमगार्ड का जवान किसी दुर्घटना का शिकार होकर आता तो 3 लाख रुपए की बीमा राशि होती थी, लेकिन आज होमगार्ड का जवान ड्यूटी पे है, घर पे है, रास्ते में है, कहीं भी है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। साथ साथ हमने जो बैंकों से टाई अप किया है, इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो 35 लाख रुपए बैंक देगी। तो 40 लाख रुपए जब उस परिवार को मिलते हैं तो हम लोगों को कुछ संतुष्टि होती है कि उस परिवार के लिए हम कुछ कर पाए।
0: कौशाम्बी जिले में जनगणना 2027 का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। जिला अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बताया कि 7 मई से 21 मई तक स्वगणना हो रही है। इस अवधि में नागरिक स्वयं एवं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से जनगणना वेबसाइट SCS पर दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़े विश्वसनीय होंगे, जिससे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अभियान में अधिक से अधिक जनगणना ऐप का प्रयोग कर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। कौशाम्बी जिले में जिला न्यायालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 30,000 से अधिक शमनी वादों का निस्तारण किया गया। कौशाम्बी जिले में समाधान अभियान के अंतर्गत कई ग्राम सभाओं में भूमि विवादों की सुनवाई कर अवैध कब्जे खाली कराए गए। अपर जिला अधिकारी राजस्व ने बताया कि टॉप 10 भूमि विवादों का मौके पर समाधान के अंतर्गत भीती, देहमाफी, कोरीपुर सहित दर्जनों गांव में अधिकारियों द्वारा संयुक्त टीम के साथ विवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें पुलिस और राजस्व टीम अवैध भूमि खाली कराई गई। कौशाम्बी जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत 192 कार्यों को पूर्ण किया गया। जल निगम एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि 275 पेयजल परियोजनाओं में 192 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 78 परियोजनाओं पर कार्य जारी है, 114 परियोजनाओं में टेस्टिंग और ट्रायल का कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल पहुंचाने की योजना कई गांवों में चल रही है। गर्मी के मौसम में 130 तालाबों के सापेक्ष 40 तालाबों में पानी भरा दिया गया, शेष तालाबों में कार्रवाई जारी है। कौशाम्बी जिले में नई बैरिक का निर्माण होने से बंदियों को जिला कारागार में सुविधा मिल रही है। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जिला कारागार में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध होने के कारण बंदियों को रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पत्राचार के माध्यम से ADG कारागार द्वारा जेल के अंदर बैरिक निर्माण की अनुमति दी गई, जो करोड़ों की लागत से बनकर तैयार हो गई। बंदियों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। जिला कारागार में बंदियों को शुद्ध भोजन और शीतल जल की सुविधा उपलब्ध है। कौशाम्बी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष किसानों से गेहूं खरीद सरकारी संस्थानों द्वारा की गई। जिला विपणन अधिकारी सुधांशु शेखर चौबे ने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष 75% किसानों से गेहूं खरीद की गई। किसानों को समय से समर्थन मूल्य का भुगतान बैंक खातों में DBT के माध्यम से किया जा रहा है। जिले में लगभग 2 दर्जन से अधिक क्रय केंद्र संचालित है, जहां पर किसानों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कौशाम्बी जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निरीक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि जिले में 1 दर्जन से अधिक थानों और चौकियों पर काफी समय से तैनात पुलिस कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक जेल की सलाखों में भेजा गया। 2 दर्जन से अधिक पारिवारिक विवादों का सुलह समझौता के आधार पर पत्नी को राजी कराकर नया जीवन व्यतीत करने के लिए पहल की गई। गंभीर आपराधिक मामलों में पैरवी कर न्यायालय में 3 दर्जन से अधिक अपराधियों को सजा दिलाई गई।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी एटा और कौशाम्बी जिलों की खबरें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। अपने श्रोताओं को हम बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
6: आप सबके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी रामपुर के मरकज से आपका मेज़बान फरीदुल्ला खान हाजिर है। सलाम मोहब्बत कबूल कीजिए, आप सबका तह दिल से खैर मकदम करते हैं। सामीन बज़्म, आज हमने अपने स्टूडियो में एक शेरी नशिस्त का इनेकाद किया है। जो शोराए कराम शामिल हैं उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं: जनाब अहमद नबी, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब। हम सभी मेहमानों का अपने स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं और सबसे पहले दावत सुखन देते हैं मोहतरम जनाब अहमद नबी।

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है,
1: रे
0: बहुत अच्छा है।
1: वरना दुश्वार हैं ये
0: हम मेरे
1: खम मेरे,
2: वाह वाह वाह,
1: और कैसे दिल से उन्हें निकालूं मैं,
0: कैसे दिल से उन्हें निकालूं।
1: कैसे

0: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
1: कि दे दिया उसने मुस्कुरा के जवाब,
0: दे दिया उसने मुस्कुरा के जवाब।
1: दे

0: क्या बात है, भूल बैठे हैं करम मेरे।
1: कि गैर मुमकिन है प्यार में अहमद,
0: गैर मुमकिन है प्यार में

0: क्या बात है, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह,
1: पीछे हट जाए अब कदम मेरे।
0: दरगुजर कर दिए सितम मेरे, याद जब आ गए करम मेरे। बहुत ही खूबसूरत अशआर से इस महफिल को रौनक बख्श रहे थे अहमद नबी अहमद बदायूनी। आइए अब एक और शायर जो बदायूं से ही तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद जलीलुद्दीन उर्फ समर बदायूनी को बुलाते हैं कि वो आएँ और इस महफिल को और रौनक बख्शें।
2: मतला हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमा लें। देख ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे,
3: वाह
2: ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ये जिंदगी मुझे। ता उम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ऐ जिंदगी मुझे। शेर समाप्त फरमाए हजरात, देखें। और ये शेर भी समाप्त फरमाए हजरात,
0: जी जी
2: देखें
0: आता हूँ।
2: कि मेरी हयात क्या थी,
0: मेरी हयात
3: मेरी
0: क्या
3: हयात
0: थी,
3: क्या थी,
2: अमावस की रात थी।
0: अमावस की रात थी,
3: क्या
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
3: कहने का,
2: मेरी हयात क्या थी,
3: अमावस की रात,
0: अमावस की रात,
2: अमावस की रात थी, कुछ जुगनुओं से मिलती रही रोशनी मुझे।
0: क्या बात है,
3: वाह वाह
2: मेरी
3: वाह,
2: हयात क्या थी,
3: अमावस
2: अमावस की रात
0: अच्छी
2: थी,
0: मंजर कशी है।
2: मेरी
3: हयात
2: क्या
3: रोशनी
2: थी,
0: अमावस की रात
2: अमावस की
0: थी,
2: रात थी,
3: वाह वाह,
0: एक
2: कुछ
0: कुछ
2: जुगनुओं
0: जुगनुओं
2: से
0: से
2: मिलती रही
0: रोशनी मुझे।
2: रोशनी मुझे। और एक ये शेर भी देखें हजरात, कि जब तक मैं आईने के मुकाबिल नहीं हुआ,
3: जब तक मैं आईने के
2: जब
0: मुकाबिल
2: तक
0: नहीं हुआ,
2: मैं आईने के
0: मुकाबिल नहीं हुआ,
2: मुकाबिल नहीं हुआ, हर शख्स में दिखाई दी कोई कमी मुझे।
0: क्या बात है,
3: वाह वाह वाह,
2: जब तक मैं आईने
3: क्या
2: के मुकाबिल
0: बेशक
2: नहीं
0: यही बात,
2: हुआ,
3: वाह वाह वाह,
2: जब तक मैं आईने के मुकाबिल नहीं हुआ,
3: हर शख्स में
2: हर
3: दिखाई दी,
2: शख्स में दिखाई दी
3: क्या
2: कोई
3: कहने क्या
2: कमी
3: कहने
2: मुझे।
3: क्या कहने।
2: और ये शेर देखें हजरात, के बस यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई,
3: बस यूं ही आ गई से मुलाकात
2: बस
3: हो
2: यूं
3: गई,
2: ही आ गई से मुलाकात हो गई, दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे।
3: अरे वाह वाह
2: बस
3: वाह,
2: यूं ही आ गई से मुलाकात हो गई,
3: क्या कहने
2: दर
3: क्या कहने,
2: दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे,
3: वाह वाह वाह,
2: दर दर फिरा रही थी जब आवारगी मुझे। और ये शेर भी देखें अहमद भाई,
3: जी अतर
2: के रखता हूँ फूंक फूंक के
3: जी,
2: मैं अपना हर कदम,
3: रखता
2: रखता
3: हूँ
2: हूँ
3: फूंक फूंक
2: फूंक
3: के मैं
2: फूंक
3: अपना हर
2: के
3: कदम,
2: मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे। मैं रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, रखता हूँ फूंक फूंक के मैं अपना हर कदम, कहने लगा है जब से जमाना वली मुझे।
3: वाह
2: और
3: वाह वाह वाह,
2: एक शेर समाप्त फरमाए हजरात, देखें कि मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, मेरे जुनूने शौक के थकते
3: थकते नहीं कदम,
2: नहीं कदम,
0: मेरे जुनून ने शौक से थकते नहीं
2: दर
0: कदम।
2: दर फिराती फिरती है दीवानगी मुझे।
0: क्या बात है,
3: वाह वाह
0: बहुत
3: वाह,
0: अच्छा,
2: मेरे जुनूने शौक के थकते
0: थकते
2: नहीं
0: नहीं कदम,
2: कदम, दर दर फिराती फिरती है, असर साहब,
3: वाह वाह वाह वाह
2: मेरे
3: वाह,
2: जुनूने शौक के
0: थकते
2: थकते
0: नहीं
2: नहीं
0: कदम,
2: कदम, दर दर फिराती फिरती है दीवानगी
3: अरे
0: मुझे,
3: वाह वाह
0: दर
3: वाह, क्या बात
2: दर फिराती फिरती
3: है,
2: है
3: जुनूने शौक
2: दीवानगी,
3: दीवानगी सारे लवाजमात हैं आपके
0: क्या
3: पास,
0: बात है,
3: वाह वाह वाह,
2: मेरे जुनूने शौक के थकते नहीं कदम, दर दर फिराती फिरती है दीवानगी
0: दीवानगी
2: मुझे।
0: मुझे।
2: बतौर खास एक शेर हाजिर
0: जी
2: करता
0: जी
2: हूँ, फरीद
0: बिल्कुल,
2: साहब
0: आता
2: समाप्त
0: आता हूँ
2: फरमाए कि
0: आता हूँ।
2: मुझ में, अच्छा भाई देखें,
3: जी
2: कि मुझ में कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश।
0: अच्छा। मुझ में कोई
2: फरिश्ता ही करती रही तलाश, दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे।
0: वाह वाह।
2: मुझ में कोई फरिश्ता ही करती रही तलाश
0: जी,
2: दुनिया समझ सकी
0: क्या बात है?
2: कभी आदमी मुझे।
0: बहुत अच्छा है।
2: दुनिया समझ सकी न कभी आदमी मुझे। मक्ता समाज फरमाने
0: जी जी बताओ
2: कि दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर।
0: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर।
2: आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा।
2: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों समर।
3: क्या सच्चा शेर कहती है आपने भाई।
2: आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे।
0: बहुत अच्छा है मुकर्रर इरशाद।
2: दुनिया को मेरी बातों में लुत्फ आए क्यों।
0: क्या बात है।
2: आती नहीं है लफ्जों की जादूगरी मुझे, और ताउम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे।
0: क्या बात है।
2: अब और क्या दिखाएगी ये जिंदगी मुझे।
0: ताउम्र सब्ज बाग दिखाती रही मुझे, अब और क्या दिखाएगी ए जिंदगी मुझे। बहुत ही अच्छे अशार से और बहुत ही खूबसूरत लहजे में अपनी बात सामिन तक पहुंचा रहे थे मोहतरम समर बदायूनी साहब। आइए अब एक और मोहतरम शायर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब के हुजूर चलते हैं कि वो आएं और इस महफिल को और रौनक बख्शें।
4: गज़ल का मतलब मुलाजा कीजिए।
0: जी जी आता हूँ।
4: कवाफी कुछ मुश्किल हैं लेकिन आप मफहूम से
0: जी
4: समझ जाएंगे, आसान हो जाएंगे। मतलब यूं है कि सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, सीना हर एक मौज का शक छोड़ जाऊंगा, यूं अपने डूब

0: गुल बूटे कह कशानो शफक छोड़ जाऊंगा।
1: बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह।
0: गुल बूटे कहे कशाओ शफक
1: छोड़ जाऊंगा,
0: छोड़ जाऊंगा मैं अपनी दास्तां के वरक
1: छोड़ जाऊंगा। क्या बात है।
0: मैं अपनी दास्तां के वरक छोड़ जाऊंगा, दारो रसन की बात मेरे साथ जाएगी।
1: वाह वाह वाह,
0: दारो रसन की बात मेरे साथ जाएगी।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है।
0: बोलने का सच बोलने का दुनिया में हक छोड़ जाऊं।
1: क्या बात है, बहुत अच्छा।

0: अच्छा वाह वाह वाह।
1: सच बोलने का दुनिया में हक छोड़ जाऊंगा। एक काफिया और देखें।
0: जी जी आता
1: कि मेरा चमन से जाना भी शबनम से कम नहीं। क्या बात है।
0: बहुत अच्छा है।
1: मेरा चमन से जाना भी
0: शबनम
1: से कम नहीं। रुख पर हरेक गुल के अरक।
0: क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है।
1: रुख पर हरेक गुल के अरक
0: छोड़ जाऊंगा।
1: गजल का एक शेर।
0: जी जी आता।
1: टूटेगा उनकी आंखों से तारा कभी कभी।
0: क्या बात है।
1: टूटेगा
0: उनकी आंखों से तारा कभी कभी।
1: इतनी तो रोशनी की रमक
0: छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा है।
1: इतनी तो रोशनी की रमक
0: छोड़ जाऊंगा।
1: मेरा ही जिक्र मेरी ही बात मेरी ही याद। मेरा ही जिक्र
0: मेरी ही बात मेरी ही याद।
1: दिन रात ये तुम्हारा सबक।
0: बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। क्या बात है।
1: दिन रात ये तुम्हारा सबक
0: छोड़ जाऊंगा।
1: कैसे छुपा सकेगा वो असरार मेरा खून।
0: कैसे छुपा सकेगा
1: वो असरार मेरा खून। कातिल की आंख में भी अलक
0: छोड़ जाऊंगा। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह।
1: कातिल की आंख में भी अलक
0: छोड़ जाऊंगा।
1: मेरा चमन से जाना भी शबनम से
0: कम नहीं।
1: रुख पर हरेक गुल के अरक छोड़ जाऊंगा।
0: बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। सीना हरेक मौज का शक छोड़ जाऊंगा। यूं अपने डूबने का खलक छोड़ जाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत अशार से और बहुत ही अच्छे लहजे में अपनी बात हमारे सामीन तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर मोहम्मद असरार खां असरार नसीमी। अब ये महफिल अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इसमें जो शोराए किराम शामिल थे उनके अस्माए ग्रामी कुछ इस तरह हैं। जनाब अहमद नबी साहब, जनाब मोहम्मद जलीलुद्दीन समर बदायूनी साहब और डॉक्टर मोहम्मद इसरार खां असरार नसीमी साहब। अब अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज़ से नश्र किया जा रहा था। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार। आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार। खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार। घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार। सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार। ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं रूपाली श्रीवास्तव के गाए अवधी लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं इस

लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रूपाली श्रीवास्तव के गाए अवधी लोकगीत। अभी आपने सुना इनके स्वर में ये देवी गीत, और लीजिए अब सुनिए सोहर।

0: लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रूपाली श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत। अभी आपने सुना ये सोहर और अब इसी के साथ आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ

कर देश की। समय हो रहा है सुबह के 10:47। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दस्तक फिल्म के एक खूबसूरत से गीत से। इस गीत में आवाज उदित नारायण की है।

फिल्म संगीत का ये सफर अब यहीं थमता है। फिर मिलेंगे आपसे प्रातः 10:20 पर, और तब आप आनंद लेंगे इन नए फिल्मी तरानों का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल, डीजल,

0: इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं। संसद भवन में श्रीलंका की महिला सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझा बौद्ध विरासत आपसी संबंधों की मजबूत नींव है। ये प्रतिनिधिमंडल श्रीलंका की महिला और बाल मामलों की मंत्री सरोजा सावित्री पॉलराज के नेतृत्व में भारत आया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। ईरान ने शांति प्रस्ताव में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खुलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है।
6: ईरान की मांगें मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही हैं, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेही तय करने और अपने प्रमुख स्थलों

0: तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पाकिस्तान ने अमरीका के हवाई हमलों से बचाने के लिए ईरान के सैन्य विमानों को अपने हवाई अड्डों पर उतरने की अनुमति दे दी है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 28 फरवरी को शुरू हुए अमरीका ईरान संघर्ष समाप्त करने में पाकिस्तान की मध्यस्थता भूमिका के मूल्यांकन की मांग की है। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अप्रैल में संघर्ष विराम घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने एक खुफिया विमान सहित कई विमान पाकिस्तान के नूर खान हवाई अड्डे पर भेजे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ताइवान और ऊर्जा सुरक्षा उनकी आगामी चीन यात्रा के दौरान बातचीत के प्रमुख मुद्दे रहेंगे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपने संबंधों की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि ताइवान को लेकर तनाव नहीं बढ़ेगा।
2: व्हाइट हाउस में कल मात्र स्वास्थ्य कार्यक्रम में श्री ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन के साथ बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने पूर्व अमेरिकी प्रशासन पर चीन को अमेरिका का फायदा उठाने देने का भी आरोप लगाया। श्री ट्रंप ने चीन से संबंधित अपनी टिप्पणियों को पश्चिम एशिया में व्यापक तनाव और हॉर्मुज़ डमरू मध्य बंद किए जाने की चिंताओं से जोड़ा। उन्होंने कहा कि चीन को अपने तेल भंडार का लगभग 40% हिस्सा हॉर्मुज़ से प्राप्त होता है। श्री ट्रंप ने कहा कि शी चिनफिंग के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ताओं में ऊर्जा और ईरान प्रमुख विषय होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: बांग्लादेश में क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
3: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। स्वास्थ्य सेवा में नर्सों के योगदान को मान्यता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। फ्रेंच रिवेरा में स्वतंत्र सिनेमा का वार्षिक उत्सव कांस फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। जॉन ट्रिवोल्टा, एडम ड्राइवर और बारबरा स्ट्रीसेंट सहित कई सुपरस्टार रेड कारपेट पर नजर आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत और श्रीलंका सदियों से विकसित सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों से जुड़े हैं और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जाँच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए आपको लिए चलते हैं नए तरानों की ओर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान के गाए फिल्म धुरंधर के एक गीत केस।

0: पहले तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने, कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादा फरीदी और अल्तमश फरीदी के सुरों में आपको सुना रहे हैं फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का एक गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुना रहे हैं फिल्म इज रईस से। इस गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की।

0: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रेया घोषाल की मीठी सी आवाज में आपको सुनवा रहे हैं बाजीराव मस्तानी का ये गीत।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं समय कार्यक्रम फिल्म संगीत। राज दो, यह फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तोशी शाबरी की आवाज में।

श्रोता मित्रों नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम। पूर्वाहन के 11 बजे हैं और अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए और अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए करिए हमें फ़ोन। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। कार्यक्रम में आज आपसे बात करेगी आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे।

0: तो इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हुई और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम में आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: जी
1: हम राकेश सिंह भैया मेजा प्रयागराज से बोल रहे हैं।
0: प्रयागराज से राकेश सिंह जी बोल रहे हैं। बहुत स्वागत करते हैं राकेश जी आपका कार्यक्रम में। आप हमारे पहले कॉलर हैं तो बताइए क्या करते हैं आप।
1: हम बहुत अच्छे हैं मैडम जी। हमारे तरफ भी बहुत गर्मी तेज पड़ रहा है।
0: अच्छा, गर्मी तेज हो रही है आज। मतलब इधर एक दो दिन तो बारिश हुई होगी।
1: जी मैडम, हुई थी हमारे तरफ।
0: अच्छा, तो अब थोड़ा गर्मी तो पड़ेगी, मई का महीना चल रहा है ना।
1: जी मैडम जी, बहुत गर्मी पड़ रहा है।
0: चलिए, गर्मी का भी आनंद लेना चाहिए ना
1: जी मैडम,
0: क्योंकि उसके बाद जब किसी दिन बारिश होती है तब पता चलता है आहा क्या सुकून मिल रहा है।
1: जी मैडम
0: जी। और राकेश जी बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको।
1: को लाडला फिल्म में गाना सुनवा दीजिए। गाना है उंगली पकड़ के चला, ऐसे गाने बोल है मैडम।
0: तेरी उंगली पकड़ कर चला।
1: जी मैडम, हम 2 महीने बाद फोन कर रहे हैं।
0: जी 2 महीने बाद कर रहे हैं। चलिए
1: जी मैडम जी, हम जल्दी लगाते नहीं हैं, सोचते हैं कि और श्रोताओं का मौका मिले।
0: बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छा संदेश आपके माध्यम से हमारे बाकी श्रोताओं को मिलेगा।
1: लेकिन प्रोग्राम हम आपका सुनते हैं, जब जब हमको टाइम मिलता है ना तो हम सुनते हैं, लेकिन इसमें शादी विवाह के भी चल रहा है।
0: अच्छा, नहीं ठीक है, जब टाइम मिलता है आप सुनते हैं, काम भी करते हैं और शादी ब्याह।
1: हम डीटीएच पे भी सुनते हैं, रेडियो भी रखे हैं, उससे भी सुनते हैं।
0: अच्छा, राकेश जी बहुत अच्छी बात है।
1: 3 महीना हुए हम लगाए थे डीटीएच, अपने घर में लगवा लिए।
0: अच्छा, चलिए आज आपने फोन लगाया और आपका फोन भी लग गया।
1: जी मैडम, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, गाना आपको सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: और आइए अब देखते हैं कौन से कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैम
0: जी नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं संगम नगरी प्रयागराज से लालमणि बोल रहा हूँ।
0: लालमणि जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप हमारे दूसरे कॉलर हैं, है ना, जो प्रयागराज से हमें
1: जी
0: फ़ोन कर रहे हैं जी। और लालमणि जी, क्या हाल हैं?
1: बढ़िया है मैडम जी।
0: बढ़िया हैं, रेडियो सुन रहे हैं क्या, के साथ कोई काम भी कर रहे हैं?
1: मैं भी इस समय तो रेडियो भी सुन रहे हैं, इस समय दोपहर में कोई काम करने का कोई मतलब ही नहीं।
0: गर्मी
1: और
0: बहुत
1: इस
0: हो रही
1: समय
0: है
1: वैसे भी अब खेती
0: जी।
1: बाड़ी से फुर्सत हो चुके हैं, थोड़ा ताजी का मौसम चल रहा है।
0: तो चलिए बढ़िया है, शादी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, वो
1: जी
0: भी निपटाइए, शादी ब्याह भी निपटाइए और हमारे कार्यक्रम भी सुनिए। बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको।
1: जी मूवी है सन्यासी, और गाने के बोल हैं कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही गई है इस गाने में, क्यों लालमणि जी?
1: जी जी
0: जी तो सुनवा दें आपको
1: जी
0: जी।
1: जितने

0: और आइए अब देखते हैं कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटरा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से आपका नियमित तो करीब 16 साल पुराना श्रोता अमित तिवारी बोल रहा हूँ।
0: अनूप तिवारी जी?
1: अमित तिवारी।
0: अमित तिवारी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है, और आप काफी लंबे समय से हमारे कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, कैसे लगते हैं?
1: आप कौन बोल रही हैं मैम?
0: जी, मैं शिखा दुबे बोल रही हूँ।
1: जी, आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: और क्या होता है मैम, वैसे तो आप लोगों की आवाज, हालांकि हर व्यक्ति की आवाज में कुछ ना कुछ अंतर तो ईश्वर ने आवाज जो है अलग हट के दी है।
0: जी जी।
1: लेकिन क्या होता है, जब आप सभी देवियाँ सूर्य पर होती हैं तो सबकी आवाज एकमय हो जाती है। ये लगता है कि अब कौन सी दीदी का नाम ले लूं।
0: जी हाँ जी, मतलब हमारी आवाजें मिलने लगती हैं हमारे श्रोताओं को, कि एक सी लगती हैं सबकी आवाजें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: मैम एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ।
0: जी बोलिए।
1: कि दीपक में अगर नूर ना होता, दीपक में यदि नूर ना होता, तन्हा ये दिल मजबूर ना होता, तो तन्हा ये दिल इतना मजबूर ना होता, वो हम काय को रोज रोज आकाशवाणी लखनऊ में फोन लगाते, हम काय को रोज रोज आकाशवाणी लखनऊ में फोन लगाते, क्योंकि ये दिल इतना मजबूर ना होता, फिर भी दिल ही इतना मजबूर ना होता।
0: जी, आपका दिल इतना मजबूर हो जाता है कि आप हमें फोन लगा ही लेते हैं, है ना? तो ये तो बहुत अच्छा।
1: ये मान के चलिए कि आकाशवाणी लखनऊ में फोन लगाना और पत्थरों से टकराने के बराबर कम नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ जाती है। और कल मैम हमारी घंटी दो बार गई है
0: जी जी,
1: तो हमारा रिसीव नहीं हुआ, तो कल शायद कार्यक्रम नहीं गया।
0: नहीं, कल ये कार्यक्रम नहीं गया था
1: जी जी,
0: क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जा रहा था, तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: कार्यक्रम नहीं गया था। लेकिन आपने कोशिश करी।

0: कि आज भी आपने कोशिश करी, फोन लग गया है ना?
1: जी, आज तो हमारा बहुत जल्दी लग गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि आप लोग हमारे फोन का इंतजार ही कर रहे हो, क्योंकि आप लोग भी ऐसे ऐसा नहीं है कि श्रोता और आप लोग जो हैं एक दूसरे के पूरक ना हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे लोग ऐसा रिश्ता नाता जुड़ जाता है कि आप और हम एक दूसरे के बन जाते हैं।
0: अमित जी बहुत सही बात कही आपने, और बता दीजिए अब गाना कौन सा सुनवा दें आपको।
1: जैसा कि मैम शादी विवाह का जो माहौल चल रहा है, तो उसमें एक गीत है रवि के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन आवाज, फिल्म का नाम है नील कमल, गीत के बोल है बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बहुत ही फिल्म
0: जी, बहुत भावुक करने वाला विदाई गीत है ये, है ना? तो चलिए हम आपको सुन,
1: बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कुछ दोस्त मित्र हैं जिनको ये डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं ये गीत।
0: चलिए नाम ले लीजिए
1: जी। हमारे जैसा कि नियमित श्रोता है प्रेमदास बाबा जी, और हमारे मनकारी से फूलचंद पाल हैं, और सुरेश कुमार सैनी जी हैं अजनर से, और हमारे सिमरान पांचाल हैं, देवी जी अहरवार हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, नरेश कुमार प्रजापति जी भी हैं, और सभी लोगों का जराज लोधी भी है, सभी लोगों के लिए,
0: सभी लोगों
1: सत्येंद्र कुमार चंदोड़िया पजौनिया।
0: चलिए चलिए हम सबको ये गीत सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ओके, नमस्कार,
0: नमस्ते, धन्यवाद।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और इस कार्यक्रम में अगर आप भी हमें फ़ोन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो करिए हमें फ़ोन। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। कार्यक्रम में आज आपके साथ हूं मैं शिखा दुबे और आइए अब देखते हैं हमारे साथ कौन से कॉलर जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो नमस्कार मैम।
0: जी नमस्ते।
1: ग्राम नगला काशियान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साहब की बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह जी बात कर रहे हैं?
1: जी
0: जी रूप सिंह जी।
1: और कैसे हैं मैम?
0: जी हम तो बहुत अच्छे हैं। और आप बताइए क्या कर रहे हैं इस समय?
1: इस समय मूंगफलियों की देखभाल हो रही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा बढ़िया है, मूंगफली की देखभाल कर रहे हैं। हम लोग को जाड़े में मूंगफली खाने को मिलेगी।
1: और आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं।
0: बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपना काम भी करते रहते हैं, हमारे कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं और साथ ही फोन भी लगाते हैं।
1: जी जी
0: है ना। तो बताइए कौन सा गाना आप सुनवा दें आपको?
1: फिल्म है राजा, फूल मांगू ना बाहर मांगू मैं तो।

0: सनम तेरा प्यार मांगू, और कुछ डेडिकेट करना चाहूंगा दोस्तों को।
1: बोलिए किनको डेडिकेट?
0: शर्मा है, रोशन लाल साहब के हैं, दीपक साहब के हैं, और सतीश चंद है फरुखाबाद से
1: जी।
0: और आपको और आकाशवाणी लखनऊ को पूरी और सभी श्रोताओं को सुनवाना चाहूंगा।
1: चलिए मेरी तरफ से अभी शुक्रिया ले लीजिए और सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।

0: और अब हमारे साथ जुड़े हैं लक्ष्मण सिंह जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: जी। नमस्ते लक्ष्मण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल मैम, सर 6 महीने से ट्राई कर रहा सर, आज कॉल लगी कहानी से।
0: 6 महीने से? अरे वाह। इससे सबसे पहले हमारे जो कॉलर थे वो हमें 2 महीने बाद उन्होंने फ़ोन किया था, और आपने 6 महीने बाद हमें, मतलब खैर कॉल तो लगाते रहे होंगे, लग नहीं रही होगी।
1: बिल्कुल ट्राई करा था लेकिन लग नहीं पाता है, लाइन बहुत बिजी चल रही है सर।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आज आपसे

0: बात हो रही है। और बताइए, अब कुछ कहना चाहते हैं, इतने दिन बाद आपका फोन लगा है, तो कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए।
1: नहीं कुछ नहीं मैम, कहा है तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है मैम, और ब्याह शादी की पड़ी है बहुत ज्यादा।
0: अच्छा, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो
1: जी,
0: आप लोग सब लोग इसमें बिजी चल रहे हैं।
1: बिल्कुल मैम।
0: जी चलिए बताइए, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: मोहम्मद अजीज और लता जी की आवाज में सर, ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले।
0: अच्छा, ये अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में गाना है ना
1: हाँ,
0: जी।
1: और
0: तो
1: कुछ मित्र हैं मैम, दो चार मित्र, उनको नाम लेना चाहते
0: हाँ, अब
1: हैं।
0: आप 6 महीने बाद आपकी कॉल लगी है तो आपको तो ये छूट देनी ही पड़ेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम। ओम प्रकाश नेमा जी हैं, मांगीलाल चंदेल हैं,
0: जी
1: और विपिन कटारे हैं, गोलू भाई हैं, और राम सखी परमानंद जी हैं।
0: अच्छा, तो चलिए सबको सुनवा देते हैं ये गीत, और फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम।

0: और कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और ये देखते हैं शबनम जी हमसे जुड़ी हैं, वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, आदाब।
0: आदाब, नमस्ते, क्या हाल है शबनम जी?
1: जी दीदी, हमारे बहुत अच्छे हाल हैं। आप बताइए, आप कैसे हो? सभी स्टाफ के लोग कैसे हैं?
0: सब लोग बहुत अच्छे हैं। और बताइए क्या कर रही थी?
1: बस कुछ नहीं कर रहे थे, पार्लर में बैठे थे और बरसात हो रही है और कार्यक्रम सुन रहे थे और कॉल लग गई। बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, आपकी तरफ बरसात हो रही है?
1: जी दीदी,
0: रामपुर से आप बोल रही हैं? कहाँ से?
1: जी जी,
0: है
1: मैं हूँ दीदी। हाँ। जिला रामपुर, ग्राम खंडिया, एक मीनार वाली मस्जिद के पास आज शबनम अब्बासी आपको मुखातिब हूँ।
0: हाँ जी, हमें आपका नाम तो अच्छे से याद था, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ से बात कर रही हैं। तो पानी आपकी
1: जी
0: तरफ गिर रहा है, इसलिए आपने गाना भी ऐसा ही चुना है ना?
1: दीदी, हमें
0: जी
1: आप लोगों की आवाज बहुत अच्छी लगी। आप लोगों से इतनी मोहब्बत है कि हमारा दिल बेकरार हो जाता है, कॉल लगाने को हम बेताब हो जाते हैं।
0: चलिए, आपकी बेकरारी इसी तरह कायम रहे, आप हमें फोन लगाती रहें और आपसे बात करके हमको भी बहुत खुशी
1: जी
0: होती है।
1: दीदी, कहते नहीं है दीदी, जिसकी चाहत में हम दीवाने हो गए, जिसकी चाहत में हम दीवाने हो गए, वही हमसे बेगाने हो गए। शायद उन्हें तलाश है नए प्यार की, क्योंकि उनकी नजर में हम पुराने हो गए।
0: अरे भाई, आकाशवाणी लखनऊ की नजर में आप पुरानी कभी नहीं होंगी, आपसे प्यार हमेशा कायम रहेगा, ठीक है? तो
1: जी दीदी,
0: जी, तो शबनम जी
1: दीदी
0: बता जी। हाँ
1: मैंने गाना आपको बता दिया दीदी, और
0: हाँ
1: दो नाम लेना चाहती हूँ।
0: हाँ ले लीजिए।
1: जैसे संग में है शारून नूर अंसारी और संग में आप और हसीना भी मंसूरी।
0: चलिए, तो हम भी, बरसात लखनऊ में नहीं हो रही है लेकिन आपके गाने से हम उसका आनंद उठाते हैं, है ना? तो
1: दीदी,
0: बरसात
1: सभी
0: में
1: श्रोताओं
0: जब
1: के लिए गाना सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सभी खुश रहिए।
0: जी बिल्कुल, आप भी खुश रहिए। और बरसात में जब आएगा सावन का महीना, तो आपकी तरफ लग रहा है सावन का महीना बरसात के साथ आ गया है। तो शबनम जी, सुनवा देते हैं आपको ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ जुड़े हैं रमेश प्रजापति जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: जी। नमस्कार रमेश जी, और कहाँ से बोल रहे हैं ये आप जरूर बता दीजिए।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, और रमेश जी क्या हाल हैं आपके?
1: हेलो।
0: हाँ हाँ, क्या हाल है रमेश जी?
1: बढ़िया, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: दुकान में बैठ के आज का आपका हाँ प्रोग्राम सुन रहा हूँ। मस्त आराम चल रहा है आपका प्रोग्राम, बहुत सरन चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया चला रहा हूँ।
0: जी जी बिल्कुल,
1: और आनंद ले रहा हूँ। दुकान में काम कर रहा था, सोचा लगा लूँ आज फोन, तो लग भी गया।
0: अरे वाह, आज मतलब बहुत अच्छा दिन है कि जो जो लोग फोन लगा रहे हैं सबका फोन लग जा रहा है।
1: जी
0: रमेश जी बताइए, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: फिल्म का नाम है आन मिलो सजना, तेरे कारण मेरे साजन, फिल्म के गाने के बोल है।
0: अच्छा,
1: और कुछ मित्रों को याद कर लूँ आपकी इजाजत हो तो?
0: आप लोग मित्रों को बहुत याद करते हैं, कर लीजिए याद।
1: जी, दो दो चार ज्यादा नहीं।
0: अच्छा,
1: भगवान सिंह परमार जी, पूनम वर्मा जी, गजराजलो जी, केसरी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदे राजपूत जी है, संगीता
0: हाँ,
1: जी है,
0: हाँ,
1: और पूनम जी है कानपुर से,
0: अच्छा,
1: और अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, और गोल्डी जी है।
0: चलिए आपकी लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन ठीक है, आपके सारे दोस्तों के नाम हो गए ना?
1: जी
0: जी। तो रमेश प्रजापति जी, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फोन
1: जी
0: करने के लिए
1: धन्यवाद मैम।
0: शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं प्रेम सिंह सिसोदिया जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: शिखा जी नमस्ते जी।
0: नमस्ते प्रेम सिंह जी, क्या हाल हैं आपके?
1: थोड़ी आवाज़ कम आ रही है आपकी।
0: आवाज़ कम आ रही है।
1: हाँ जी, अभी ठीक आई
0: अच्छा, और
1: जी। मैं
0: बताइए।
1: ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ प्रेम सिंह जी, क्या हो रहा है? रेडियो सुन रहे हैं कि कुछ साथ में काम भी चल रहा है?
1: जी अभी अभी तो काम कुछ भी नहीं शिखा जी, मोबाइल पर आपके कार्यक्रम सुन रहा हूँ
0: अच्छा।
1: आकाशवाणी लखनऊ के। अभी हमारे दोस्त रमेश जी का कॉल आया था, उससे पहले ज्यादातर लोग मतलब है ना आपको बताऊं आकाशवाणी लखनऊ के ही दीवाने हैं।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है कि आप सबको आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम इतने पसंद आते हैं, और आपकी इन लोगों से दोस्ती रेडियो के माध्यम से है कि आप लोग पर्सनल भी एक दूसरे को जानते हैं?
1: जी रेडियो के माध्यम से ही है हमारी दोस्ती, और मतलब मोबाइल द्वारा हम एक दूसरे से बातें भी करते रहते हैं,
0: अरे वाह,
1: बट कभी एक दूसरे को आमने सामने देखा नहीं है हमने।
0: अच्छा। अरे तो
1: जी
0: फिर
1: हाँ
0: वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देख भी लीजिए, आप लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं, है ना?
1: जी हाँ शिखा जी, कुछ लोगों को देखा है, लेकिन जैसे बिना देखे बात होती है ना तो और भी इंटरेस्ट रहता है।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छा आपने आपने बात कही। प्रेम सिंह जी बताइए, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: जी फिल्म का नाम है राज, और गाने के बोले इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को न चाहे। ये गाना मैं आकाशवाणी लखनऊ को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना चाहता हूँ आकाशवाणी लखनऊ को कि कोई किसी को नहीं चाहे।
0: अरे वाह, बहुत
1: जी
0: बहुत
1: एक बात
0: शुक्रिया।
1: इसीलिए मैं बताना चाहूंगा शिखा जी आपको, आकाशवाणी लखनऊ के लोग इतने दीवाने इसलिए हैं क्योंकि जब इनका कॉल एक बार वहां पे कनेक्ट हो जाता है ना तो फोन रिसीव जरूर होता है, बट किसी मतलब बहुत सारे आकाशवाणी पे फोन लगता रहता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होने की वजह से ना उससे श्रोता कम जुड़ते हैं।
0: अच्छा चलिए, आपने हमको फोन लगाया और आपसे बात भी हो गई प्रेम सिंह जी, तो आपकी पसंद का गाना भी हम आपको सुनवा दें।
1: जी बिल्कुल शिखा जी, एक
0: जी
1: बात और है, जैसे कि अभी हमारे तीन दोस्त थे हम आकाशवाणी लखनऊ के,
0: हाँ
1: मैं मेरा दोस्त रमेश टेलर जी और भगवान सिंह जी। अभी उन्होंने कहा कि ज्यादातर कौन अभी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो हमें एमपी से पहुंचना है, तो जैसे उन्होंने कहा रमेश जी पहुंचे फिर मैं पहुंचा, अभी उनकी बारी है। जी
0: अच्छा चलिए, आपको आपकी पसंद का गाना हम सुनवा देते हैं, अपने मित्रों के साथ आनंद लीजिए इसका, ठीक है?
1: जी
0: फोन
1: थैंक
0: करने
1: यू
0: के लिए
1: सो मच शिखा
0: शुक्रिया।
1: जी, मुझे
0: जी
1: आपसे बात कर सकते हैं बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया।
1: जी

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और कार्यक्रम धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। और आपने अगर हमें कॉल नहीं की है और कॉल करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। और इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं त्रिपुरा से संगीता जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: नमस्कार मैम, राधे राधे।
0: नमस्ते राधे राधे। संगीता जी क्या हाल है आपके?
1: जी हाल चाल बढ़िया है मैम, और पिछले 6 महीने बाद आज कॉल लगा, बहुत खुशी हुई है मेरे मन में।
0: किसी की 6 महीने बाद लग रही है, किसी की 2 महीने बाद लग रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं हमसे बात करने की, है ना? तो बताइए संगीता जी, कौन सा गाना सुनवा दें?
1: जी मुझे सुना दीजिए बोल राधा बोल टाइटल सॉन्ग
0: जी,
1: और कुछ दोस्तों को याद करती हूँ। जी पहले आप सुनेंगे और रमेश भैया, कृष्ण भैया, भगवान भैया, मांगीलाल जी और प्रेमदास बाबा जी, गोपीनाथ भैया, सबको लेकर सुनना है।
0: चलिए मेरी तरफ से तो अभी हम आपको थैंक्स भेज दे रहे हैं ना, और सब लोग सुनिए इस गीत को। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के हमारे अंतिम कॉलर कौन हैं, आइए जानते हैं और करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार
0: जी नमस्ते, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ।
0: जी अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। और
1: जी
0: बताइए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और
0: जी
1: देखिए,
0: हाँ,
1: जब लखनऊ में कॉल करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मेरा आखिरी कॉल है आज के कार्यक्रम का, तो मैं भी बात दो चार कर लूंगा, तो मेरे दोस्त भी बात कर लीजिए। दो दो बातें
0: बस दो ही बातें करिएगा, वरना गाना आप सुन नहीं पाएंगे पूरा।
1: जी जी
0: जी हाँ
1: हेलो
0: बताएं।
1: मैम, गुड
0: जी
1: मॉर्निंग
0: जी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही हैं?
1: मैम, कैसी हैं? मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से।
0: अच्छा, कानपुर से पूनम जी और आप त्रिपुरा से अविनाश जी। अरे अच्छा।
1: देखिए मैम, रेडियो का कितना अच्छा माध्यम है कि कहाँ कहाँ से हम सब सोचा एक साथ जुड़े हुए हैं।
0: सही बात है, और हमको पता ही नहीं चल पाता कि आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़ गए, है ना, कहाँ त्रिपुरा कहाँ
1: जी।
0: कानपुर। तो चलिए पूनम जी, टाइम बहुत कम है, गाना बता दीजिए।
1: जी मैम, गाना आप सुना दीजिएगा, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया, डाक्टर फायर फिल्म का गाना है। और ये गीत मैं स्पेशली आपको, रिंकी पिंकी जी को, और भगवान सिंह जी को, और रमेश जी को, और राम बाबू शर्मा जी, फूलचंद पाल जी, सभी को गीत डेडिकेट है।
0: चलिए थैंक्स, और आप सभी सुनिए ये गीत और अविनाश जी से कहिएगा कि इन्होंने आज मुझे धोखा दे दिया, है ना।
1: नहीं,
0: चलिए
1: अविनाश जी धोखा नहीं दे रहे हैं,
0: हाँ
1: फिलहाल
0: हाँ
1: सुन रहे हैं। बोल दीजिए अविनाश जी।
0: जी
1: जी जी जी
0: जी जी
1: बिल्कुल
0: अविनाश जी, चलिए आप और पूनम जी दोनों, और आपने जितने साथियों के
1: जी,
0: नाम लिए हैं
1: बिल्कुल
0: पूनम जी
1: बिल्कुल,
0: ने,
1: धन्यवाद
0: सब लोग सुनिए गीत,
1: जी,
0: ठीक
1: बहुत
0: है
1: बहुत शुक्रिया मैम, बाय
0: जी।
1: बाय।
0: बाय बाय।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त शिखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
1: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए, और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
1: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
1: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
1: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
1: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: जी,
1: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की

0: क्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ। क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है।
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है।
0: जी
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है।
0: जी
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है।
1: जी
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे हैं?
3: हाँ।
4: अच्छा, तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
3: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से
3: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आओ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।

0: आहा,
1: इसकी खुशबू कितनी अच्छी है।
0: वाह, मजा आ गया। कितना मीठा आम है।
1: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
0: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
1: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
0: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
0: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
1: कोशिश करता हूँ।
0: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलो देखो। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यहीं पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
0: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
1: विद्या, विद्या।
0: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
0: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
0: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
0: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर। इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
0: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ।
4: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ।
4: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
0: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से 1 फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी जा।
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
2: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
0: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है।
0: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
0: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबाल कर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज,

0: खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
1: जी।
2: और अगर लू लग जाए तो
1: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
2: जी।
0: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
2: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
1: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
2: जी।
1: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
2: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
3: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
5: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
4: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
4: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
4: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
4: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
4: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
4: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे साधे

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा, पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय

0: लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक एल्बर्ट इक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक एल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। एल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक एल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में एल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक एल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT।

0: दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक का अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव के मीटर पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है सदाबहार नगमे।

कार्यक्रम का आरंभ करते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के गाए इस गीत से, जिसे हमने लिया है फूल प्यार किए जा फिल्म से। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है आंसू बन गए फूल फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्तरोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की 747 किलोहर्ट्ज़ पर, और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं मन मंदिर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे, और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, संगीत मदन मोहन का, बोल राजेंद्र कृष्ण के।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म गैम्बलर से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल नीरज के, संगीत एसडी बर्मन का।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंता बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष

अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्रीमती प्रीति वाजपेयी, पत्नी स्वर्गीय राकेश कुमार वाजपेयी, निवासी 138 विजयनगर थाना कृष्णा नगर जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि प्रतीक वाजपेयी दिनांक 6 अप्रैल 2026 से लापता हैं। प्रतीक की आयु 38 वर्ष, कद 5 फीट 7 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, इकहरा मजबूत शरीर है। गुमशुदगी के समय इन्होंने नीली टी शर्ट और नीली जीन्स पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9839680167। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9839680167। सुरेश कुमार गौतम ने सूचित किया है कि अंकिता गौतम 1 अप्रैल 2026 से लापता हैं। अंकिता की आयु 19 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल और इकहरा शरीर है। इन्होंने ग्रे रंग की समीज, सफ़ेद सलवार, काला दुपट्टा ले रखा था। श्रीमती सुखरानी, पत्नी स्वर्गीय अधीन, निवासी छुआरा खेड़ा, थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि आनंद कुमार उर्फ नंदा दिनांक 31 मार्च 2026 से लापता हैं। आनंद कुमार की आयु 30 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और इकहरा मजबूत शरीर है। इनकी दाई आंख में टेढ़ापन है। गुमशुदगी के समय इन्होंने नीले रंग की बनियाइन और जीन्स पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 8090357497। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें

फाइव सेवन फोर नाइन सेवन। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया तनाज़ों को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी ज़राए पर बोझ कम करने के लिए आवाम से एकजुट होने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्की आवाम पर कम से कम असर पड़े।
4: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
3: वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से सात निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
4: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
3: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में यह जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाके वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुजरा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वुजरा और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वुजराए आला भी इजलास में मौजूद रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ्फुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इस्लाह हुई है। उन्होंने कहा

0: मुजरिमों के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाजो तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जाँच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरूरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर इज़िला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज़ आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

0: धूप की तपिश में छांव का वरदान है, उजड़ी हुई इस कोख का नव प्राण है। ये मात्र रंग नहीं, सृष्टि की धड़कती हुई जान है। हर मरते हुए अंश में फूकती नया प्राण है। मिट्टी को जीवन दान दे, जो अंबर से मिला दे, ब्रह्मांड के हृदय में छिपी एक दिव्यतान है, हरियाली। नमस्कार श्रोता सखियों, अपराजिता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी सखी रंजना।
1: और मैं हूँ आपकी सखी इरम। सखियों को मेरा भी नमस्कार।
0: इरम, तुमने कभी सोचा है ये शुद्ध हवा, कलकल करती नदियाँ और हरियाली हमसे धीरे धीरे दूर क्यों हो रहे हैं?
1: मुझे लगता है रंजना कि हम आधुनिकता की चकाचौंध में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने पर्यावरण पर ध्यान देना ही भूल गए हैं।
0: बिल्कुल, लेकिन अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही सुंदर नज़ारे देख पाएंगी।
1: सही कहा तुमने, प्रकृति को बचाना सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हमारी प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, इसी से हमारा जीवन है और यही आज संकट में है। चाहे प्रदूषण की बात कर लो, वनों की कटाई की बात कर लो, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे समाज में कई बार छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी क्रांति लेकर आते हैं।
0: सही कहा इरम, मुझे याद आता है चिपको आंदोलन, जहां साधारण महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया। और आज भी हमारे बीच ऐसे कई पर्यावरण योद्धा हैं जो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं।
1: पेड़ है तो जीवन है का संदेश देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि पर्यावरण और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में रंजना, तुमने अपिको आंदोलन के बारे में तो सुना होगा।
0: हाँ हाँ, जो शायद 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से शुरू हुआ था।
1: बिल्कुल सही कहा, ये आंदोलन वन संरक्षण की एक बड़ी मिसाल बना। इसने देश के

0: कई पर्यावरण अभियानों को नई सोच दी और आज भी ये याद दिलाता है कि जब लोग मिलकर आगे आते हैं तो प्रकृति की रक्षा संभव हो जाती है। और राजेंद्र सिंह के योगदान को भी कैसे भुलाया जा सकता है, उन्होंने लोगों के सहयोग से रंजना सूखी नदियों को फिर से जीवन देने का सराहनीय काम किया।
1: बहुत अच्छी बात कही इरम तुमने। और देखो आज युवा पीढ़ी भी हमारी जो है वो जागरूक हो रही है, लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, किचन वेस्ट से खाद बना रहे हैं। और मुझे लगता है समाज में अगर हम छोटे छोटे इस तरह से बदलाव करेंगे तो समाज सुधरना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल। और सखियों, अपराजिता कार्यक्रम के माध्यम से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि प्रकृति को बचाना मुश्किल नहीं, बस आदतों में थोड़ा सा बदलाव चाहिए है।
1: बिल्कुल। और ये भी याद रखिए कि जब हमारा पर्यावरण मुस्कुराएगा तो हमारा कल भी सुरक्षित रहेगा।
0: रंजना, आज हम पेड़ पौधों की बात क्यों कर रहे हैं जानती हो?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, बताइए।
0: देखो, हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाता है। इसलिए
1: अच्छा, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जैसे हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं वैसे ही पौधों की सेहत का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है।
0: इसीलिए सखियों, पेड़ पौधे सिर्फ घर की रौनक नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे आसपास सुकून और ताजगी भी घोलते हैं।
1: और पेड़ पौधे हैं तो हमें उनसे स्वच्छ हवा, संतुलित वातावरण और जीवन की ताजगी भी मिलती रहती है। लेकिन अक्सर हम पौधे लगा तो लेते हैं पर उनकी सही देखभाल कैसे की जाए ये समझ नहीं पाते।
0: रंजना, ये परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि बहुत से लोगों की है। इसलिए आज हम सखियों के लिए लेकर आए हैं ये उपयोगी बातचीत। विषय है कैसे रखें पौधों की सेहत का ख्याल। इस विषय पर नीति गुप्ता जी से बातचीत की है हमारी ममता उपाध्याय दी ने। चलो सुनते हैं।
1: चलिए।
2: हेलो, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? हाल कैसा है जनाब का? आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल मैं आप श्रोताओं से कर रही हूँ। नहीं भाई, मैं ये सवाल उनसे कर रही हूँ जो हमारी धरती को हरियाली देते हैं, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, रंग बिरंगे फूलों से धरती को सजा देते हैं और सबसे बड़ी बात वो हमें भोजन देते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवाल है पेड़ पौधों से, जिनसे हम कभी नहीं पूछते कि उनका हाल कैसा है। और उनका हाल चाल जानने के लिए ही 12 मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। और आज पौधों की सेहत की देखभाल, उनका ख्याल रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर हमें टिप्स देने के लिए हमारे स्टूडियो में आई हैं नीति गुप्ता जी, जो पर्यावरण मित्र हैं। तो नीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप पौधों के साथ?
3: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे पेड़ पौधे भी बहुत ही अच्छे हैं
2: जी। तो आप अपने पेड़ पौधों का ख्याल रखती हैं, उनके साथ आपको बहुत खुशी महसूस होती होगी। तो जो हमारी श्रोता हैं वो भी अपने पेड़ पौधों की देखभाल अच्छे से कर सके, इसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप उनको?
3: जी बिल्कुल। देखिए, पौधों की देखभाल करने के लिए कुछ हमारे चुनिंदा चीज़ें हैं जिन पे हमको बेहद ध्यान रखना पड़ता है
2: जी।
3: जैसे कि मिट्टी, पौधों की मिट्टी अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए
2: जी।
3: ऐसी नहीं हो कि जिसमें पानी अंदर मरे, क्योंकि पानी ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है पौधों की जड़ के लिए
2: जी।
3: जड़ों को सांस लेने की जरूरत होती है। तो मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो पेड़ पौधे अच्छे से पनप पाएंगे।
2: अक्सर हम देखते हैं कि गमले के ऊपर की मिट्टी वो सख्त हो जाती है ना, तो उसको भुरभुरा रहना चाहिए।
3: भुरभुरा रहना चाहिए क्योंकि नियमित रूप से आपको उसकी गुड़ाई भी करनी पड़ेगी। गुड़ाई ही एक मेन जरिया है जिससे आप अपने पेड़ पौधों को, उनकी जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं
2: जी। तो नीति जी, यदि हमें गुड़ाई करनी है तो क्या टिप्स देना चाहेंगी इस विषय में?
3: बिल्कुल, गुड़ाई करने के लिए जैसे आपको शाम को गुड़ाई करनी है तो आप सुबेरे पानी दे दीजिए। मिट्टी आपकी गीली बिल्कुल ना हो, हल्की सी नम मिट्टी चलेगी या फिर सूखी। हल्के हाथ से ऊपर की 1 इंच की धीमे धीमे करके बिना जड़ों को नुकसान पहुंचाए आप मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद तुरंत पानी मत दीजिए, हल्का जड़ों को हवा लगने दीजिए, उसके बाद आप अगले दिन पानी दे सकते हैं
2: जी।
3: तो मैंने गुड़ाई की बात करी तो गुड़ाई का एक फायदा मैं और बता दूं आपको, उससे हमारे जो खरपतवार निकलते हैं
2: जी
3: गमलों में या हमारे बगीचों में
2: जी जी,
3: सबसे बड़ा हमारा फायदा गुड़ाई का उसी से है कि
2: अच्छा।
3: खरपतवार जो हमारी उपज होती है
2: हाँ।
3: उसको वो नहीं होने देती है।

0: सारी ऊर्जा मिट्टी की ले लेते हैं, सारे उर्वरक जो हैं वो खुद अपने आप में समा लेते हैं और पौधे हमारे जो हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है।
1: अच्छा, मिट्टी में बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए?
0: मिट्टी में कंकड़ पत्थर तो हम ऑलरेडी इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है हवा के लिए कुछ तो हमको मिट्टी के अंदर मिलाना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: केवल मिट्टी से हम अपने पौधे के लिए सारे पोषण तत्व नहीं जुटा सकते। मिट्टी में हमारे पास खाद भी रहेगी, हमारे पास खादों में वर्मी कंपोस्ट, सड़ा हुआ गाय का गोबर है, साथ में हम मोरंग भी इस्तेमाल करते हैं, चावल की भूसी जो होती है वो इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो पत्तियों का कंपोस्ट होता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। इससे जो हमारे सॉइल के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, एरिएशन रहता है, जिसको कहते हैं हम
1: हवा बनी रहती
0: हवा
1: है।
0: बनी रहती
1: अच्छा,
0: है।
1: तो मिट्टी की बात हुई और गुड़ाई की बात हुई, खरपतवार निकालने की बात हुई। अब पानी की बात यदि हम करें तो पानी देने का समय क्या होना चाहिए और कितनी मात्रा में किन पौधों को पानी देना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: देखिए, हमें पानी देने का ये मतलब नहीं है कि पूरे पूरी जगह पे हम गमले में या अपने क्यारियों के अंदर पानी पूरा भर दें।
1: हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमने पाइप लिया और क्यारी में पानी भर देते हैं या फिर हम गमले में भर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: नहीं, सबसे बड़ी गलती यही होती है। पौधा जो है हमारा पानी की कमी से नहीं मरेगा। ज्यादातर हम पानी उसको ज्यादा दे देते हैं, उसकी वजह से उसकी दुर्दशा हो जाती है।
1: अच्छा।
0: ज्यादा पानी से हमारी जो टहनियां हैं, जो पानी के संपर्क में आती है और जड़ें हैं, वो गल जाती हैं,
1: अच्छा,
0: वो ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं।
1: गर्मी में इस वक्त तो बहुत सूख सा जाता है ना, रोज सुबह भी दो तो भी शाम को लगता है कि मिट्टी हमारी बिल्कुल सूख गई है।
0: बिल्कुल, देखिए हर पौधे की अपनी अलग अलग जरूरत है पानी की। आपको पहले उन पौधों की जरूरत को समझना होगा कि कितना पानी चाहिए। गर्मियों में सुबह शाम पानी जरूर देना है। कुछ पौधे जैसे सकुलेंट्स और कैक्टस हैं, उन पे पानी देते वक्त थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ज्यादातर जितने पौधे हैं, एक बार उनको पानी से नहलाना भी गर्मियों में बहुत जरूरी है। मिट्टी आपकी अगर अच्छी होगी, भुरभुरी होगी, तो पानी हमेशा गमले के नीचे से निकल जाना
1: जी जी
0: चाहिए।
1: जी
0: तो तरीका यही है पानी देने का।
1: जी और सुबह दें, शाम दें, गर्मी में दोनों समय दें।
0: गर्मियों में दोनों समय आपको पानी देना चाहिए।
1: हाँ,
0: दोपहर में पानी देने से बचें।
1: खाद की बात भी यदि हम करें तो खाद के बारे में क्या कहना चाहेंगे, भोजन उसका क्या होना चाहिए पेड़ पौधों का? वो हमें तो भोजन देता है, पर उचित वो खाना चाहिए ना।
0: बेसिक जो हमारा भोजन होता है पौधों के लिए, वो खाद के रूप में हम सड़ी हुई गोबर की खाद, जो कि करीब 2 से 3 साल पुरानी हो, वर्मी कंपोस्ट है, आप अगर जाना चाहें तो एनपीके आता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों होते हैं, उसका बैलेंस भी आप जनरली दे सकते हैं पौधों को।
1: जी।
0: बाकी और भी कुछ अगर आप देना चाहें तो अपने नजदीकी जो नर्सरी है उससे संपर्क करके अपने पौधे के हिसाब से आप खाद का चुनाव कर
1: कर
0: सकते हैं।
1: सकते हैं जी। और बात हम करें धूप की, रोशनी की, है ना, क्योंकि हम मनुष्यों को भी रोशनी की जरूरत पड़ती है, धूप की जरूरत पड़ती है, वरना हमारा शरीर भी कमजोर हो जाता है। तो पेड़ पौधों को कितनी रोशनी की जरूरत होती है, कितनी धूप की जरूरत होती है, ये बताइए।
0: देखिए, सूर्य जो है एक बहुत अभिन्न अंग है हमारे पर्यावरण का। रोशनी की जरूरत लगभग सारे ही प्लांट्स को होती है। सारे ही पेड़ जो हैं लगभग, चाहे तो वो सीधी रोशनी लेते हैं या उसको हम लोग छन करके धूप की रोशनी देते
1: इन
0: हैं,
1: इंडोर आउटडोर की बात कर रही हैं
0: दोनों
1: आप।
0: को मैं मिला करके बता रही हूँ कि जो हमारे धूप में पेड़ रह सकते हैं उसको हम लोग आउटडोर प्लांट कहते हैं। जिन पौधों को सीधी धूप की जरूरत नहीं है उनको हम इंडोर प्लांट कहते हैं। तो इंडोर प्लांट ऐसा नहीं है कि उसको भी रोशनी नहीं चाहिए, उसको हम लोग छन की रोशनी देते हैं, या ऐसी जगह कहीं कमरे में भी अगर हम रख रहे हैं तो उसके आसपास हवादार जगह हो और उसको कहीं से भी रोशनी का स्रोत मिल रहा हो, भले ही वो हम कृत्रिम तरीके से उसको दें या फिर उसको खिड़की के आसपास रोशनी दें।
1: जिससे कई बार हम इंडोर प्लांट्स को अपने कमरे में रखते हैं, क्या बीच बीच में कभी कभी उनको धूप में भी रख लेना चाहिए, 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए?
0: सुबह की गुनगुनी धूप जो होती है, चाहे वो गर्मी हो चाहे सर्दी, सुबह की 1 घंटे की धूप पर्याप्त है।
1: जी, तो उनको भी हम दिखा सकते हैं बीच
0: बिल्कुल
1: बीच में। जी, जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको हम कितना पानी दें, कैसे पानी दें?
0: बिल्कुल, इंडोर प्लांट्स जो होते हैं हमारे, उनको रोज पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अंदर रहते हैं, उन पे सीधी धूप का प्रभाव नहीं होता है। तो पानी भी जब हम देंगे तो हमें अपनी उंगली का जो पोर है ना, उसको मिट्टी में एक बार दबा के देखना चाहिए। अगर वो 2 पोर तक अंदर जा रहा है, आपको मिट्टी नम लग रही है, तो उसको पानी की आवश्यकता नहीं है। हफ्ते में 2 से 3 बार ही आप देंगे, अपने जगह का वातावरण, अपने जगह का सीजन, मौसम को देखते हुए।
1: अच्छा नीति जी, अक्सर हम जो अपने बच्चे होते हैं घर के ना, उनको अनुशासन में रखते हैं, उनको समझाते रहते हैं भी तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, यदि अनुशासन ना रखा जाए तो बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, क्या उन्हें भी पूरी तरह से वो अपने ऊंचाई को प्राप्त करें, फल फूल अच्छे हों, उसके लिए उनकी

0: चढ़ाई करना जरूरी होता है, मतलब थोड़ी सी डांट डपट भी करनी जरूरी होती है क्या?
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है ये तो,
0: जी
1: वरना मनमानी करके कोई भी किसी भी दिशा में बढ़ जाएगा।
0: हाँ
1: पौधों की नियमित कटाई छटाई बहुत जरूरी है
0: हाँ
1: मौसम को देखते हुए, और जब भी कोई फूल जब मुरझा जाता है उसके बाद उसको भी काटना बहुत जरूरी है, या कोई फूल के बाद कभी जो फल बनते हैं, जैसे गुलाब में है, गुलाब झड़ गया और उसका फल बन रहा है, उसको आपको हटाना बहुत जरूरी है समय से, क्योंकि वो सारी ऊर्जा जो है पौधे की खींच लेता है। और सीजन जब शुरू होता है किसी पेड़ का, तो उससे पहले भी हमको थोड़ी कटाई करनी जरूरी है, ताकि उसमें नए पत्तियां और कोपल बहुत जल्दी आए।
0: जी, और क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारी सहेलियों को चलते चलते आप?
1: बिल्कुल, आजकल लोग इंडोर प्लांट में बहुत रुचि लेने लगे हैं, तो इंडोर प्लांट के लिए जैसे मैंने बताया पानी की आवश्यकता बहुत सोच समझ करके पेड़ के हिसाब से आपको देनी है। एक चीज और है कि उनकी जो पत्तियां हैं, आपने देखा होगा बहुत चमचमाती हैं पत्तियां, तो उनकी चमक को बरकरार रखने के लिए हमें उसको साफ करना भी, पोंछना भी बहुत नियमित रूप से जरूरी है।
0: अच्छा, इंडोर प्लांट्स को,
1: जी
0: आउटडोर को तो हम पानी से नहला सकते हैं।
1: जी
0: जी हाँ
1: इंडोर को रखने का मकसद यही है कि हमारे कमरे की या घर की खूबसूरती बने, तो उसकी साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, जैसे हम घर में अपने बच्चों की साफ सफाई रखते हैं।
0: नीति जी, आपने जो आउटडोर प्लांट्स की बात की या इंडोर प्लांट्स की बात की, इसके साथ साथ आजकल वर्टिकल गार्डन्स की भी बात चल रही है ना, तो ये किस तरह से इन्हें लगाना चाहिए और इनकी देखभाल करनी चाहिए?
1: बिल्कुल, देखिए आजकल जो है सबके पास जगह की बहुत कमी है, शहरों में तो खासकर जहाँ आजकल लोग फ्लैट में रह रहे हैं, बट सबके दिलों में कहीं ना कहीं एक हरियाली वाला जज्बा जरूर होता
0: हाँ,
1: है।
0: ये हमारा घर हरा भरा हो।
1: जी बिल्कुल, मैंने भी अपनी बालकनी में ऐसे ही करा है,
0: जी
1: एक वर्टिकल गार्डनिंग का सेटअप बना रखा है।
0: अच्छा।
1: आप या तो बने बनाए उनके आते हैं गमले, वो आप दीवार पे लगवा सकते हैं, या अपनी ही क्रिएटिविटी से आप बॉटल से या हैंगर से बना सकते हैं। तो उसमें पौधों का अरेंजमेंट आप इस तरह से करिए कि जिन पौधों में फूल नहीं आते हैं उनका एक तरफ कर दीजिए, और जैसे सब्जियों के पौधे लगाने हैं तो आजकल वर्टिकल टावर भी आ रहे हैं।
0: अच्छा, वर्टिकल टावर।
1: जी तो उसमें एक सिंगल टावर के अंदर अलग अलग पॉकेट्स बनी होती हैं मिट्टी के लिए, जिसके अंदर आप पौधों को लगा सकते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी से आजकल काफी लोग कर रहे हैं बागवानी।
0: जी, तो हम इस तरह से वर्टिकल गार्डन से जगह ना होते हुए भी अपने घर को हरा भरा कर सकते हैं और
1: बिल्कुल
0: वातावरण को शुद्ध कर सकते
1: जी
0: हैं। नीति जी, जो पौधे हैं वो पर्यावरण को तो हरियाली देते ही हैं, सुरक्षित बनाते हैं, भोजन की बहुत बड़ी आवश्यकता वो उसे पूरी करते हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो आप क्या कहेंगी हमारी बहनों से कि कैसे वो उनको अपने बच्चों की तरह ही देखभाल करें?
1: जी, प्रसन्नता मिलती है जब आप अपने हाथ से पौधा लगाते हैं और उससे आपको फूल फल प्राप्त होता है। चाहे छोटा से छोटा एक पौधा लगाइए, लेकिन जरूर कोशिश करिएगा।
0: जी, और उसका हालचाल भी समय समय पर लेते रहिएगा कि वो पूरी तरह से खुश तो है आपके घर में।
1: बिल्कुल
0: जी, तो इस तरह से यदि हम पौधों की देखभाल समय पे करते रहेंगे, पर्याप्त पानी, धूप, खाद पदार्थ, कटाई छटाई, निराई गुड़ाई सब करते रहेंगे, तो वो पौधा स्वस्थ रहेगा, आपके घर में हंसता खिलखिलाता रहेगा, आपको फल फूल सब कुछ देगा। और नीति जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारी सखियों को टिप्स दिया आपने कैसे वो अपने पौधों की देखभाल कर सकते हैं। आपको स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैसे रखें पौधों की सेहत का ख्याल विषय पर नीति गुप्ता जी से की गई ममता उपाध्याय की बातचीत अभी आपने सुनी। बहुत आसान और उपयोगी बातों के जरिए उन्होंने बताया कि थोड़ी सी देखभाल से पौधे कैसे स्वस्थ और हरे भरे रह सकते हैं।
3: उम्मीद है सखियों, आज की ये बातचीत आप सभी को पसंद आई होगी और अपने गार्डन में हरियाली एक नई आपको खुशी देगी, इसकी उम्मीद करते हैं। सखियों, जब हवा में हरियाली की ठंडक हो, पेड़ों की छांव हो और मन में सुकून मिले, तो सचमुच दिल यही कह उठता है।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
0: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे।

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कभी कभी एक गीत भी मन को वही सुकून दे जाता है जो हरियाली की छांव देती है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने सखियों, जैसे थोड़ी सी देखभाल पौधों को हरा भरा बनाए रखती है, वैसे ही सेवा और संवेदना इंसानी जीवन में उम्मीद की हरियाली बनाए रखती है।
1: सही कहा तुमने।

0: सेवा और संवेदना को सलाम करता है आज का हमारा अगला कार्यक्रम, जो समर्पित है उन हाथों को जो हर मुश्किल घड़ी में हौसला बनकर साथ खड़े रहते हैं।
1: इरम, कभी गौर किया है अस्पताल की सबसे लंबी रात हो, किसी घर की बेचैनी हो और या दर्द से भरी कोई खामोश सुबह, सबसे पहले जो चेहरा भरोसा देता है वो कौन सा होता है?
0: नर्स का।
1: बिल्कुल सही कहा, वो नर्स का।
0: धड़कनों की रफ्तार भले ही डॉक्टर देख ले, मगर मरीज के चेहरे की बेचैनी सबसे पहले नर्स ही पढ़ लेती है।
1: और शायद यही वजह है कि आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि सेवा, धैर्य और ममता को सलाम करने का दिन है। उस दुनिया को जो बिना शोर के हर रोज अनगिनत जिंदगियों को संभालती है।
0: और आज इंटरनेशनल नर्स डे पर हम बात उन हाथों की करेंगे जो दवा भी देता है, दिलासा भी, और उन कदमों की जो थकते ज़रूर हैं पर रुकते नहीं।
1: और इन्हीं जज्बातों को करीब से महसूस करने के लिए हमारी सहयोगी पहुंची हैं वीरांगना अवंती बाई अस्पताल, जहां हर वार्ड और हर गलियारा सेवा की अनगिनत कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं।
0: यहीं से आज की हमारी विशेष स्थल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत कर रही हैं, जिसका विषय है सेवा, संवेदना और समर्पण, नर्सों को शत शत नमन। इसे आप तक पहुंचा रही हैं हमारी सहयोगी स्नेहिल श्रीवास्तव।
1: तो चलिए अस्पताल की धड़कनों के बीच उन अनकही आवाजों को सुनते हैं जो हर दिन किसी न किसी जीवन में उम्मीद की नई रोशनी भरती हैं।
2: आज हम आ पहुंचे हैं अवंतीबाई अस्पताल में एक खास कार्यक्रम के साथ, जो समर्पित है उन हाथों को जो नई जिंदगी की पहली सांस को सुरक्षित बनाती हैं। जैसा कि हर साल 12 मई को नर्सेस डे मनाया जाता है, और ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन नर्सेस के समर्पण, मेहनत और संवेदनशीलता को सम्मान देने का दिन है जो रात दिन बिना रुके मरीजों की देखभाल करती है। और जब बात नवजात शिशुओं की आती है तो उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। पर यदि हम बात करें उनकी ट्रेनिंग की, तो इस कार्य के लिए जो उन्हें परफेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं उनसे। आज हमारे साथ हैं अवंतीबाई अस्पताल के बाल रोग विभाग के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर सलमान खान जी। नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि नर्सेज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।
3: सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जिस भी बच्चे में धड़कन है उसकी जिंदगी बचाने का काम करते हैं, और नर्सेज तो हमारे आँख, नाक, हाथ सब कुछ होते हैं। तो हम डॉक्टर बिना नर्सेज के अधूरे हैं। हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं और सिखाते हैं कि कैसे साफ सफाई रखी जाए, बच्चे को पहले दूध कैसे पिलाया जाए, फिर बच्चा जब वार्ड में शिफ्ट होता है तब बच्चे का तापमान कैसे निर्धारित किया जाए, ये सब वो नर्स ही देखती हैं। और अभी पूरे हिंदुस्तान में नेशनल रिसर्सिटेशन डे मनाया जा रहा है, उसमें हम हर वर्कर को सिखाएंगे कि बच्चे को सांस कैसे दिलाई जाए।
2: तो सर, ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं तो वो क्या निश्चित होती है कि इतने इतने समय के बाद ये ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है देना?
3: देखिए, मेन चार हमारे एरिया होते हैं जिसमें हमें ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। एक होता है लेबर रूम, एक होता है ऑपरेशन थिएटर, फिर तीसरा होता है इमरजेंसी, और चौथा हमारा जो एसएनसीयू। तो इसमें हम हर महीने रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं, और उसमें हमारे पास मैनिक्विन होते हैं जिसपे हम बच्चे को सांस कैसे दिलाई जाए, बच्चे को लपेटा कैसा जाए, बच्चे को टेम्परेचर कैसे दिया जाए। हमारी नर्सें इस बात में भी ट्रेन होती है कि घर वाले बच्चों की कैसे देखभाल करें, इसको हम कहते हैं फैमिली पार्टिसिपेटरी केयर। तो उसमें घर वाले जो भी बच्चे की माँ, बाप, दादा, दादी, वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट चलता है जिसको कंगारू मदर केयर कहते हैं, जो कम दिन के कम वजन के बच्चे होते हैं उनको हम सीने पे चिपका के बच्चे को कैसे सही रखा जाए वो भी हम सिखाते हैं, और जो बच्चे माँ का दूध नहीं पी पाते उनको कैसे दूध निकाल के कटोरी चम्मच से पिलाया जाए इसकी भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे यहाँ लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट भी है।
2: और ये जो आपने कंगारू मदर केयर का एक ये प्रोसेस बताया, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कितने दिनों में बच्चा रिकवर हो जाता है?
3: जब नॉर्मल बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने का होता है। अगर वो 9 महीने से पहले पैदा हो गया तो जब तक वो 9 महीने का ना हो जाएगा तब तक हम बच्चे को माँ के सीने पर रख के पालते हैं, मतलब 2.5 किलो का जब तक ना हो जाए। तो उसमें हो सकता है 15 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीने लगे।
2: पर अंत में बस एक चीज और जानना चाहूंगी, अगर आप कुछ संदेश देना चाहे हमारी भावी माताओं को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए उनके बच्चे के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं यही कहना चाहूंगा, जब भी डिलीवरी हो तो सरकारी अस्पताल में करवाइए। दूसरी चीज, पैदा होते ही बच्चे को दूध 1 घंटे के अंदर शुरू कर देना चाहिए। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, एक बूंद पानी भी नहीं देना है। बच्चे को समय से टीके लगवाइए। ये सभी टीके सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में मिलते हैं, और अगर आपको 6 दिन फुर्सत नहीं मिलती तो रविवार को भी टीका जाके लगवा सकती हैं।
2: धन्यवाद डॉक्टर। तो जैसा कि जिंदगी की शुरुआत बेहद नाजुक पलों से होती है, और उन पलों में लिया गया सही फैसला एक नई जिंदगी बचा सकता है, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही नर्सेस से जो हर दिन हर पल नवजात शिशुओं की देखभाल में लगी रहती हैं। तो नमस्कार अमिता जी, सबसे पहले ये बताएं

0: कि शिशु के जन्म के बाद जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है संक्रमण से बचाव की। तो आप ये बताएं कि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं या कैसे एक माँ को प्रेरित करती हैं?
1: वीरांगावंती बाई हॉस्पिटल में माँ और बच्चे दोनों ही रहते हैं, तो इन सभी की देखभाल के बीच संक्रमण से बचाव भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए हम समझाते हैं कि आपको बच्चे के पास ज्यादा लोगों को नहीं आने देना है और बिना हाथ धोए बच्चे को छूना नहीं है, ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ानी है जिससे बच्चे को और माँ को संक्रमण हो सकता है। और संक्रमण से बचाव के लिए हम हाथ धोने के सारे चरणों के बारे में बताते हैं जो कि सुमन के हैं, सीधा, उल्टा, मुट्ठी, अंगूठा, नाखून और कलाई। नॉर्मल हाथ की सफाई एक मिनट में हो जाती है, हम माँ को समझाते हैं। यही छोटी छोटी सावधानियाँ बड़े जोखिम से हमें बचाती हैं।
0: धन्यवाद मैम। तो चलते हैं लेबर रूम की ओर, जहाँ हर जन्म एक नई उम्मीद लेकर आता है, और बात करते हैं सुनीता जी से। सुनीता जी, जब लेबर रूम में एक बच्चे का जन्म होता है तो उस समय आपकी जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है?
2: लेबर रूम में हम लोग इस चीज का बहुत ध्यान देते हैं कि हमारा लेबर रूम पूरा तैयार होना चाहिए, वहाँ का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए जो कि 16 से 18 नॉर्मल होता है, और हम वार्मर ऑन पहले से कर देते हैं। जो टॉवल रहती है बच्चे को रिसीव करने के लिए उसको हम गर्म करते हैं, और पूरी ट्रे तैयार करके रखते हैं जो कि सैनिटाइज होती है पूरी, जिससे माँ को इन्फेक्शन ना हो। और डिलीवरी के बाद जब बच्चा रिसीव करते हैं, अगर बच्चा नॉर्मल है, रोता हुआ पैदा हुआ है, तो तुरंत हम माँ के पेट पे उसको रखते हैं और एक घंटे के अंदर हम लोग फीड करवा देते हैं। उसकी नाल होती है उसको हम तुरंत नहीं काटेंगे, वो हम एक मिनट के बाद काटते हैं। वो बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो ब्लड है बच्चे का वो बच्चे में ही चला जाए ताकि बच्चा जो है बाद में एनीमिक ना हो। और जो बच्चे रोते नहीं है उसमें हम नाल तुरंत काट देते हैं और उसको तुरंत हम वार्मर में ले जाएंगे, उसकी वहां केयर करेंगे, वहां पर हम सांस दिलवाते हैं और तुरंत हम SNCU में बच्चा शिफ्ट कर देते हैं ताकि बाद की केयर वहां पर हो जाए।
0: तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आसमा जी। आसमा जी, ये बताएं आपकी जन्म के बाद जब बच्चा आपके पास 48 घंटे तक होता है तो आप क्या सावधानियां बरतती हैं, ये हमारी सखियों को थोड़ा बताएं।
3: हम लोग माँ को ये चीज समझाते हैं कि बच्चे को 25 डिग्री पे रखना है, आपके शरीर से थोड़ा बच्चा गर्म रहे, और उसको हर दो दो घंटे पे हम लोगों को फीड कराना है,
0: ठीक है,
3: और उसको माँ का ही दूध 6 महीने तक के पिलाना है।
0: तो जैसा कि आसमा जी, ये देखभाल जो है वो सिर्फ बच्चे तक ही सीमित नहीं होती है, उसकी माँ को भी सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो माँ के लिए क्या सावधानियां हैं?
3: माँ को सबसे पहले यही बताना है कि अपनी मेडिसिन, जो वो कैल्शियम आयरन जो उनको मेडिसिन दी गई है, प्रॉपरली समय पर लेना है, और खाने में पौष्टिक ही चीजें खाएं, बाहर की चीजें कुछ भी ना खाएं, और इसके अलावा कुछ।
0: धन्यवाद आसमा जी। तो अभी हमारे साथ एक और नर्सिंग स्टाफ जुड़ चुका है, मैम अपना नाम बताएं।
4: आभा शर्मा।
0: जैसा कि आभा जी, हर जन्म आसान नहीं होता, कई बार कुछ नवजात इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें लगातार निगरानी में भी रखना पड़ता है। तो ये बताएं कि SNCU में आने वाले जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है?
4: हमारे यहाँ SNCU में जैसे ही बच्चा आता है, पहले हम बच्चे को वार्मर में रखते हैं, उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, सब चीज मेंटेन करने के बाद अगर बच्चे की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है तो हम अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं। जैसे बच्चा मेकोनियम में है तो नली द्वारा उसका गंदा पानी वगैरह सब निकालते हैं, अगर बच्चा फीडिंग करने लायक है तो उसको फीडिंग कराते हैं नली द्वारा, अगर बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है तो उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं, 0.5 से ऑक्सीजन देते हैं।
0: बाबा जी, हम ये कह सकते हैं कि नर्सिंग सिर्फ एक इलाज नहीं है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ भी काम है। तो अक्सर ऐसी विषम परिस्थितियों में माता पिता भी चिंतित हो जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे संभालती हैं?
4: अक्सर ये देखा जाता है कि माँ बच्चे को लेकर बहुत परेशान होती है और वो रोने भी लगती है, लेकिन हम लोग काउंसिलिंग करके उनको समझाते हैं। कुछ माँ ऐसी होती हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिला पाती, लेकिन उनको भी हम लोग काउंसिलिंग करते हैं, कहते हैं आधे आधे घंटे तक ब्रेस्ट की सिकाई करिए और 6 महीने तक ही बच्चों को माँ का दूध पिलाइए, अगर आप गाढ़ा पीला दूध नहीं पिलाएंगी तो उससे इन्फेक्शन और बच्चों को कई बीमारियां घेर लेती हैं।
0: धन्यवाद मैम। नाम बताएं अपना।
5: सोनी सिंह।
0: सोनी जी, प्रसव के बाद जब बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो एक आसान और असरदार तरीका कंगारू मदर केयर का होता है, तो ये कंगारू मदर केयर क्या है, इस विषय में हमारी सखियों को कुछ बताएं।
6: 2500 ग्राम के बच्चे जो नीचे पैदा होते हैं उनको हम KMC देते हैं, उसकी पोजीशन होती है बच्चे के शरीर पे डायपर, मोजे, हाथ को भी कवर करने के लिए मोजे टाइप में आते हैं, आगे ओपन वाला कपड़ा, टोपी, ये सब लगा के जैसे बंदर चिपकाता है बच्चे को, वैसे ही मदर या जो भी अटेंडेंट है उसको हम चिपका करके 45 डिग्री कोण पे लिटाते हैं और सर एक तरफ रहता है, और जब भी मदर लेटती है तो 1 से 1.5 घंटे तक लेटती है, इससे बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी होती है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा रहता है।
0: तो सखियों, जैसा कि हर दिन हर शिफ्ट में नर्सेज अपने काम से यह साबित कर रही हैं कि सेवा की असली ताकत उनके हाथों में है, उनकी देखभाल, उनका धैर्य और उनका समर्पण हर नवजात शिशु को सुरक्षित शुरुआत देता है। तो नर्सेज डे के इस

0: खास मौके पर हम सभी नर्सेस को दिल से धन्यवाद देते हैं और नमन करते हैं। नमस्कार।
1: सेवा, संवेदना और समर्पण, नर्सों को शत शत नमन। इस विषय पर यह विशेष प्रस्तुति अभी सखियों ने सुनी, जिसे हमारी सहयोगी स्नेहिल श्रीवास्तव ने आप तक पहुंचाया।
2: सचमुच नर्स केवल उपचार नहीं करती, वे भरोसा जगाती हैं, हौसला देती हैं और मुश्किल घड़ी में जीवन को संभालने का काम भी करती हैं।
1: बीमारी के कठिन पलों में उनका स्नेह कई बार सबसे बड़ी दवा बन जाता है।
2: बिल्कुल, और उनकी मुस्कान थके हुए मन में भी उम्मीद की एक नई किरण जगाता है।
1: इन्हीं सेवा भाव से भरे हाथों को आज इंटरनेशनल नर्सेस डे के अवसर पर सभी नर्सों को हमारी ओर से शत शत नमन।
2: और सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार खत या ईमेल के माध्यम से हमें जरूर लिख भेजिएगा। खत भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम अपराजिता द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ, पिन कोड है 226001 और हमारा ईमेल एड्रेस है अपराजिता aparajita@gmail.com। और अब इरम को
1: और रंजना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार सखियों।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी शहरी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अपराजिता। मीडिया वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों, जय हिंद। पत्र और ईमेल पर आधारित इस कार्यक्रम में हम सबका स्वागत करते हैं। ये पहला पत्र हमारे पास आया है करुआडीह प्रतापपुर प्रयागराज से राम प्रकाश गौतम, मंजू गौतम, सौरभ प्रभात एवं प्रिया गौतम का। आप सभी सुनना चाहते हैं जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से फौजी भाई सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम जवानों के लिए। और ये मेल हमारे पास आया है रायबरेली से पंकज गुप्ता, अंशिका, शिवा, सरदार सिंह मास्टर का। और आप सभी सुनना चाहते हैं आग और शोला फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

ये मेल हमारे पास कानपुर काकादेव कानपुर से आया है, राधिका, चमन, गोलू, सौरभ, सारिका और सोनिया का। आप सभी सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का गीत, जिसे गाया है श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी ने।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के

किसान रेडियो क्लब ग्राम पोस्ट ललोहा जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, बबलू यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे जी ने हमें अपनी फरमाइश भेजी है। आप सभी सुनना चाहते हैं एक नज़र फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

और ये मेल हमारे पास आया है मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का आप सभी सुनना चाहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: अभी फौजी भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

0: के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने

0: नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से LPG से LNG की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048

अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह, और डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां गर्मी में आपके पास सिंचाई के सुनिश्चित साधन हैं तो जायद मक्का उत्पादन से जुड़े होंगे। जहां फसल इस समय खेत में है तो सामयिक कृषि कार्य क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र फर्स्ट दरियापुर रायबरेली से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जायद मक्का इस समय खेत में है तो किसान भाई बहन कौन कौन से प्रभावी बिंदु हैं जिन पर विशेष ध्यान दें इस समय, ताकि फसल अच्छी बढ़वार हो, अच्छा उत्पादन मिले।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आज जैसा आप जानते हैं कि जो हमारी मक्के की फसल है खास तौर से गर्मी में काफ़ी क्षेत्रों में लगाई जाती है और इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, तो इस समय कुछ विशेष ध्यान देने वाली बात है। एक कीट लगता है जिसका कि प्रबंधन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसे हम फॉल आर्मी वर्म कहते हैं। ज़्यादातर किसान भाई इसे सूड़ी के नाम से जानते हैं, और इसका प्रकोप चाहे वो उसके तने से पत्ती पे या पूरी तरह से जो हमारे उसके भुट्टे होते हैं उस पे होता है।
1: इस पर हम लोग फसल सुरक्षा क्रम में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, फसल की भूख और प्यास मिटाना सबसे महत्वपूर्ण है। गर्मी का मौसम है, कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, लेकिन फसल की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होंगी जिन पर पानी का प्रबंधन करना होगा।
2: जी, जैसा आप जानते हैं कि पानी जो है गर्मी में मक्के को लगभग 15 दिन के अंतराल पे देना आवश्यक होता है, मगर जो क्रांतिक अवस्था है जब में भुट्टे आने वाले होते हैं सिल्किंग स्टेज या जीरा निकल रहा होता है, यह जो दो अवस्थाएं हैं यह पानी देने के लिए अत्यंत ही
1: संवेदनशील
2: जी संवेदनशील है। अगर इस पे आप सिंचाई नहीं करते हैं या नमी की कमी होती है तो उत्पादन प्रभावित होता है। तो वैसे तो कम से कम हमारी जो गर्मी की फसल है उसमें 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इस समय जो हमारी अवस्थाएं हैं जीरा निकलने की, इस पे जरूर दें, और जब हमारे भुट्टे निकल रहे हों उस समय जरूर दें, और इसके साथ साथ अगर लास्ट में जब हमारा दाना भर रहा होता है दुग्धावस्था में हो, अगर नमी की कमी है तो भी उस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अगर बारिश नहीं हुई या नमी कम है तो उस समय सिंचाई जरूर करें।
1: यानी इन क्रांतिक अवस्थाओं पर फसल की प्यास बुझाते रहना है। और आपने कहा कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर जैसी भूमि की दशा है, फसल की आवश्यकता है और मौसम की स्थिति है, उसके अनुसार फसल की प्यास बुझाते रहें।
2: जी हाँ,
1: लेकिन जल निकास का प्रबंध भी तो करना है डॉक्टर साहब।
2: हाँ, सबसे बड़ी चीज होती है जैसे कि जहाँ पर हेवी सॉयल है या जहाँ पानी लगता है, क्योंकि ऐसे जगहों पे अगर आप बारिश ज्यादा हो जाती है, अगर पानी भर जाता है तो उसमें रोग बढ़ने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर पानी भरना नहीं चाहिए मक्के के खेत में, और जो अगर भर गया है तो उसे किसी भी तरीके से इसको वापस बाहर निकाल देना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारे खरपतवार उगाते हैं तो उनका प्रबंधन जायद के मक्के में कैसे करें, और क्या मल्चिंग

0: फायदेमंद होगा गर्मी में?
1: जी हाँ, जैसा आप जानते हैं कि मल्चिंग जो होती है वह हमारी जो नमी को संरक्षित करती है, तो इससे हमें कम पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरी चीज, मल्चिंग के द्वारा जो है खरपतवार भी नहीं उगते हैं, तो जिससे पौधे को पोषक तत्व पूरी तरीके से प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ जो पानी की सिंचाई की आवश्यकता है वह भी कम होती है। अब आते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए मक्के में मुख्य रूप से जब हम बुआई करते हैं उसी समय हमें जो है खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। उस समय जो हमारी सबसे अच्छी दवा होती है एट्राजीन एक आती है, बुआई के 2 दिन के अंतर ही जमाव से पहले इसको प्रयोग करते हैं। इसकी 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर दें, तो इससे जो हमारे मक्के की खरपतवार हैं वह नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ यह देखा गया है कि जो बारिश का मौसम होता है उस समय इन दवाओं का कम प्रभाव होता है, तो उस समय एक तो 20 से 25 दिन बाद और 40 से 50 दिन बाद जो है हैंड वीडिंग यानी खरपतवार स्वतः खुरपी से या किसी भी तरीके से
0: या
1: उसको निकालना चाहिए। जी
0: मतलब वीडर से,
1: हाँ, वीडर के द्वारा जो है इसको नष्ट कर देना चाहिए
0: यानी
1: जिससे।
0: निराई गुड़ाई कर लें तो
1: हाँ
0: ज्यादा अच्छा है।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम निराई गुड़ाई करते हैं तो इससे खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, पोषक तत्वों का प्रबंधन भी तो आवश्यक है। वैसे तो बेसल डोज में खुराक किसान भाई बहन दिए होंगे, लेकिन खड़ी फसल में कौन कौन से पोषक तत्व का प्रबंधन करना है ताकि फसल भूखी न रह जाए?
1: जैसा आप जानते हैं मक्का जो है एक बहुत ही पोषक तत्व के मामले में बहुत आवश्यक होता है कि इसमें पोषक तत्व पूरी तरीके से हो। अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखी जाए तो लगभग 150 किलोग्राम नत्रजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास तथा 40 किलोग्राम जो है सल्फर और 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 1 हेक्टेयर में होता है।
0: यानी 2.5 एकड़ में।
1: जी, 2.5 एकड़ में इतना पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर खड़ी फसल में कहें तो खड़ी फसल में हमें 3 बार यूरिया देना पड़ता है, जो कि पहले हमें 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई के बाद, दूसरा 40 से 45 दिन बाद जो दूसरी सिंचाई होती है, तीसरा यूरिया का जो है 60 से 65 दिन बाद जबकि जीरा निकलने की अवस्था होती है उस समय हमें यूरिया के प्रयोग करना चाहिए। अंत में अगर देखें तो हमें, क्योंकि हम सीधे कोई न्यूट्रिएंट नहीं डाल रहे हैं, तो 0-52-34 एक जो
0: जल विलय उर्वरक,
1: जल विलेय उर्वरक होता है, इसकी 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करने से हमारे भुट्टे अच्छे होंगे, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा तथा जो उत्पादन है वह बहुत अच्छा प्राप्त होता है।
0: डॉक्टर साहब, जहां पोटास की कमी के लक्षण दिख रहे हैं, अगर पोटास बेसल डोज में नहीं दिया है तो क्या 0-0-50 का छिड़काव फायदेमंद होगा?
1: जी हाँ, बहुत जरूरी है कि अगर पोटास की कमी है तो आप जो है पोटास का स्प्रे जल विलेय जो है उसका कर सकते हैं, तो इससे जो रोग भी नहीं होंगे और उत्पादन भी जो है अच्छा प्राप्त होता
0: और
1: है।
0: सूखा सहन करने की क्षमता भी रहेगी गर्मी
1: जी
0: में।
1: जी हाँ
0: डॉक्टर साहब, आपने फसल सुरक्षा की बात की, तो कौन कौन से हानिकारक कीट हैं जो गर्मी वाले मक्के में ज्यादा प्रभाव डालते हैं अपना?
1: जैसे कि कीट की बात होती है तो हमने देखा है, किसान भाई भी जानते हैं, सूड़ी जिसे कहते हैं, इसको हम फॉल आर्मी वर्म कहते हैं। इसका प्रकोप जो है गर्मी के मक्के में बहुत ज्यादा होता है। इससे हमारा जो पत्ती तना और जो भुट्टे होते हैं वह पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। अगर इनका प्रकोप हो जाता है तो उपज हमारी घट जाती है। इसके लिए सबसे अच्छी दवा होती है इमामेक्टिन बेंजोएट जो है 5% SG की, अगर 0.5 ग्राम प्रति लीटर
0: यानी आधा ग्राम,
1: हाँ आधा ग्राम प्रति लीटर या 80 ग्राम प्रति एकड़ के दर से अगर छिड़काव करते हैं
0: यानी
1: तो,
0: 200 लीटर पानी में।
1: जी हाँ 200 लीटर पानी में, तो इससे जो है जो भी कीड़ा है यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और आपकी फसल जो है बच जाती है।
0: क्या शुरुआत में नीम का तेल भी फायदेमंद होगा डॉक्टर साहब?
1: जी हाँ, जैसे कि जैव कीटनाशक होते हैं, अगर शुरुआत की अवस्था होती है तो 4 से 5 ml प्रति लीटर के दर से नीम का तेल भी, अगर नीम का तेल पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं तो इससे भी हम कीड़े से बचाव कर सकते हैं।
0: इसके अलावा और कौन कौन से हानिकारक कीट हैं, बीमारियां हैं जो फसल को बचाना है?
1: जी, इसके अलावा जैसे कि दीमक का प्रकोप होता है, तो दीमक के लिए अगर दीमक की समस्या है तो उसको क्लोरपाइरीफास जो दवा है करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से आप जो है बुआई के समय ही इसको मिला देते हैं जमीन में, तो दीमक की समस्या नहीं होती है।
0: या सिंचाई के समय अगर 1 लीटर मात्रा,
1: हाँ सिंचाई के समय भी सीधे हम जैसे किसान भाई क्लोरपाइरीफास को 1 लीटर उसको जो है बूंद बूंद टपकाते हैं, सिंचाई के पानी के द्वारा भी पूरे खेत में फैल जाता है, तो इससे भी

0: दीमक की समस्या नहीं आती है। और तीसरा जो कीट है वो हेरी कैटरपिलर होता है, जो कि आप
1: बालदार सुड़ी,
0: जी बालदार सुड़ी होता है। और इसके लिए जो है नीम आयल, जैसा हमने पहले बताया, नीम आयल सबसे बढ़िया है, उसको 5 ml प्रति लीटर की दर से इसका स्प्रे करते हैं तो इससे हम बचाव कर सकते हैं।
1: कोई बीमारी भी,
0: बीमारी भी जैसे आती है तो इसमें जो है लीफ ब्लाइट लगती है और ब्लैक पाउडरी विल्ड्यू विल्ट डिजीज लगती है। जो लीफ ब्लाइट होती है इसमें जो पत्तियों पे जो है धब्बे पड़ते हैं ओवल शेप में, यानी अंडाकार जो है भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं। इसके रोकथाम के लिए मैंकोजेब 75% का 2 kg प्रति हेक्टेयर, यानी लगभग 750 g प्रति एकड़ की दर से अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे हम बचाव कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद मक्के में सामयिक कृषि कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9415 93 73 98 9415 93 73 98।
1: डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जायद मक्के में सामयिक कृषि कार्य इस समय क्या कुछ करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह ने जायद मक्के की फसल में सामयिक प्रबंधन पर जो भी जानकारी आपको दी है उसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सलमान पुत्र किस्मत अली, निवासी स्कूटर इंडिया चौराहा, थाना सरोजनी नगर, जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि उनकी पत्नी आयशा बानो दिनांक 19 मार्च 2026 से लापता हैं। आयशा बानो की आयु 24 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। इन्होंने हरे रंग का बुर्का और नकाब पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 8528196108। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 8528196108। संतोष कुमार निवासी मकान नंबर 278/7 सेक्टर जे अंबिका विहार थाना आशियाना जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि मनीष दिनांक 17 फरवरी 2026 से लापता हैं। मनीष की आयु 35 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन है। इन्होंने लोअर और काले रंग की जैकेट पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9450743143। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9450743143। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये

0: तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
6: घरांगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
7: मिट्टी की सोंधी महक से महकते लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रूपाली श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत। आरंभ करते हैं लोक भजन से, बोल है नदिया बहो जोर हमहू का पार कियो राम जी। नदिया बहे जोर हमहू का पार कियो राम जी। आइए सुनते हैं ये लोक भजन रूपाली श्रीवास्तव की आवाज़ में।

कौन बन ढूंढू तो हे जनक दुलारी, अभी आपने ये लाचारी गीत सुना। और आइए अब सुनते हैं रूपाली श्रीवास्तव की आवाज़ में कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति कहरा।

रूपमाधुरी में रूपाली श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीतों का। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मिनियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं अब से कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है, इनोवेशन इको

0: के। उसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में NTA द्वारा जाँच निष्क्रियों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवारों की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: ICCR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सानी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सानी ने कहा कि AI का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को स्वचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालय में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गढ़ परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर।

श्रृंखला के अंतर्गत सुनिएगा आत्मनिर्भर समुदाय, कुशल और आत्मनिर्भर बस्ती निर्माण, संकल्प और साधना। प्रेजेंटर हैं आरती। 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता, राष्ट्रीय पोषण मिशन से बदलती गांव की तस्वीर। वार्ताकार हैं डॉक्टर लीले सिंह। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, मक्का से कीट रोग प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे 7:45 पर। आज रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा काव्य पाठ, प्रस्तुत करेंगे अनूप मणि त्रिपाठी। 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार मेनका मिश्रा के स्वर में आप सुनेंगे भक्ति रचनाएं। 8:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, और आज रात 9:30 पर फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा हेलो मेरी पसंद। आज रात 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अजय कुमार का राग जोग में ध्रुपद गायन आप सुन सकेंगे। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 10:10 पर सुनिए का न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण, और कल रात 9:30 पर सुनिए का कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 9:30 पर कल का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की पेशकश है। कल सुबह 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल का विषय है जिमीकंद की उन्नत खेती। इस विषय पर श्रोताओं को जानकारी देंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। 6:15 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा आराधना। 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल का विषय है सेहत के लिए रसीला और स्वादिष्ट शहतूत। इस विषय पर श्रोताओं को जानकारी देंगी नीना सोनकर। 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित सी आर व्यास का राग भैरव में ख्याल गायन आप सुन सकेंगे। 9:50 पर लोक संगीत के कार्यक्रम लोक रंग में कल आप सुनेंगे अच्छे लाल सोनी के स्वर में भोजपुरी लोकगीत। दिन में 1:15 पर मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम आंगनबाड़ी में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, छोटे बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या। इस विषय पर डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, प्रोफेसर ऑर्थोडोंटिक्स और डेंटो फेशियल विभाग KGMU लखनऊ से बातचीत करेंगी नीना सोनकर। इसी के साथ एक और भेंट वार्ता सुनिएगा गर्मियों में होने वाले आंखों के विभिन्न रोग। इस विषय पर डॉक्टर संदीप सक्सेना, प्रोफेसर नेत्र रोग विभाग KGMU लखनऊ से बातचीत करेंगी नीना सोनकर। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, ऊसर सुधार की उन्नत तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर यशपाल सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम आइए सुनते हैं युवा तरंग।

आज रात 10 बजे हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा केंद्र की प्रस्तुति है। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा युवा तरंग कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता गर्मियों की छुट्टियां। इस विषय पर कुबेर रस्तोगी से बातचीत करेंगी अनुष्ठा। 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम में ओबी पर आधारित कार्यक्रम अपना उद्यम

दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ मिलती है नई सोच, नए आइडियाज़ और ज़िंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने की बातें। कभी करियर की चर्चा, कभी लाइफ के छोटे छोटे एक्सपीरियंस, तो कभी ऐसे मुद्दे जो सीधे दिल से जुड़े होते हैं। तो अगर आप भी ऊर्जा से भरे हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट हमारे साथ रहिए, क्योंकि यहाँ बात होगी आपकी, आपके सपनों की और आपके जुनून की। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपने आज के युवा तरंग को इस गाने के साथ।

0: प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। तो चलिए अब सुनते हैं ये भेंट वार्ता जिसमें कुबेर रस्तोगी ने गर्मियों की छुट्टी यानी समर वेकेशंस के बारे में बात की है और जिनसे बात की है हमारी रेडियो दोस्त अनुष्ठा ने।
1: दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय की जिसका इंतजार हर स्टूडेंट को पूरे साल रहता है, गर्मियों की छुट्टियां यानी कि समर वेकेशंस। दोस्तों, समर वेकेशंस सिर्फ आराम करने का समय नहीं होती हैं, बल्कि ये खुद को बेहतर बनाने, नई स्किल को सीखने, फैमिली के साथ वक्त बिताने और अपने सपनों को थोड़ा और करीब से समझने का भी मौका होती है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के 12th के स्टूडेंट कुबेर रस्तोगी, जिन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित क्विज कंपटीशन में, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच रेडियो के प्रति जागरूकता को बढ़ाना था, और उन्होंने इस प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन हासिल करी। दोस्तों, कुबेर की एक खास बात आपको बताना चाहूंगी कि उनकी स्कूल में 90% अटेंडेंस रहती है, जो उनकी डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों को दिखाती है। तो चलिए कुबेर से जानते हैं कि उनकी समर वेकेशंस कैसी रहेगी और युवा इन छुट्टियों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत को। कुबेर, सबसे पहले ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है आकाशवाणी स्टूडियो में आकर?
2: सबसे पहले तो धन्यवाद, मुझे इतना बड़ा मौका मिला है आकाशवाणी आने का। एंड मैंने जब आप क्विज आई थी हमारे स्कूल में क्विज करवाने, देन उसके लास्ट नाइट को मैं वर्क कर रहा था अपने स्कूल का, एंड मैंने FM रेडियो ही सुनना था। एंड मैं कॉन्फिडेंस देखिए मेरा कि मैं उस टाइम वही रेडियो सुन रहा था एंड मैं वर्क करते करते, देन फिर आप नेक्स्ट डे आई एंड वही चीज क्वेश्चन मतलब थोड़े थोड़े रिलेटेड क्वेश्चन आए एंड मैंने उसका जवाब दिया।
1: हाँ, देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप वही रेडियो सुन रहे थे और उसी रेडियो क्विज के सवाल आपने बिल्कुल सही दिए, इसीलिए आज आप हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुबेर, सबसे पहले हम ये बताइए कि आपके लिए समर वेकेशंस का मतलब क्या होता है?
2: देखिए, गर्मियों की छुट्टी तो सब लोग मनाते हैं, 12th आ गया है तो भैया थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है कि बोल्ड भी है, 10th में भी बोल्ड था तो चलिए थोड़ा मैच कर लिया था, लोड कम था, एक बुक थी, एक रात दिन पढ़ ली, एक रात पहले पढ़ ली, एग्जाम से पास हो गए, बढ़िया आए थे उसमें भी। अब 12th का क्या है कि इतनी लोड हो गया है कि थोड़ा सा समर वेकेशन लगी नहीं रही, समर वेकेशन है हमारी, हमें पढ़ना पड़ेगा, समर वेकेशन भर भी हमारे लिए वेकेशन कुछ नहीं है, सब पढ़ना पड़ेगा।
1: सही बात है, दिक्कत मतलब वो जितना टाइम आप स्कूल में देते हैं वही पढ़ाई, बस आपको अब घर पे करनी है, आपको स्कूल नहीं जाना है, ये एक अच्छी बात है।
2: पहले टाइम में था, 10th में समर वेकेशन था, बोर्ड उस टाइम भी थे, समर वेकेशन भी था, बट उस टाइम चले गए नानी घर, चले गए टहलने, चले गए कहीं, है ना, उस टाइम थोड़ा फ्री थे, रिलैक्स थे। अब 12th में क्या है कि सिलेबस इतना है कि भी एक चैप्टर खत्म करने में 2-2 दिन लग जा रहे हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
2: बहुत है,
1: और उसी हिसाब से जो टीचर्स हैं वो असाइनमेंट्स भी उसी हिसाब से दे देते हैं,
2: फाइल्स भी बहुत ओवरलोड, समझ लीजिए सब्जेक्ट कम हो गए बट लोड कम नहीं हुआ, बढ़ गया बल्कि।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो 12th के स्टूडेंट होने के नाते आपकी छुट्टियां बाकी स्टूडेंट से कैसे अलग होती हैं?
2: एक तो रीजन यही दूंगा मैं कि बोल्ड है, बहुत सर में टेंशन प्रेशर रहता है, दूसरी चीज तो अब थोड़ा सा मतलब जिम्मेदार हो गए हैं 12th के बाद, हमारा मतलब काम वाम भी है, मतलब अब घर को भी संभालना होगा, थोड़ा सा फोकस करना होगा कैरियर पे भी, तो फिर समझना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, अब ये कह सकते हैं हम लोग।
1: कुबेर, क्या आपको लगता है कि समर वेकेशंस सिर्फ आराम करने के लिए होती हैं या कुछ नया भी सीखने का हमें मौका देती हैं? मतलब ये जो एक ब्रेक मिलता है हमें स्टडीज से 2 महीने का 1.5 महीने का, तो क्या ये कुछ नया सीखने का भी मौका है या सिर्फ ये है कि चलो अब बस आराम करो?
2: देखिए, समर वेकेशन है कि उसमें सीखो भी और एंजॉय भी करो, स्कूल गए नहीं, आराम से सुबह उठे, देर से टीवी भी चलाया, फिर आराम से खाना पीना करा, फिर उसके बाद आराम से सीखो, 1 घंटा लगाओ, मतलब अपने ऊपर डेवलपमेंट नहीं करेंगे ना तो फिर वही है कि बढ़ ही नहीं पाएंगे आगे, वहीं रह जाएंगे। तो सीखो भी, एंजॉय भी करो, फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करो, मतलब लगना चाहिए कि तुम मतलब लाइफ जी रहो, तुम प्रेशर में ना जियो, एकदम लाइफ जियो, बिल्कुल अपनी रिलैक्स होके, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी चाहिए। ये मेरा
1: मतलब एक शेड्यूल भी बना लें और ये रोज हमें पता होना चाहिए कि हमें रोज क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि आराम है तो आराम ही करते जा रहे हैं या काम है तो काम ही करते जा रहे हैं, दोनों चीजें बैलेंस करके चलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने अपनी समर वेकेशन के लिए इस बार कुछ प्लानिंग करी है?
2: देखिए, अभी तो स्टडीज बहुत है तो मैं स्टडी करूंगा बोर्ड के लिए भी, एंड साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि लाइक मार्केटिंग एजेंसी का थोड़ा सा आ गया है ना, तो ट्रेंड भी है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सीखूँ, लाइक मैं AI सीख रहा हूँ एंड AI एजेंट्स मैं बिल्ड करना सीख रहा हूँ अभी, तो NITENT के थ्रू वर्कफ्लोस बना रहा हूँ ना, तो वो मेरी स्किल्स अभी है तो चल रही है, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा हूँ, तो सीखूंगा डेली 1-2 घंटा लगाता हूँ एंड साथ में स्टडीज को भी लेके जाता हूँ।
1: तो 12th में कौन सी स्ट्रीम है आपकी?
2: हमारी PCM है प्लस कंप्यूटर।
1: बहुत कठिन, इसमें तो पढ़ाई करनी बनती ही है।
2: मैथ्स के साथ मतलब कंप्यूटर ले ली, कॉम्बो इतना खतरनाक है।
1: मैथ्स के साथ रिश्ता कैसा है आपका?
2: है 19-20 का।
1: 19-20 का। कुबेर, पढ़ाई और छुट्टियों के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी, जैसे कि अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि अगर आराम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आराम ही करते रहे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं ना कि जैसे आप देखिए 2 महीने की

दोस्तों सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज के 12th के छात्र कुबेर रस्तोगी, जिन्होंने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित पहला क्विज कंपटीशन, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच रेडियो के प्रति जागरूकता बढ़ाना था, और उन्होंने इस

0: छुट्टी है, तो सोचते हैं 1 महीना आराम कर लेते
1: हाँ
0: हैं, फिर 1 महीना बचेगा तो उसमें अपना असाइनमेंट कर लेंगे, कुछ नया सीख लेंगे, लेकिन वो भी हो नहीं पाता है,
1: ये
0: क्योंकि जब
1: गलती है।
0: आपका 1 महीना आराम में निकल रहा है तो फिर आप
1: वो
0: एकदम से कुछ
1: भूल
0: अडेप्ट,
1: जाएंगे, वो चीजें
0: हाँ
1: भूल जाएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो बेटर रहता है। डेली बस भले ही थोड़ा सा करो, बस डेली करो ताकि थोड़ा सा रिमेम्बर रहे आपको। मतलब अब भूल जाओगे एक बार में। ये स्टडीज के साथ भी सेम ही चीज़ होती है। आपने चैप्टर वन पढ़ा, लास्ट में एग्जाम से आपने पढ़ रहे हो तो वो भूल जाओगे सब
0: बिल्कुल.
1: कंटेंट, तो फिर से डीप में पढ़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, लाइक वीकली टेस्ट होते, तभी वीकली
0: जी
1: टेस्ट होते हैं इसलिए स्कूल में, ताकि रिवाइज होता रहे, हमें भूले
0: बिल्कुल
1: ना
0: सही
1: हम।
0: बात है, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है. आपकी जो अटेंडेंस है वो ऐसा हमने सुना है कि 90% रही है, तो
1: जी
0: छुट्टियों के बाद वही डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, और अगर रखेंगे तो ये कितना मुश्किल होता है आपके लिए?
1: देखिए, रेगुलरिटी इंस्टल डिसिप्लिन, ये कोटेशन तो आपने सुनी ही होगी। तो रेगुलरिटी बनती है, इसीलिए मैं बनाता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा पढ़ सकूँ। अगर मैं डेली स्कूल जाऊँगा, भले घर में कुछ ना करूँ, बट डेली स्कूल जाऊँ, कुछ ना कुछ पढ़ाया जाएगा, मैं पढ़ूंगा, तो कम से कम एक स्टेप तो आगे बढ़ूंगा ना। डेली एक स्टेप लो ज़्यादा बेटर है, एक बार में ढेर सारे ऐसा अच्छा, डेली एक स्टेप्स लो। तो मैं डेली इसलिए जाता हूँ ताकि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूंगा, फ्रेंड के साथ इन्जॉय भी होता है।
0: तो आपके हिसाब से ग्रुप स्टडी का जो ये माहौल चला हुआ है आजकल, तो ये हेल्प करता है या ये सिर्फ समय बर्बादी करने का एक?
1: हाँ, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप का सर्कल कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट है आपके फ्रेंड का। आप ऐसे बच्चों के साथ रहते हो लाइक वो हर टाइप ऑल टाइप समझ लीजिए कि वो पढ़ाई में भी अच्छे हों एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे हों, तो ये ग्रुप आपका बढ़िया है। आप
0: जी
1: सिर्फ पढ़ाई वाले ग्रुप में चले जाओगे तो बोर ही होना है, सिर्फ खेल कूद में जाओगे तो भी मतलब सत्यानाश
0: हाँ.
1: खत्म लो, तो एकदम बैलेंस बना के लाइफ बढ़िया चलती इसी चक्कर में।
0: क्या समर वेकेशन में स्टूडेंट को अपनी हॉबीज पर भी ध्यान देना चाहिए?
1: लाइक मेरे फ्रेंड्स भी हैं काफ़ी लोग, इन लोग की हॉबीज़ आजकल सबकी मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम मेंस की तो वही है क्रिकेट, तो सबकी
0: हाँ
1: हॉबीज़ सब लोग जाते हैं डेली समर वेकेशन में, जाते हैं सुबह सुबह चले जाते हैं क्रिकेट खेलने। मैं भी काफ़ी बार गया हूँ। मेरी मेन हॉबी तो क्रिकेट नहीं है, मेरी मेन एथलेटिक्स है। मैं मतलब रनर भी बहुत तगड़ा हूँ,
0: अच्छा,
1: उसमें फर्स्ट आया था, मतलब एक बार दौड़ा था
0: अरे
1: स्पोर्ट्स डे
0: वाह
1: हमारे डेली स्कूल हर साल स्कूल में
0: जी,
1: होता है
0: अच्छा
1: नवंबर साइड
0: अच्छा
1: में, तो मैं 400 मीटर लेता हूँ, हर बार फर्स्ट आया हूँ, 3 साल से खेल रहा हूँ।
0: तो मतलब एकेडमिक्स
1: हाँ
0: में भी बढ़िया है,
1: हाँ
0: स्पोर्ट्स में भी बढ़िया है, परफेक्ट कॉम्बो.
1: हाँ बैलेंस।
0: बैलेंस. आपने आकाशवाणी की क्विज कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, तो क्या वेकेशंस में भी आप जनरल नॉलेज पढ़ाने पर ध्यान देते हैं? क्योंकि क्विज में तो आप जीत गए पहली पोजीशन, और बहुत अच्छे से आपने सवालों के जवाब दिए, तो कहीं ना कहीं कोई तैयारी बैक ऑफ द माइंड रही होगी, तो क्या समर वेकेशन में जीके वगैरह की बुक्स या ऐसा कुछ पढ़ाई करते हैं आप?
1: देखिए, अभी तो आपने देखे होगा वर्ल्ड कप में कितना मतलब चल रहा है, सब वॉर और चल रही है ना, तो अगर हम लोग नॉलेज नहीं रखेंगे तो फिर भाई कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। अब मेरा सर्किल बताएं ऐसा है कि वो लोग हर एक्टिविटीज़, वो डेली नॉलेज, हर एक यूनिवर्स से रिलेटेड चीज़ें, फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें, इतने मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब हमारा सर्किल इतना तगड़ा बन गया ना, तो फिर हम वैसे हम भी उनके लेवल के हो गए, तो हम भी अलग नई नई चीज़ें सीखते हैं, उनको बताते हैं, वो हमको बताते हैं, तो सबकी नॉलेज बढ़ती है एंड पढ़ाई में भी बढ़िया हम लोग चलते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है. क्या आपको लगता है कि वेकेशंस में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी या फिटनेस रूटीन भी होना चाहिए?
1: बहुत ज़रूरी है ये, तो बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पर, तो देख लीजिए हर टाइम फ़ोन में लोग लगे रहते हैं,
0: हाँ,
1: तो अगर फिजिकल रहेंगे तो बेटर रहता है ना।
0: बेटर रहता है. जी हाँ, आजकल वही जैसे कि आपने कहा कि बच्चे पूरा समय मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिताते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सही है या इसमें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है?
1: वही पुराना टॉपिक, एक बहुत स्टार्टिंग से मैं बोलता रहा हूँ, बैलेंस। फ़ोन मतलब चलाओ, बढ़िया फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा चलाया, 2 घंटा चलाया, अब तुम पूरा दिन लगे पड़े हो तो वही तुम्हारी आंखें चली जाएंगी,
0: सही बात है.
1: मेंटेन नहीं होता है, और रात को नींद नहीं आती। मैंने पता है एक दिन चलाया था बहुत देर तक, मेरा 17-18 घंटे का बन गया था स्क्रीन टाइम, तो मतलब रात भर नींद नहीं आई, मतलब पूरा मैं 2 दिन तो सोया ही नहीं।
0: हाँ, वो ब्लू लाइट जब आंखों पे
1: हाँ,
0: पड़ती है ना, तो वो
1: वो
0: नींद बहुत डिस्टर्ब
1: दिक्कत
0: कर
1: करती
0: देती है,
1: है
0: और फिर जब जिनका रूटीन हो जाता है तो फिर उनको उसके बिना नींद नहीं आती, और
1: सब।
0: यही एडिक्शन
1: हाँ,
0: है.
1: यही चीज़ गलती करती है। फिर मैंने
0: बिल्कुल.
1: फिर होमवर्कआउट करा थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा सा बैलेंस वैलेंस हुआ, फिर सोए आराम से, तब ठीक हो गए।
0: अगर कोई स्टूडेंट छुट्टियों में बिल्कुल भी प्रोडक्टिव महसूस ना करे तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे कभी कभी लगता है हमें कि जो हम सोच रहे थे वो हम कर नहीं पा रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिविटी हो नहीं पा रही है, तो उसे कैसे अपने मेंटल स्टेट को संभालना चाहिए?
1: देखिए, फर्स्टली ये चीज़ तो लेजीनेस कहलाएगी ना, क्योंकि लेजीनेस होती मेन फ़ोन के चक्कर में ही है। आप डेली मतलब ब्लू स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो आपके लेजीनेस आएगी, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो आपको अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है, एंड सेकेंडली सोचना है कि कोई एक स्टेप लेते हैं। आपने मान लो कि आपको 90% लाना है एग्जाम में, तो आप डेली सोचो कि मुझे बस सिर्फ 2 पेज ख़त्म करने चैप्टर के, तो ना आप डेली दो दो करके महीने भर में, हफ्ते भर में पूरी बुक तो ख़त्म ही कर दोगे महीने
0: बिल्कुल,
1: भर में, ठीक है।
0: मतलब एक ध्येय बनाना बहुत जरूरी
1: एक
0: होता है.
1: स्टेप डेली लेना है तो सही रहता है।
0: समर वेकेशंस में दोस्तों के साथ समय बिताना कितना ज्यादा जरूरी होता है?
1: वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो क्या करता था, मैं नानी घर चला जाता था, कजन के साथ एंजॉय

0: लेता पूरा समर वेकेशन वहीं पे, रह नहीं सकते तो 15 दिन वहाँ चले गए, फिर 15 दिन आए घर पे, फाइल आइल्स जो थी हमारी वो कंप्लीट कर लिया हमने जल्दी जल्दी, और बाकी फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पे बात हो जाती थी, कई बार क्रिकेट खेलने चले जाते, तो ऐसे ही रहता था हमारा।
1: तो आपका बिल्कुल बैलेंस में सब कुछ चल
0: तो
1: रहा
0: अभी
1: था।
0: तो बैलेंस ही है।
1: चलिए बैलेंस में ही बना रहे, हम यही कामना करेंगे। क्या वेकेशंस फ्यूचर करियर प्लानिंग के लिए भी एक अच्छा समय होती है, क्योंकि हमें सोचने का काफ़ी समय मिलता है। कुछ लोग एथलेटिक्स में अच्छे होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, फिर लेकिन थोड़ी कभी कभी ना राह से ऐसे अलग भी हो जाते हैं, लेकिन वेकेशंस में उनको समझ में आता है कि हाँ भाई आगे जाके, अब 12th के बाद आप फिर कॉलेज ज्वाइन करेंगे, तो आपको वो भी सोचना है कि हाँ मुझे किस फील्ड में जाना है। तो क्या लगता है आपको?
0: हाँ, फ्यूचर प्लानिंग के लिए बढ़िया है कि आपके पास टाइम रहता है, आप सोच सकते हो, आप फ्री बैठे हो। देखो ज़्यादातर क्या होता है कि मैं छोटा था, फ्री बैठा रहता था समर वेकेशन में, तो मैं सोचता था कि क्या करें क्या करें। फिर मैं वही रिसर्च करता था, कुछ ना कुछ नए हॉबी सीखते हैं। तो समर वेकेशन बहुत, मतलब सोच लो कि आप अगर फ्री बैठे होगे तो खुद ना खुद सोचोगे, अगर आपका माइंड प्रोडक्टिव होगा तो आप खुद ही सोचोगे कि यार कुछ नया करते हैं, कुछ सोचा, बैठे बैठे थक गए यार
1: सही
0: कुछ नया
1: बात
0: करते
1: है।
0: हैं। तो मैं वही सोचता था कुछ नया करते हैं, फिर मैंने थोड़ा सा बहुत सीखा, स्किल्स सीखी।
1: समर वेकेशन में बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्स भी तो आजकल चलने लग गए हैं, स्पेशली वो 2 महीने के लिए ही होते हैं। कोई बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कराई जाती हैं उनमें भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, अपने चॉइस के अनुसार जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं।
0: मेरा मानना है कि अगर आपको थोड़े से बेसिक में सीखनी तो आप सीख सकते हो 2 महीने के अंदर, बट अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म में ले जाना है, उसके स्कोप देख रहे हो अंदर, तो फिर पूरे फुल ईयर के लिए करो। आप 2 महीने के लिए करके छोड़ रहे हो उसको हर साल, ये बेकार है। आप अगर आपको लॉन्ग टर्म में चाहिए तो पूरा करो, पूरा साल लो, 2 महीने करके क्या फ़ायदा हुआ।
1: अगर आपको बाकी स्टूडेंट्स को समर वेकेशन के लिए एक सलाह देनी हो तो वो क्या होगी?
0: अगर आप सब लोग सुन रहे हो तो बहुत बढ़िया है, एंड मैं सलाह क्या दूँ, ये लोग अपने में ही टैलेंटेड हैं। आजकल के बच्चे तो मतलब बहुत ही टैलेंटेड है, सब फ़ोन ही, मतलब मेन तो फ़ोन ही यूज़ करते हैं, तो इनके पास मतलब हाथ में एकदम इतना खतरनाक
1: अस्त्र
0: यंत्र है बिल्कुल, समझ लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। बस उनको है कि प्रोडक्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या करें, अपने इस टाइम को कहाँ यूज़ कर सकें। अगर वो टाइम को यूज़ करना सीख गए ना, देन फिर उनके लिए बहुत बहुत समझ लीजिए
1: मतलब अब वही है
0: यूज़फुल
1: कि
0: है।
1: उस ही डिवाइस से हम कुछ नया भी सीख सकते हैं, उसी डिवाइस पर हम अपना समय बर्बाद भी कर सकते हैं। अब जैसे आप AI वगैरह सीख रहे हैं
0: हाँ
1: तो बड़ी अच्छी बात है, उसी फ़ोन पे आप सीख रहे होंगे, और उसी फ़ोन पे बहुत लोग अपना समय बर्बाद रील स्क्रोलिंग में करते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही
0: मैंने
1: आपने।
0: ऑटोमेशन एंड चैटबॉट बनाना सीखा है अभी तक,
1: अरे वाह, तो
0: अभी और देखते हैं।
1: टेक्नोलॉजी में भी आपका मतलब रुचि है।
0: तभी कंप्यूटर ली थी हमने, मुझे
1: अच्छा
0: क्लास 7-6 से पसंद आ गई थी कंप्यूटर, अब कंप्यूटर में ही देखेंगे कुछ ना कुछ।
1: बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों आज की बातचीत से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि समर वेकेशन खुद को समझने, नई चीज़ें सीखने और अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने का बहुत ही बेहतरीन मौका होती है। और कुबेर रस्तोगी ने जिस तरीके से पढ़ाई, डिसिप्लिन और अपनी अच्छी अटेंडेंस के साथ साथ एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, वो निश्चित रूप से बाकी सारे युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक है। तो छुट्टियों का सही इस्तेमाल हमें आगे बढ़ने की नई ऊर्जा देता है, चाहे वो किताबें पढ़ना हो, नए स्किल को सीखना हो, या फैमिली के साथ समय बिताना हो, या फिर अपने फ्यूचर गोल्स पर काम करना हो। तो इसी उम्मीद के साथ आपकी समर वेकेशन खुशियों से सजी रहेंगी, सीख और नई उमंगों से भरपूर रहेंगी। और कुबेर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सरलता से, इतनी अच्छी तरीके से, इतने कॉन्फिडेंस से आपने सारे हमें जवाब दिए, इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज की हमारी बातचीत का विषय ऐसा है जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी और सेहत से जुड़ा हुआ है। तो विषय है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ और गर्मी में स्वास्थ्य और फिटनेस कैसे बनाए रखें। तो पहला जो हमारा विषय है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। दोस्तों, हर साल 12 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को पौधों के स्वास्थ्य और उनके महत्व के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, पौधे सिर्फ हरियाली ही नहीं देते बल्कि हमारी जिंदगी का आधार भी हैं। फल, सब्जियां, अनाज, ऑक्सीजन और पर्यावरण का संतुलन, इन सबका सीधा संबंध पौधों से है। अगर पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भोजन और वातावरण भी सुरक्षित रहेगा। आज जलवायु परिवर्तन

प्रदूषण और कीटों की वजह से पौधों को कई तरह के खतरे होते हैं। इसलिए पेड़ पौधों की सुरक्षा करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये तो होगी पहले विषय पर बात, दूसरे विषय पर बात करते हैं इस गाने के बाद।

दोस्तों, अब हो गया है जाने का वक्त। दीजिए अपने दोस्त दिव्यांशु को इजाज़त। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नई उड़ान कार्यक्रम में आरती आप सभी का स्वागत करती है। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, अगर धरती बोल पाती तो शायद पेड़ पौधों के लिए मदद मांगती, क्योंकि इंसान की सांसें इन्हीं की हरियाली से चलती हैं। हर साल 12 मई को दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, ताकि लोगों को बताया जा सके कि स्वस्थ पौधे सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य की सुरक्षा हैं। सोचिए, दुनिया का लगभग 80% भोजन पौधों से आता है, लेकिन कीट, बीमारियां, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हर साल करोड़ों पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि महंगाई, खाद्य संकट और पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसलिए इस दिवस का उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि पौधों की सुरक्षा का मतलब जीवन की सुरक्षा है। अब सवाल यह है कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो बिना ज़रूरत पेड़ पौधे ना काटें, अपने आसपास पौधे लगाने का प्रयास करें, उनकी देखभाल करें, खेतों और बगीचों में ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल ना करें, इस ऐसा करने से बचें, और सबसे ज़रूरी, प्रकृति को सिर्फ रिसोर्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, क्योंकि जब पौधे स्वस्थ रहेंगे तभी हवा शुद्ध रहेगी, खाना सुरक्षित रहेगा और धरती मुस्कुराएगी।

0: दोस्तों, आज के दौर में आत्मनिर्भरता केवल एक शब्द नहीं बल्कि विकास की वो सोच है जो व्यक्ति से समाज और समाज से पूरे राष्ट्र को सशक्त बनाती है। जब किसी बस्ती के लोग अपने कौशल, संसाधनों और मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ सिर्फ रोजगार नहीं पैदा होता बल्कि आत्मसम्मान, सहयोग और नए अवसर की रोशनी भी जन्म लेती है। इन्हीं पहलुओं को समझने और आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी साथी शोभित जी। तो आइए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं शोभित के साथ कि कैसे संकल्प और साधना से तैयार होती है आत्मनिर्भर बस्तियां और मजबूत होते हैं समुदाय।
1: कभी गांव सिर्फ जरूरतों का नाम हुआ करता था, जहां सपने अक्सर चूल्हे के धुएं में खो जाया करते थे, जहां औरतें मेहनत तो करती थीं, मगर पहचान नहीं मिलती थी। लेकिन जब संकल्प जागता है तो बस्तियां बदलती हैं, और जब समुदाय आत्मनिर्भर बनता है तो सिर्फ घर नहीं पूरी पीढ़ियां रोशन हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं शोभित शर्मा और आज का हमारा विषय है आत्मनिर्भर समुदाय, कुशल और आत्मनिर्भर बस्ती। और इस विषय को हम आपके सामने रखेंगे दो समुदायों के रूप में। तो आइए पहले जानते हैं अपने पहले आत्मनिर्भर समुदाय के बारे में। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक ऐसे ही गांव में जहां महिलाओं ने अपने हाथों से आत्मविश्वास को बुना है। ये हाथ किसी किताब में नहीं पढ़े गए, इन्होंने जिंदगी से सीखा है। कभी घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं आज अपने फैसले खुद ले रही हैं, अपनी पहचान खुद बना रही हैं। इस समय हमारे साथ हैं इस स्वयं सहायता समूह की वो मजबूत आवाज जिन्होंने मुश्किलों को हार नहीं बनने दिया बल्कि उन्हें अपने हौसले से सीढ़ी बना लिया। हमारे साथ सुमन सिंह जी हैं, आप एक स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। आपके स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी?
2: मैंने अपना लक्ष्मीबाई स्वयं सहायता समूह अपनी आर्थिक कमजोरियों को दूर करने के लिए किया, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड कोरोना से एक्सपायर हो गए थे तो इसके बाद मेरे पास सबसे ज्यादा मजबूरी थी कि आर्थिक रूप से मैं इतना सक्षम नहीं थी। मैंने स्वयं सहायता समूह बनाया
1: जी,
2: और स्वयं सहायता समूह से मुझे डूडा विभाग से 10,000 रुपए का लोन पास हुआ। उससे मैंने अचार का काम शुरू किया, फिर इसके बाद मैंने पापड़ का काम शुरू किया और धीरे धीरे इस तरह से मेरे पास बहुत सी चुनौतियां आईं, लेकिन फिर भी चुनौतियों का सामना किया। और
1: चुनौतियां किस प्रकार की आईं?
2: जैसे कि पारिवारिक थी, मेरे पास इतना जगह नहीं था और काफी लोग विरोध भी कर रहे थे कि घर से बाहर क्यों निकल रही हो, ये हमारे परिवार के ही लोग कर रहे थे
1: जी।
2: लेकिन मैंने उनका सबका विरोध करते हुए आगे अपने काम को बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी आसपास की महिलाओं को जोड़ा कि जब तक हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक समाज में हमको कोई भी आदर सम्मान नहीं मिलेगा। जिस दिन हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे उस दिन हम असली सम्मान के हकदार होंगे।
1: अच्छा, आपका ये जो समूह है ये लगभग कितना पुराना है?
2: ये लगभग हमारा 4 साल पुराना है।
1: अच्छा, आपके समूह ने यहाँ इस गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में किस तरीके से सबसे बड़ी भूमिका निभाई?
2: समूह में ये होता है, हम लोग सब लोग मिलकर के काम करते हैं। जैसे कि छोटा सा हम लोग क्या करते हैं कि आर्थिक रूप से हम लोग कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर उसका सामान लेकर के आते हैं, फिर उसको बराबर भागों में बांट लेते हैं और जितना भी इनकम होता है फिर उसको हम लोग बांट लेते हैं। इस तरह से हमारा प्रॉफिट होता है तो हम सब महिलाएं मिलकर के उसको बांट लेते हैं।
1: अच्छा, क्या आपके समूह में कोई ऐसी महिला है जिसकी जिंदगी आपसे जुड़ने के बाद पूरी तरीके से बदल गई है?
2: मैं अपना खुद ही उदाहरण दे रही हूँ कि समूह को बनाने के बाद में भी मेरी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। सबसे पहले जो

0: पैसा मांगना पड़ता था,
1: जी
0: आज मांगती नहीं हूँ, मैं अपने दम पर खुद करती हूँ। और इसी तरह से मेरी महिलाओं का भी यही हाल है, हर समय अपनी जरूरतों के लिए हाथ फैलाती थी, आज हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, आप अपने हाथ से खुद ही वो इतना कर लेती हैं।
1: एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे सुमन जी, कि आने वाले समय में आप अपने स्वयं सहायता समूह और गांव की महिलाओं के लिए क्या सपना देखती हैं?
0: आने वाले समूह में मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने PMFME योजना के तहत लोन लेकर के अपने काम को आगे बढ़ा रही हूँ, इसी तरह मेरे गांव में हर एक महिला छोटी सी यूनिट से शुरुआत करके, मेरा उद्देश्य यही है कि अपने जीवन का लक्ष्य रखा है 1 लाख महिलाएं इंटरप्रोनर अपना उद्योग खुद स्थापित करें।
1: तो अभी आपके समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं?
0: अभी मेरे साथ 130 महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
1: बहुत अच्छा विचार है और बहुत अच्छा आपने एक विजन तैयार कर रखा है सुमन जी अपनी नजरों में, और हम आपको उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं, भविष्य में आप और तरक्की करें।
2: तो आइए अब सुनते हैं उन महिलाओं की आवाज जो इनके साथ जुड़कर काम कर रही हैं और अपने हौसलों को दे रही हैं नई उड़ान।
3: मेरा नाम गुट्टी है।
1: आप इस स्वयं सहायता समूह में कब से जुड़ी हुई हैं?
3: करीब हो गए हैं 1 साल हो गए।
1: तो इनसे जुड़ने से पहले और इनसे जुड़ने के बाद कुछ आपके जीवन में बदलाव आया?
3: हाँ बिल्कुल आया।
1: क्या बदलाव आया?
3: बदलाव का मतलब जब काम कर रहे थे तब पैसे भी मतलब मिलत रहा।
4: मेरा नाम राजेश्वरी है।
1: अच्छा ये बताइए, क्या कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, उस समय आपके समूह ने कैसे साथ दिया?
4: थोड़ा बहुत ये कर रहे थे, फिर बाद में हमें बता देता, हम लोग साथ जुड़ गए।
1: तो इससे कुछ आपको मदद मिलती है आर्थिक रूप से?
5: मेरा नाम कोमल है।
1: कोमल, आप इनके साथ कब से जुड़ी हुई हैं?
5: हो गया 2 साल।
1: क्या करती हैं आप इनके साथ?
5: यही पापड़ चिप्स मिठाई वगैरह मतलब जो भी काम आते हैं वो करते हैं हम लोग।
1: बच्चे भी हैं आपके?
5: हाँ एक लड़की है।
1: तो इनके साथ जब से आप जुड़ी हैं तब से आपको कोई आर्थिक सहयोग मजबूत हुई?
5: बहुत मिलती है, पहले जैसे कि हाथ में पैसे नहीं रहते थे, अब ऐसे काम करते हैं छोटे मोटे तो उसमें पैसे मिलते हैं जो भी, तो इससे हम अपना कुछ भी कर सकते हैं।
6: हमारा नाम किरण है।
1: किरण, आप इनके साथ कब से जुड़ी हुई हैं?
6: 4-5 साल हो गए हैं।
1: तो क्या करती हैं आप इनके साथ, कौन सा काम करते हैं, क्या बनाते हैं?
6: यही बसाते हैं, पापड़ बनाना जो भी है, यही सब मोमोज हो सकता है, ये सब करते हैं।
1: 4-5 सालों के पहले जो आपकी जिंदगी थी जब से आप इनसे नहीं जुड़ी थी, उसके पहले और अब के जीवन में आपको क्या बदलाव दिखता है?
6: बहुत बदलाव हुआ है।
1: क्या?
6: बहुत कुछ अब जिसे करते हैं तो थोड़ा जो भी इनकम या पैसा कुछ भी मिलता है उसे काफी जरूरतें पूरी होती हैं।
1: आप अपने पैरों पर खड़ा महसूस करती हैं? मतलब
6: बहुत महसूस करते हैं। वही हम सोचते हैं कि जैसे इनका भी काम जो बढ़े चले
1: जी,
6: तो हमको भी थोड़ा सपोर्ट मिले करने को।
1: और जो भी यहाँ गाँव में महिलाएं हैं जो खाली हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
6: तो यही संदेश है कि मतलब जितना हो सके मतलब जैसे इनके थ्रू काम उनको मिले और औरतों को भी मिले।
2: दूर दूर तक फैले हरे खेत और मिट्टी से उठती मेहनत की खुशबू, ये सिर्फ खेती नहीं है, ये गांव की पहचान है। साल के 12 महीने यहाँ खेत खाली नहीं रहते क्योंकि यहाँ हर मौसम में मेहनत बोई जाती है। दोस्तों, हम हैं लखनऊ शहर की सीमा से सटे हुए एक ऐसे गांव में जो अपने आप में एक मॉडल गांव बनकर के उभरा है, और इस समय हमारे साथ हैं गांव के अनुभवी किसान जिन्होंने खेती को सिर्फ रोजगार नहीं अपना सम्मान बनाया है।
1: बाबू, आप अपना नाम बताइए।
7: रमेश चंद्र मौर्य।
1: आप इस गांव में शुरू से रह रहे हैं, कितनी पीढ़ियों से हैं आप?
7: 3 पीढ़ी हो गई।
1: 3 पीढ़ियों से?
7: 3-4 पीढ़ी हो गई।
1: अच्छा ये बताइए, इस गांव में ये जो खेती का काम है ये मिलजुल करके लोग करते हैं या सब किसान अलग अलग करते हैं?
7: अलग अलग।
1: आजकल जो नई तकनीक इस्तेमाल होती है खेती किसानी में, उनका इस्तेमाल करते हैं आप?
7: हाँ।
1: और ये गोभी की फसल जो है आपकी, ये कहाँ कहाँ भेजी जाती है?
7: आपके लखनऊ जाती है यहाँ से।
1: अच्छा अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आपको अनुभव ज्यादा है, इस खेती के दौरान सबसे कठिन समय कौन सा रहा?
7: सबसे कठिन तो अब है।
1: किस मायने में?
7: अब हर चीज जो है बहुत महंगी पड़ रही है।
1: दादा, आप अपना नाम बताइए।
8: संतोष पामौरिया।
1: कितने समय से आप ये खेती कर रहे हैं?
8: अरे खेती तो हमारे पिताजी करते थे गोभी की।
1: अच्छा।
8: उसके बाद हम लोग।
1: अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि मई का महीना है और आपके खेतों में जो है केचुओं की आमद पर्याप्त मात्रा में है, तो ये इस मौसम में तो दिखती नहीं है, यहाँ क्यों केचुए इतना पनप रहे हैं? और
8: यहाँ गोभी की फसल ज्यादा होती है, साल में 3 बार लगभग।
1: अच्छा, साल में 3 फसल आप काटते हैं?
8: 3 फसल गोभी, नमी की वजह से रहती है।
1: तो ये माल जो आपका तैयार होता है फसल, ये आप सीधे मंडी
8: जाती
1: मंडी बेचते हैं? इस समय हमारे साथ एक युवा साथी हैं जो इस खेती में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जो आत्मनिर्भर बनने की कहानी हम कहते हैं उस

0: इसके तहत कहीं ना कहीं ये अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ये भी पीढ़ियों से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनका परिचय। भैया क्या नाम है आपका?
1: उमेश मौर्य।
0: तो क्या लग रहा है आप, क्योंकि युवा हैं तो इस काम में इंटरेस्ट है आपको?
1: अब इंटरेस्ट क्या, इसी से अब भाई घर का पालन पोषण,
0: जीविका इसी से चलती है,
1: जीविका चल रही है।
0: तो आप नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर आजकल जो सब टेक्निक्स आ गई है खेती किसानी में, तो वो सब यूज करते हैं आप?
1: हाँ, उसी को अगर यूज नहीं करेंगे तो ये खेती कैसे हो पाएगी, उसी से हर समय की फसल मिल रही है।
2: हमारा सर सौरभ कुमार मौर्य नाम है।
0: इस गांव में साल भर गोभी की खेती शुरू करने का विचार कैसे आया?
2: अच्छा। हमारे

0: को अगर यूज नहीं करेंगे तो ये खेती कैसे हो पाएगी, उसी से हर समय की फसल मिल रही है।
1: हमारा सर सौरभ कुमार मौर्य नाम है।
2: इस गांव में साल भर गोभी की खेती शुरू करने का विचार कैसे आया?
1: अच्छा। हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं पहले से, फिर धीरे धीरे इसमें इनकम होने लगी साहब। जब इनकम होने लगी तो उनका मन और गोभी के प्रति आकर्षित हो गया।
2: कितनी पीढ़ियों से आप ये काम कर रहे हैं?
1: लगभग सर 4 पीढ़ियां तो हो गई हैं, लेकिन उससे पहले से हो रही है।
2: अच्छा, हम देख पा रहे हैं आपके आसपास ज्यादातर इलाकों में सब आबादी है, मकान बन रहे हैं, बिल्डर्स आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन आप शहर की सीमा से लगे हुए हैं और आज भी खेती से जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों?
1: क्योंकि सर एक ऐसे समुदाय से अटैच हैं कि हमारे जो पूर्वज भी खेती करते आ रहे थे और वही परंपरा हम आज भी वही काबिज हैं।
2: आपके समुदाय के लगभग कितने लोग इस काम से जुड़े हुए हैं?
1: 2 परिवार हैं जो पूरे गांव में हैं, जो कि 200 किसान हैं दोनों परिवार में, और दोनों परिवार इसी खेती पर ही निर्भर हैं।
3: सर हमारा नाम है प्रज्ञा मौर्य।
2: प्रज्ञा आप क्या कर रही हैं?
3: सर हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम 10th क्लास में हैं।
2: और हम देख रहे हैं कि आप खेतों में भी इंटरेस्ट ले रही हैं, खेती में भी काम कर रही हैं। आपको इस चीज में इंटरेस्ट क्यों है?
3: जैसे कि ये जो एग्रीकल्चर है हमारे यहाँ का, तो ये एक पेरेंटल है, तो इसीलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे घर के लोग, मेरे गांव के लोग यही करते हैं ज्यादातर।
2: आप अपने परिवार की आजीविका के लिए इस काम में भी मदद करती हैं, पढ़ाई भी आप कर रही हैं। क्या लगता है कि खेती एक व्यवसाय के तौर पर आपको लाभ दे रही है?
3: जी सर बिल्कुल दे रही है। हम लोग मतलब इससे काफी ज्यादा अच्छा अर्निंग भी कमा लेते हैं और काफी ज्यादा इसमें फायदे भी हैं, हम लोग को जानने को भी मिलता है। हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में भी जानते हैं मदद करने के साथ साथ।
2: दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी। आप चंद्रभान गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय बख्शी का तालाब लखनऊ में कार्यरत हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये जो गांव है कुटवा, आखिर यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है, क्योंकि ये गांव इन्हीं के अंतर्गत आता है, यहीं पर आकर के ये अपना एक्सपर्टाइज यूज करते हैं, तो आखिर यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है कि इस भीषण गर्मी के मौसम में भी गोभी जैसी फसल यहाँ पर हो रही है? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये फसल यहाँ इस गांव में हमें दिख रही है
4: जी,
2: वो आमतौर पर इस मौसम में देखने को नहीं मिलती, अगर हम सामान्य खेतों की बात करें।
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल।
2: तो क्या कारण है यहाँ पर?
4: देखिए कि जो ये हमारा नगर पंचायत बख्शी का तालाब का गाँव कोटवा है
2: जी,
4: ये बहुत पुराने समय में नवाबों के समय में यहाँ पर कोट लगा करती थी, और यहाँ की जो मिट्टी है
2: जी,
4: इस मिट्टी में एक तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ककड़ीली मिट्टी है
2: जी,
4: पत्थर के टुकड़े भी हैं, बहुत पुराने पत्थर के टुकड़े ऐसे दिख रहे हैं जिनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल है
2: जी, जी।
4: ये कई वर्षों से धीरे धीरे धीरे यहाँ खेती होती चली आई, तो जो हमारे पूर्वज लोग थे इस गांव के वो गोभी की शुरुआत किए थे, उसके बाद अब तीसरी चौथी पीढ़ी, जैसा कि अभी आपने देखा कि चौथी पीढ़ी तक के लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। का मुख्य कारण आप ये जाने कि यहाँ की जो माटी है, इस माटी में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत ज्यादा है, जैसा अच्छा, कि आपको दिख रहा है
2: हाँ, वो प्राकृतिक रूप से है,
4: प्राकृतिक रूप से इनको गिफ्टेड है। और गिफ्टेड अच्छा, क्यों है? जब किसी भी मिट्टी में इस ककड़ीली पथरीली मिट्टी होती है तो केचुओं की संख्या उसमें बढ़ जाती है। केचुआ जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अपनी वृद्धि करता है। इस समय हाई टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब तापक्रम चला जाता है तो केचुए बहुत गहराई में चले जाते हैं, लेकिन गोभी की खेती में केचुए जो है 45 डिग्री हो जाए चाहे 50 हो जाए वो गहराई में नहीं जाते हैं।
2: तो जैविक खेती का भी मॉडल,
4: जैविक खेती का सबसे बड़ा मॉडल अगर है तो यही है कि जिन खेतों में निरंतर केचुआ मिलते रहे, और इनको जो है अब बड़ी मार्केट मिलने लगी। अच्छा, ये खाली लखनऊ की मार्केट में, लखनऊ की मंडियों में नहीं बेचते
2: जी, जी।
4: ये गोरखपुर की मंडी ले जाते हैं, कानपुर की मंडी में जाता है, इस तरह से जौनपुर जाता है, पूरे आसपास के जो बड़ी मंडियां हैं वहां पर भी आसानी से इनका गोभी अच्छे दामों में बिक जाती, और पूरा परिवार इनका लगा रहता है इस खेती में।
2: अच्छा सर, यहाँ के जो लोग हैं ये हम देख रहे हैं निर्भर ही हैं इसी काम पर
4: जी जी,
2: गोभी पर ही
4: जी जी।
2: तो आप लोगों की तरफ से इनको समय समय पर
4: हाँ,
2: क्या
4: बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि देखिए कि हम लोगों का ये जो गांव है, हम लोगों के एक तरह से ये गांव हमारे गोद में है, यानी महाविद्यालय जो है गांव को गोद लेता है।
2: अच्छा।
4: जैसा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटियां हैं, महाविद्यालय हैं, गांव को गोद ले लेती हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है एक वैज्ञानिक के रूप में, एक एक्सपर्ट के रूप में इन गाँव में जा करके इनके जो किसान है जिसे कोई समस्या है तो यहाँ पर जो है इन लोगों को हम आते हैं बताते हैं।
2: यहाँ गाँव में हम देख रहे हैं कि बच्चे भी या युवा वर्ग के लोग भी खेती में लगे हुए हैं, खेतों में दिख रहे हैं
4: हाँ,
2: तो आजकल के समय में देखा जाता है अगर हम एग्रीकल्चर

0: को एक व्यवसाय के तौर पर भी इस काम को ले ले, तब भी युवा कहीं ना कहीं इससे जी चुराता है या भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग तन्मयता से लगे हुए हैं। तो क्या आप लोगों की तरफ से इनको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती
1: देखिए, समय समय पर इनको जो है संबंधित फसल में समन्वित सब्जी प्रबंधन पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
0: अच्छा।
1: और उनको ये कहा जाता है कि आप खेती, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ से इन लोगों ने पौधों से दूरी और लाइन से लाइन की दूरी समान रखी,
0: सिमेट्री जी,
1: हाँ सिमेट्री है, समान है, तो ये तकनीकी जानकारी। दूसरा ये कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जहरीले रसायनों का छिड़काव ना करें, जिससे जो है हमारा केचुआ नष्ट हो जाएगा। राजधानी का जो कोटवा गांव है, खास करके गोभी के लिए मॉडल गांव के रूप में जाना जाता है। पूरे राजधानी में कोई भी ऐसा गांव गोभी के क्षेत्र, गोभी की खेती में मॉडल गांव के रूप में विकसित ही नहीं हुआ।
0: और यहां के लोगों की आजीविका का साधन भी
1: यही बना, और आज नहीं, ये काफी समय से चला रहा और अभी निरंतर चलता जाएगा।
0: सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और आप इतना पुनीत काम कर रहे हैं, आज भी किसानों को जमीन से जोड़कर रखे हुए हैं शहर के नजदीक होने के बावजूद भी, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, हमारे साथी एंकर शोभित के संग हमने समझा कि आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि लोगों की भागीदारी, कौशल, मेहनत और सामूहिक संकल्प से होता है। जब एक बस्ती अपने संसाधनों को पहचानती है, अपने लोगों के हुनर को अवसर देती है और मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तभी स्थायी और सशक्त विकास होता है। और जब सशक्त विकास होता है तो फिर जीवन अपने आप खुशमय हो जाता है, गीत संगीत से भर जाता है। फिलहाल एक प्यारा सा गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, विकास की एक बड़ी खुशखबरी आई है। खबर ये है कि NHAI ने बरेली से हल्द्वानी के बीच नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। करीब 100 किलोमीटर लंबा ये 4-लेन एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड क्षेत्र को उत्तराखंड से तेज और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज दिल्ली मुरादाबाद बरेली हाईवे और प्रस्तावित शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला है। इससे आम लोगों को कम समय में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। पर्यटन और व्यापारियों को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। रोजाना का सफर भी जाम से राहत मिलने के कारण और बेहतर हो सकेगा। और इसी कड़ी में धार्मिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देते हुए वृंदावन से भी एक खबर अच्छी सी आई है। वो ये कि वृंदावन रिजनोवेशन प्रोजेक्ट के तहत यमुना घाटों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केसी घाट समेत कई प्रमुख घाटों को आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक ब्रज संस्कृति की झलक के साथ विकसित किया जा रहा है। तो ये परियोजनाओं से बहुत कुछ बदलने वाला है। फिलहाल समय कहता है कि बदलाव ज़रूरी है, समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और घड़ी की सुइयां मुझसे कह रही है जल्दी से आज के कार्यक्रम से ले लो अपने साथियों से अनुमति। तो दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्ते, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घरांगन माहे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंखों
4: तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
6: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा अनवरतम द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणा सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स अथ च सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये स्पर्धा भविष्यति।

0: अथ वार्ताः विस्तरेण राष्ट्रिय परीक्षा संस्थया अस्मिन् मासस्य तृतीये दिनांके आयोजिता नीट परीक्षा निरस्ता भविष्यतीति निर्णयः गृहीतः। सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते संदेशे संस्थया सूचितं यत् छात्रहितं राष्ट्रिय परीक्षा प्रणाल्याः विश्वसनीयता च रक्षितं एषः निर्णयः स्वीकृतः। संस्थया स्पष्टीकृतं यत् प्रश्नपत्र संबद्धानां आक्षेपाणां विस्तृत अन्वेषणार्थं एषः विषयः केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणाय प्रेषितः। एतदर्थं संस्था पूर्ण सहयोगं प्रदास्यति तथा अन्वेषणाय आवश्यकानि साहित्यानि अभिलेखानि साहाय्यं च उपलब्धं करिष्यति। केन्द्रीय संस्थाभिः आरक्षक बलैः च सह समन्वयनान्तरं प्राप्त सूचनानां आधारेण एषः निर्णयः कृतः। भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठनेता डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा अनवरतं द्वितीयवारं असम राज्यस्य मुख्यमंत्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। गुवाहाटी नगरस्य खानापाड़ा स्थिते पशु चिकित्सा महाविद्यालयस्य प्रांगणे आयोजिते समारोहे राज्यपालः लक्ष्मण प्रसाद आचार्यः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रादापयत्।
1: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লও যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করি।
0: ডক্টর শর্মা মহোদয়েন সহ অন্যে চত্বারহ অপি মন্ত্রিমণ্ডলহ মন্ত্রিত্বেন শপথম স্বীকৃতবন্তহ। তেষু ভাজপা দলস্য পক্ষতহ রামেশ্বর তেলী अजंता नियोग च असम गण परिषदः पक्षतः अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट पक्षतः चरण बोरो च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् समारोहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः अनेके केन्द्रीय मंत्रिणः तथा एनडीए शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिणः अपि उपस्थिता आसन्। अनेन सह डॉ. शर्मा असम राज्यस्य प्रथमः कांग्रेस रहितः नेता अभवत् यः अनवरतं द्वितीयवारं मुख्यमंत्री पदम् अलंकृतवान्। अस्मिन् मासे 14-15 दिनांकयोः ब्रिक्स विदेश मंत्रिणां सम्मेलनस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां प्रसार माध्यमान् सम्बोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां सहभागी राष्ट्राणां च विदेश मन्त्रिणः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखाः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। सः अपि उक्तवान् यत् ते प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह अपि मेलनं करिष्यति। श्री जायसवालः अवदत् यत् अस्मिन् सम्मेलने ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां विदेशमन्त्रिणः परस्पर हितस्य वैश्विक क्षेत्रीय विषयेषु स्वविचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यन्ति।
2: 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं। जहां तक देशों का आपने जिक्र किया उनकी तरफ से कौन आएगा ये तो खैर उनको तय करना है, लेकिन जैसे जैसे लोग आएंगे आपको पता चल जाए कौन उनके नेतृत्व कर रहे हैं कौन लोग उसमें भाग ले रहे हैं।
0: अद्य अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसः आचर्यते। अयं दिवसः आधुनिक परिचारिका व्यवस्थायाः संस्थापिकायाः फ्लोरेन्स नाइटिंगल इत्यस्याः जन्मवार्षिक्याः उपलक्ष्ये प्रतिवर्षम् आचर्यते। रोगी परिचर्यायां सामुदायिक स्वास्थ्ये आर्थिक विकासे च परिचारिकाणां महत्वपूर्णां भूमिकां स्वीकृत्य अयं दिवसः आचर्यते। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रिय परिचारिका दिवसस्य विषयः अस्माकं परिचारिकाः अस्माकं भविष्यम् इति। सशक्ताः परिचारिकाः जीवनानि रक्षन्ति इति उपविषयः अपि निर्धारितः अस्ति। एतत् वैश्विकस्तरे परिचर्या व्यवसायिकानां कृते उत्तमसहयोगस्य संरक्षणस्य संसाधनानां च आवश्यकतां प्रकाशयति। अस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते कार्यक्रमे 15 परिचर्या वृत्तिकर्तृभ्यः राष्ट्रिय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कारान् प्रदत्तवती। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः

0: पंचो जय हिंद।
1: हिमांशु भैया।
0: हाँ सोला बहनी,
1: देखो क्या हालचाल है, आपन बताएं।
0: बिल्कुल बहुत बढ़िया हालचाल है, एकदम हाँ। सब बढ़िया मजे में है बहनी, आपन बताओ हालचाल आप।
1: बिल्कुल ठीक है भैया, और घर परिवार में अगर जो है घर परिवार अपन स्वस्थ रहा थे, अपने आसपास के लोग स्वस्थ रहा थे ना, तो अपने आप जो है अच्छा लगा था कि जो है सब सुखी रहें, यही चाहत है।
0: और स्वस्थ सभी चाहत कि अपन शरीर स्वस्थ रहे, और जब अगर शरीर अपन स्वस्थ रहे हाँ। तो काम धाम करे के भी इच्छा करे, सही तरीके से मनी आगे बढ़े और आगे उन्नति करे।
1: भैया उन्नत करे, और उन्नत की बात करो, और चीज के बात करो, शिक्षक बात करो, कोनो भी चीज के बात करो, तो जो अपने घर के जो है गुड़िया हैं, बिटिया हैं ना, उनका याद करो कि जो है देखो कैसन आजकल के जो समय है

0: वो एकदम प्रगति की ओर है।
1: बिल्कुल बहनी,
0: और
1: एकदम एकदम मुंह के बात छीन ले हो, गुड़िया के बात की हो, बहनी बिटिया के बात की हो, तो आज के समय में देखो कौनो ऐसा क्षेत्र बचे नहीं ना जहां अपने घर की बहनी बिटिए परचम ना लहरा रहे हुए
0: भैया,
1: बहुत आगे बढ़ गई हैं।
0: भैया, और देखो चाहे वो खेल हुए, चाहे वो जो है विज्ञान का क्षेत्र हुए, हैं अभी देखो भैया कितना ऐसे जो है बिटिया हैं जो उनकी आगे पढ़ लिख के शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ करके को भैया जो है प्रोफेसर बन रहा है,
1: क्यों डॉक्टर बन रहा है,
0: डॉक्टर बन रहा है भैया, और क्यों भैया जो है अंतरिक्ष तक पहुंच रहा है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है ना, और ये सब अपने आप का जो है गौरवान्वित करत है कि जो है देखो अब देश में कितना बदलाव भा है,
1: और लोगों के सोच और विचारधारा और मानसिकता में भी बहुत ज्यादा बदलाव हुआ
0: भैया। पहले के समय से आज के समय से काफी अंतर है।
1: बिल्कुल।
0: और वो यह है कि पहले हो सकते कुछ समस्या रही हुए, आगे बढ़ को ना रहा हो, या फिर सोच ही अलग रही हुई।
1: बिल्कुल, समय के
0: साथ। आज के जो समय है ना, अपने घर में अगर एक लड़की एक लड़का है और जो है या फिर चार लड़की जैसे भी है, लेकिन सब स्कूल जा रही है और सब भैया, और देखो अभी जब रिजल्ट आवत है ना, जब परीक्षक नाम आवत है ना, तो कितना अपने आप में आनंद के विषय हो जाते कि अपने अच्छा उनकर बिटिया देखो कितना नाम करी,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: और
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बहनी एकदम सही कहो, और जब बिटिये आगे बढ़त हैं, उन्नति करत हैं, तो वही खाली एक परिवार के उन्नति नहीं करती, बल्कि एक परिवार के साथ साथ दूसरों परिवार के भी उन्नति करते, और पूरे परिवार के साथ साथ पूरे देश में पूरी दुनिया में बिटिया हुए पे गर्व महसूस किया जाता है, और देश दुनिया के नाम रोशन भी करता है बिटिया
0: भैया। और हर जगह देखो जब ऐसे लोगों का हम सब देखा था और उपलब्धि जी पाए हैं उनका देखा था, तो बहुत अच्छा लगा था। और देखो यही खातिर अपन जो सरकार है ना कि अपने बिटिया खातिर कुछ बेहतर हो सके, उनके उपलब्धि कर सके, ये खातिर जो है उन्होंने भी योजना,
1: बहुत तरह की योजना चला रहा था बहन, वही में से एक योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
0: हाँ भैया, तो ये के यही है कि जो है बेटी बचाओ, अब बेटी बचाओ तो बेटी तो हम सब बचाएं लिया था ना, है ना, तो अब वो समय नहीं है, लेकिन और जो पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाए भी रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: है ना। और जो अभी भी अगर ऐसा कुछ सोचे कि भैया का करे हैं बेटिया पढ़ के, और जो है इनका तो दूसरे के घर संभाले का है, अब भैया दूसरे के घर का वो अपने घर होते है
1: ना,
0: अब दूसरे के घर संभाले के लिए जब एक नई जगह हम सब जाते हैं और नया घर होते है, तो अपन नया रिश्ता नया लोग सबसे जुड़े खातिर ना बहुत अपने आप में सामंजस्य संस्कार शिक्षा सब कुछ जो है बहुत सामंजस्य बिठा
1: हुआ, ये सब तब संभव हो पावत है बहनी जब बहनी बिटिया पढ़ी लिखी होते है, घर परिवार के सब मनी पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ाई लिखाई से ज्ञान तो होते है, ज्ञान के साथ साथ नैतिकता भी आवत है कि का अच्छा है का बुरा है, सोचे समझे के क्षमता विकसित होता है, जिससे कहा है कि ना फिर अब परिवार का चलावे खातिर बहुत तरीके के जो है अपन मन का बनावे पड़ता है, वही तरीके से बहुत तरीके के व्यवस्था में भी शामिल हुए पड़ता है,
0: बिल्कुल,
1: तो इस सब जो है पढ़ाई लिखाई से ही संभव हो पावत है।
0: और यही लिए जो है जब घर परिवार में बिटिया जात है, तो देखो आजकल तो समय देखो सवेरे से लेकर के बाहर के काम है ना, आजकल तो सब नौकरी मैं पेशम लगी हैं लोग, तो उका संभालो, फिर संझा बेरी घर संभालो, तो कितनी बड़ी बात है ना कि जो है घर से लेकर के बाहर तक सब कुछ संभाले का है, और जो है इमन एक दूसरे के भी सहयोग है,
1: हाँ,
0: है ना, अगर अपने परिवार के भाई बहन हैं, हैं पति पत्नी हैं, तो सब एक दूसरे के सहयोग से ही आगे हम सब बढ़े में सक्षम है।
1: बिल्कुल, और बेटी के बहुत जिम्मेदारी हो, जैसे भी आप बतवे हो, कबो जो है बेटी के रूप में, कबो बहन के रूप में, कबो माई के रूप में, हर तरीके के जो किरदार है,
0: हाँ,
1: बहुत बखूबी बहुत नीकी तिनके निभावत हैं बहनी बिटिया।
0: और उदाहरण अगर ले जाए तो उदाहरण तो भाई बहुत है, है ना, अगर नाम ले लोगो भैया ऐसे जो है नारी सशक्तिकरण के, या फिर जो है जो नारी आगे बढ़ी हैं,
1: हाँ।
0: बिटियन आगे बढ़ी हैं, तो बहुत लंबी जो है चौड़ी
1: एक,
0: हाँ भैया हो जाते हैं, तो देखो सबका जो है एक नमन करे के वो है कि जो है भाई यह तरीके से है, और हम सबका ये कर्तव्य बनता है, ये जिम्मेदारी बनत है कि अपने बिटिया का जो है पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ाई, और उनके सुरक्षा और सम्मान कर भी बहुत विशेष ध्यान।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहनी जैसे अपने घर की बहनी बिटियन का नजर रखे चाहिए, नजर उनके ऊपर जो है रहे, वही तिनके दूसरी बहनी बिटियन का भी अपन बहन बिटिया समझा जाए।
0: भैया हिमांशु भैया यही तो हम बात करते हैं कि उनके सम्मान और सुरक्षा का भी

0: बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखो जब बात यह सब कह किन जात है, तो भाई अभी बात किनगा की जो है प्रगति हो रही है,
1: बिल्कुल
0: उन्नत हो रही है, तो अपने गांवन में भी देखो कितना सारा बदलाव
1: हो रहा है, बदलाव हो चुका है और हो रहा है भाई,
0: हो रहा है। और शुरुआत होता है अपने स्वस्थ शरीर से, हाँ, पोषण से,
1: हाँ,
0: तो वैसे एक जानकारी भी लेके आए हैं, है ना?
1: हाँ, तो मैंने सुनवा दी।
0: हाँ भैया, आज हम जानकारी लेके आए हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन से बदलती गांव की तस्वीर, और यह पे जानकारी दे हैं डॉक्टर लिली सिंह बहनी। तो सुना जाए भैया, और पंच भैया भी सुने।
1: बिल्कुल बहने, सुन लीजिए।
2: राष्ट्रीय पोषण मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं के पोषण में सुधार के लिए भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है। बेहतर भविष्य के लिए पोषण बहुत जरूरी है। अच्छे भोजन से ही काम करने के लिए शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों को शुरुआती दौर में स्वस्थ एवं पोषित रखना परिवार के लिए चुनौती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर कम है। देश में 5 वर्ष तक के आधे बच्चे किसी न किसी कुपोषण का शिकार हैं। कम वजन, सूखापन, नाटापन बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास में बाधक हैं, जिसका कारण घर के भीतर भोजन का असमान वितरण, असंतुलित भोजन, जानकारी की कमी मुख्य है। पोषण के लिए पिछले लगभग 50 साल से समन्वित बाल विकास कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है, पर इसका प्रभाव बहुत धीमा होने के कारण आंगनबाड़ी की व्यवस्था में सुधार कर राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई, जिसमें तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। पोषण मिशन में समयबद्ध तरीके से दूसरे कार्यक्रम को भी साथ जोड़कर सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि कुपोषण की कई वजह होती है। खानपान अच्छा न होना, साफ सफाई की कमी, अस्वच्छ जल, बार बार बीमार पड़ना, डायरिया, इन समस्याओं से बचने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन में बाल विकास कार्यक्रम के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्राम विकास कार्यक्रम का समन्वय किया गया है, जिससे समन्वित प्रयास से गांव को कुपोषण मुक्त बनाकर बाल मृत्यु दर को कम किया जा सके। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय को इसका हिस्सा बनाया गया है। बच्चों के अनुरूप शौचालय, शौचालय में पानी की व्यवस्था, हाथ धोने के लिए साबुन पानी की व्यवस्था की गई है। 5 वर्ष तक के बच्चों में विकास अमूमन एक समान होता है। यदि कोई बच्चा कुपोषित है तो इसका मतलब है कि भोजन की कमी, देखभाल की कमी या बीमारी के कारण उसका विकास प्रभावित हो रहा है। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे पोषण पर ही निर्भर करता है। हमारे अपने गांव में हर 10 में से 5 बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 10 में से 2 बच्चे दुबलेपन, 10 में से 6 बौनेपन या नाटेपन का शिकार हैं, जो एक गंभीर समस्या है। बच्चों में जब कुपोषण की समस्या होती है तब बीमारियों से लड़ने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। बच्चे के बार बार बीमार पड़ने से परिवार की आय का बड़ा हिस्सा बीमारी पर खर्च होता है, जिसका असर खाने पीने, पढ़ाई, रहन सहन पर पड़ता है। ऐसे बच्चों की बड़े होने पर काम करने की क्षमता, कमाने की क्षमता कम हो जाती है। वे जल्दी थकते हैं, खेल कूद में पीछे रहते हैं, पढ़ाई में हमेशा पिछड़ते हैं, जिसका पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है। वयस्क होने पर उनकी कार्य क्षमता और कमाने की क्षमता कम रहती है। यह कुपोषण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कुपोषण की इस भयावह स्थिति को समझकर राष्ट्रीय पोषण मिशन में विभागों के परंपरागत ढांचे से आगे जाकर अभियान को बदलाव के रूप में लागू किया गया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन ने शुरू के 2 वर्ष या 1000 दिन को अमूल्य माना है। कुपोषण का सबसे अधिक खतरा इसी समय होता है, जिसे रोकने के लिए अब संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, जन्म के तुरंत बाद मां का दूध, 6 माह के बाद ऊपरी आहार की शुरुआत, बढ़ती उम्र के अनुरूप भोजन की मात्रा, आयरन की गोली को लोग व्यवहार में अपनाने लगे हैं। किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और खान पान की जरूरत को स्वीकारने लगे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने, अस्पताल में प्रसव होने, किशोरियों के विद्यालय जाने, अन्नप्राशन, गोद भराई, जन्मदिन का उत्सव होने से समुदाय की सहभागिता पोषण के लिए लगातार

0: लगातार बढ़ी है। लोगों की जागरूकता से पोषण का स्तर बढ़ाने में मदद मिली है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का प्रभाव है कि आज गांव के स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ANM, आशा, अध्यापक, सफाई कर्मी, स्वयं सहायता समूह की सदस्य पोषण साथी बनकर उभरे हैं। ये गांव घर में जाकर चौपाल, विभागीय बैठक में पोषण पर चर्चा करते हैं। ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर बुधवार या शनिवार को एक जगह पर इकट्ठा होकर जरूरत की सेवाएं देते हैं। बच्चों का वजन, पीने का साफ पानी, साबुन से हाथ धुलना, आयरन की गोली, टीकाकरण कम समय में एक साथ हो जाते हैं। इस मिशन में घर घर संपर्क कर परामर्श सेवा ऐसे दी जा रही है कि बताई गई बातों से व्यवहार में परिवर्तन दिखे और आगे चलकर यह परिवर्तन व्यवहार का हिस्सा बन जाए। आज गांव में जगह जगह सही पोषण देश रोशन का नारा लिखा हुआ मिलता है। जन प्रतिनिधिगण पोषण पर चर्चा करते हैं। पोषण शिक्षा के लिए अन्नप्राशन जैसे संस्कार का फिर से मनाया जाना व्यवहार में पोषण के महत्व को दर्शाता है। गोद भराई का उत्सव गर्भवती के प्रति समाज की जिम्मेदारी को दर्शाता है। मोटा अनाज या श्री अन्न भी पोषण का एक बेहतर विकल्प है। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, सांवा, कोदो ऐसे अनाज हैं जो पौष्टिकता में गेहूं चावल से उत्तम हैं। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और रेशे की पर्याप्त मात्रा होती है। इनसे बनी रोटी, दलिया, हलवा, खिचड़ी को आंगनबाड़ी केंद्र के अलावा घर में भी बनाकर खाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका तैयार की गई है जिसमें हरी साग सब्जी, अमरूद, पपीता के पेड़ लगाकर खाने में दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दुधारू गाय दी गई है और गाय की देखभाल के लिए सहायता राशि की व्यवस्था की गई है ताकि गाय का दूध खाने में और गोबर का उपयोग पोषण वाटिका की खाद में किया जा सके। कई जगहों पर स्थानीय अनाज से तैयार पोषण पोटली बांटी जा रही है जिसको लोग अपने खान पान में खुद से भी शामिल कर रहे हैं। चने की दाल, तेल, दलिया, पौष्टिक पंजीरी नियमित रूप से पोषण की जरूरत के मुताबिक दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का ही परिणाम है कि लड़कियों का स्कूल पढ़ने जाना, बालिग होने पर उनका विवाह, खान पान के भेदभाव में कमी, शौचालय का उपयोग, साबुन से हाथ धुलना, सुरक्षित पेयजल का इस्तेमाल, नालियों की सफाई अब ग्रामीण क्षेत्रों में आदत का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि परिवार के पुरुष सदस्य बच्चों महिलाओं के स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य, पोषण की जानकारी में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं जो पहले केवल महिलाओं तक सीमित था। अब वह भी खाना, साफ सफाई और स्वास्थ्य की निगरानी करने लगे हैं। तिरंगा, चतुरंगा खाने के महत्व को समझने लगे हैं। बच्चे का वजन क्या है, पोषण कार्ड पर दर्शाई गई हरी, पीली और लाल श्रेणी का क्या मतलब है, इसको गंभीरता से लेने लगे हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन ने आज जन आंदोलन का रूप लेकर गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल दी है। सही पोषण देश रोशन के नारे के साथ एक छत के नीचे मिलने वाली पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव के बच्चे, किशोरियां, महिलाएं अपनी जरूरत के मुताबिक ले रही हैं जो बेहतर भविष्य की गारंटी है।
1: हिमांशु भैया,
2: हाँ सर लबेनी,
1: देखो कितनी बढ़िया जानकारी रही ना, राष्ट्रीय पोषण मिशन से बदलती गांव की तस्वीर। और ये पर जानकारी दी डॉक्टर लिली सिंह बहनी, तो यह के लिए इनका बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और भैया देखो, अब जो है समय है कि एक ठीक गीत को नहीं सुन लीन जाए।
2: बिल्कुल भैया।
1: और ये समय भैया शादी विवाह खूब चल रहे हैं, तो विवाह गीत सुनवा लीन जाए।
2: बिल्कुल, देखो अपने बैठ के हम लोग देखे आए हैं विवाह गीत संजोली पांडे बहनी की आवाज में, तो आओ सुन लीन जाए।
1: सुना जाए भैया, और पंच भैया भी सुने।
2: बिल्कुल।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सरला बहनी।
5: हाय मंशु भैया।
4: देखो बहनी, अगर खेती पाती के अपने बातचीत कीन जाए तो बहनी देखो, अपन खेती पाती तबे बढ़िया होत है जब वही के तैयारी बढ़िया होत है।
5: बिल्कुल भैया, जो है देखो, हम

0: सब कोनो भी चीज की तैयारी करत हन तो पहले से तैयारी करत हन ना। अब जैसे घर में शादी ब्याह होत है तो 6 महीना 5 महीना पहले से घर के एकदम सब कुछ। अब बहन देखो गौने सुनागा संजुली पांडे बहन की शोर मत, तो कितना जो है उराहा उमा कितना आनंद आएगा और अपने से भाई खोएगा होगा वही गौने मा की जो है किस तरह से शादी ब्याह मा चीजें होते हैं, है ना। और वैसे अपन खेती पाती बारी है कि अपन जब फसल के हम बुआई करत हैं और कटाई वही के पहले की जो तैयारी होत है ना वो पूरी तरह से वैसे होते हैं कि हम 4-5 महीने पहले से ही उराहतन कि अगली फसल हमका का लगा का है, कैसे खेत के तैयारी करे का है, कैसे खेत के जुताई करे।
1: बिल्कुल, बहुत बढ़िया उदाहरण जो देखो कि जैसे शादी ब्याह हम तैयार हुआ जात है तो शुरू से लेके जब तक कार्यक्रम समाप्त हो नहीं जाते तब तक समझो तैयारी जारी रहा है।
0: बिल्कुल,
1: वही तिनके अपने खेते में जो फसल बोवे का है तो फसल बोवे से पहले ने से पूरी तैयारी शुरू के दिन जात है। अब तैयारी के शुरुआत हो जात है माटी के जांच से। माटी के जांच हुए बाद में इस समय देखो बहनी गर्मी के समय चल रहा है।
0: हाँ भैया,
1: गेहूं वहूँ मनी काट के अब भूसा वूसा अपन दहेली से गेहूं घरे पहुंच गया है। अब खेत होगा है अपन खाली, तो जो खेत खाली होगा तो खेत का खाली रहे पे जरूरी है कि वही के अच्छे से जुताई करवा दी जाए।
0: भैया हिमांशु भैया देखो, अब जो खूब गर्मी है ना तो खेत पूरी तरह से एकदम सूखा होएगा।
1: बिल्कुल,
0: और जब यह जो है जुताई कर दी जाए ना तो पल जो है माटी नीचे माटी ऊपर आ जाए और ऊपर अच्छी तरह से पलटवार हो जाए। और जब बरसात हुए तो माटी जो है नीचे तक पानी चला जाए, उसमें नमी बन जाए।
1: बिल्कुल बहनी, बरखा से पहले जो हुए या हुए कि जब माटी के जुताई हो जाए तो जो वही में जैसे किरवा वरवा है के उनके उनके जो अंडा वंडा है या फिर मान लो कि जैसे कुछ घास फूस के बिया हुआ होते हैं तो जुताई में और गर्मी के वजह से वे नष्ट हो जाते हैं
0: भैया। और कुछ जो है कीट जो है अपने फसल के लिए लाभदायक भी होती है, कुछ पोषक तत्व है जो उन पोषक तत्व के रूप में रहते हैं। जैसे अपने खेत में केचुआ है सब है तो अपने जो है खेत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन कुछ कीट जो उन फसल में लाग जाते हैं और पहले से उमर रहते तो उनके लिए जरूरी है कि हम सब पहले से जुताई करें। और जुताई में जब गहरी जुताई कर देते हैं पानी भर जाता है पलटवार हो जाते हैं माटी के तो वो का होते कि माटी भुरभुरी हो जाती है पहली बात तो। और दूसरी बात उमन जो है हम खाद जो है डाल देते हैं अपने घूरे खाद डाल देते हैं तो वो खेत जो है पोषक तत्व से भरपूर हो जाता है,
1: बिल्कुल ताकतवर हो जाते हैं खेत में, बिल्कुल उर्वरा शक्ति एकदम भरपूर हो जाती है।
0: हाँ भैया, तो ये सब जो है और ये पता चल जाता है जब माटी जांच कराए रहते तो यू पता चल जाता है कौन चीज की जरूरत है, कौन चीज अपने खेत में ज्यादा है, कौन चीज की कमी है, वह के अनुसार ही हम खाद पानी डाल रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो मान लो खाद मान जैसे जगह बहुत मैंने यूरिया खूब इस्तेमाल
0: करते हैं
1: तो जब पहले से पता चल जाए कि हाँ इमा जो है यूरिया डाले का है, कितनी मात्रा में डाले के चाहिए, खेत का कौन चीज की जरूरत है, तो वही हिसाब से फिर उनका वही में डाला जाता है।
0: बिल्कुल भैया, तो यही वाली जो है हम सबका यू चाहिए कि पहले खेत का जुताई कर ले, गहरी जुताई करे के बाद जो है जब सिंचाई हुए तो उमा जो है सारी चीजें हो जाई हैं। और अभी से हमें जब धान का फसल लगाओ का है अब ये समय आई जाए धीरे धीरे, तो उसके पहले हम सबका जरूरी है कि अपन माटी जांच करा लो और खेत के गहरी जुताई करा ली जाए ताकि जो है अपन खेत पूरी तरह बढ़िया बन जाए, उर्वरा जो है शक्ति वाला हो जाए ताकि जब फसल लगाई धान के ना तो बढ़िया फसल लहलाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर अपन अच्छी तैयारी हो जाते अच्छी तैयारी ही अपने जो काम की जाते है वही के सफलता के शुरुआत हुए से शुरू हो जाते
0: हैं। और जुताई करे से यू रहते में खरपतवार भी नष्ट हो जाती, जो खरपतवार रहती वह तरीके से वो नष्ट हो जाती। और जब भाई कीट रोग और चीज के बाद गिन जाते ना तो ये समय देखो अपने खेतन में जायद के फसल लगभग है ना। और वही में है मक्का की फसल।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल, मक्का की फसल जब है तो मैं जब भाई भुट्टा तभी आए जब हम अच्छे से देखभाल
1: अच्छे से देखभाल की जाए, वही माँ अच्छे से जो है वही के खाद पानी की व्यवस्था की जाए। और साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है बहनी कि वही का विशेष तौर पर देखभाल करने की जरूरत है, कोनो रोग दोख लागत हुए, कोनो किरवा ओरवा लागत हुए तो वहू से देखभाल करके वहू से बचाव करब जरूरी
0: है। देखो हम सब तो तैयारी कर लेते हैं भैया और देखभाल भी करते हैं भाई, अपने सब काम ही यही है। लेकिन कि भैया जब कोनो विशेषज्ञ अपनी बैठक में आके बता देते हैं कि जो है कैसे उसका देखभाल करेगा तो वो हमें जो है एक ठोस जानकारी मिल जाती है।
1: एकदम सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब देखो अपनी बैठक में आज हम जो है जो विशेषज्ञ के अलावा है वही बताई है मक्के की फसल में कीट रोग प्रबंधन, यह विषय पे जानकारी दे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव भैया।
0: अच्छा,
1: और इनसे बतकही करी है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: अच्छा भैया, तो सुना जाए।
1: बिल्कुल सुना जाए, पंच भाई भी सुने।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय गर्मी के मौसम में जहां मक्के की फसल आपके खेत में है तो कुछ हानिकारक कीट और बीमारियां लगती हैं,

0: उनका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर डीके श्रीवास्तव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय जहां जायद मक्के की फसल खेत में है तो कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
1: किसान भाइयों और बहनों को धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का चुनाव आज हुआ है। मक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और आज के वर्तमान समय में मक्का की डिमांड बहुत ही बढ़ती जा रही है, इसकी वैश्विक पहचान बनती जा रही। लेकिन जिस तरीके से इसका उत्पादन हो रहा है, उत्पादन के साथ इसमें कीटों और रोगों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे किसान भाइयों और बहनों का जो खेत में खड़ी फसल है वो प्रारंभिक चरण से ही लगातार उसका नुकसान होता जा रहा है। अभी फिलहाल खेत में हमारा मक्का खड़ी है और जो समस्या आपको सामने आती दिख रही है या आ रही है, उसमें सबसे प्रमुख उसके कीट और रोग होते हैं
0: जी।
1: तो
0: नियमित रूप से निगरानी करते रहें किसान भाई बहन।
1: किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर रोग और कीट का नियंत्रण करना है तो नियमित रूप से अपने खेत का बिल्कुल निगरानी करें। कम से कम हफ्ते में दो बार उसकी निगरानी करेंगे तो उसमें रोगों और कीटों की जो पॉपुलेशन है, जो प्रारंभिक चरण है, वो आपको दिख जाएगी सामने और आप उसी अवस्था में ही उसका कंट्रोल कर सकते हैं।
0: यानी प्रबंधन करना है तो मित्र कीटों को बढ़ावा भी दें और नियमित निगरानी करते रहें ताकि जो दुश्मन कीट हैं, बीमारियां हैं, उनका प्राकृतिक रूप से प्रबंधन भी होता रहे।
1: बिल्कुल, मैं किसान भाइयों बहनों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हर चीज़ की दवा आज बाजार में उपलब्ध है, लेकिन कोशिश करिए जितना भी हम कीटनाशी फफूदनाशी का प्रयोग करेंगे, और मक्का ऐसी फसल है कि जो खेत से अगर हम सीधे उसका हार्वेस्ट करते हैं तो सीधे हमारे भोजन में सम्मिलित होता है, चाहे वो भुट्टे के रूप में हो चाहे दाने के रूप में हो। तो नियमित अगर हम उसकी निगरानी करते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे खेत में हमारे कीटों और रोगों की तीव्रता क्या है, हमारे मित्र कीट कितने हैं, शत्रु कीट कितने हैं। हम उसको लगातार जब मॉनिटर करके उसको मित्र कीटों शत्रु कीटों को बढ़ावा देंगे तो हमारी जो बीमारियां या कीट हैं स्वतः ही धीरे धीरे कम होती जाएंगी।
0: डॉक्टर साहब, हानिकारक कीटों की बात करें तो इधर कुछ वर्षों में मक्के की फसल में फाल आर्मी वर्म जो कीट है, ये एक विदेशी कीट है, इसकी समस्या काफी बढ़ी है।
1: देखिए, फाल आर्मी वर्म बहुत ही प्रमुख कीट है हमारे मक्का के उत्पादन के लिए। इसमें जो हमारा कीट है ये बहुत ही विनाशकारी और तेजी से फैलने वाला कीट है। जो इसका लार्वा होता है ना, जिसको कैटरपिलर कहते हैं गांव में कभी,
0: यानी सूंड़ी,
1: तो उसको पत्तियों पे, तने पे, भुट्टे के, फसल के हर चरण में ये नुकसान करता है और गंभीर नुकसान करता है। और इसका लक्षण आप किसान भाई हमारे कैसे खेतों में देखेंगे कि पत्तियों में और शाखाओं में सुराख हो जाता है, और वो जैसे खिड़की होती है, खिड़की नुमा लक्षण, कटी फटी पत्तियों की किनारियां और सूंड़ी की जो मल होती है वो स्पष्ट रूप से हमारे पत्तियों और तनों पे दिखाई देती है।
0: और यही मूल पहचान है
1: कि आपके खेत में फाल आर्मी वर्म का अटैक हो चुका है।
0: तो अगर नुकसान का स्तर अधिक है, शुरुआत में करें क्या इसके प्रबंधन के लिए?
1: देखिए, मैंने पहले ही अपने भाइयों और बहनों से हमने अनुरोध किया है कि अगर हमें केमिकल का, पेस्टिसाइड का यूज करना है तो वो विषम परिस्थिति में ही करें। सबसे पहले हम लोग उसको खेतीगत नियंत्रण, जिसको कहते हैं, हम अपने खेतीगत नियंत्रण में
0: यानी कर्षण क्रियाओं
1: को हम अपनाएं पहले, उससे भी हम 50% का जो है उससे नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे हम समय पर बुआई कर दें, खेत में खरपतवार न रहने दें, फसल के अवशेष इकट्ठा करके उसको नष्ट कर दें, वहाँ छोड़े नहीं, और फसल चक्र अपनाएंगे तो इससे 50% का हमारा जो है नियंत्रण इस कीट का विशेषकर हो सकता है।
0: लेकिन इस समय चूंकि फसल खेत में है तो इस समय कौन कौन से उपाय हो सकते हैं?
1: इस समय की जो निगरानी करते समय हमें एक चीज, यांत्रिक नियंत्रण हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे अगर हम खेत में जा रहे हैं, हमको अंडे या सूढ़ियाँ दिखाई दे गई तो उनको हम इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दें। और हमारे पास जिसे फेरोमोन ट्रैप होता है, प्रपंच जिसको कहते हैं, तो प्रपंच का भी प्रयोग,
0: यानी फसल प्रपंच,
1: क्योंकि ये कीड़े उस प्रपंच से आकर्षित होते हैं, तो अगर हम एक एकड़ में दो प्रपंच का प्रयोग करें तो ये कीड़े उससे आकर्षित होंगे और उससे हमें दो चीज़ें होंगी, एक तो कंट्रोल भी होता है, दूसरे हमें उस खेत में उसकी कितनी सीवियरिटी है, कितनी अधिक मात्रा में, इसका भी आकलन हम कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से आगे का भी हम योजना तैयार कर लेते हैं कि इसको हम कैसे खत्म।

0: करेंगे।
1: अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो कोई सुरक्षित रसायन जिसका प्रयोग कर सकते हो?
0: जी, रसायन का प्रयोग करने के पहले हम जैविक नियंत्रण की बात करेंगे। किसान भाइयों बहनों, अगर आपके पास आपके क्षेत्र में उपलब्ध है तो बैसिलस थुरुजेंसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसको बीटी कहते हैं। अगर बीटी का कहीं आपको उपलब्धता हो तो 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से बीटी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: यानी 200 लीटर पानी में घोल बना,
0: 200 लीटर पानी में 400 ग्राम का घोल बना के इसको स्प्रे कर सकते हैं। या तो एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, जो वहीं के ही सूढ़ी से उनको वायरस मिलता है,

0: वर्म का बहुत ही प्रभावी नियंत्रण हो जाता है।
1: और सुरक्षित रसायनों में?
0: सुरक्षित रसायनों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम क्लोरोएंट्रा प्रिपोल या एमामेक्टिन बेंजोएट,
1: निल्यूप्रोल,
0: हाँ, या एमामेक्टिन बेंजोएट, स्पाइनोटोराम, ये दवाएं अलग अलग फार्मूलेशन में आती हैं। जैसे क्लोरेंट्रा जो है 18.5% में आती है, अगर इसका प्रयोग करना है तो 60 से 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से हम 200 लीटर पानी में घोल के इसका प्रयोग करते हैं, जिससे इसका प्रभावी नियंत्रण होता है।
1: और जो अन्य रसायन है?
0: अन्य रसायन भी अलग अलग प्रतिशत के आते हैं। जैसे एमामेक्टिन 5% का आता है, उसको 80 ग्राम प्रति एकड़, या स्पाइनोटोराम 120 ml प्रति एकड़, नोवल यूरान 300 ml प्रति लीटर, या इंडो अस्कार जो है 200 ml
1: पर
0: 200 लीटर की दर से, प्रति एकड़ की दर से इसको हम छिड़काव करते हैं। छिड़काव में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमेशा दोपहर के बाद जब धूप का असर कम हो उस समय ये छिड़काव करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जायद मक्के में तना मक्खी का भी प्रकोप होता है?
0: तना मक्खी दूसरी महत्वपूर्ण जो है इसकी कीट होते हैं। इसमें जो इसका वयस्क अवस्था होता है वो थोड़ा गहरे भूरे रंग का, धूसर रंग का होता है, और इसका जो सूंड़ी होती है अंकुरण के तुरंत बाद फसल पर ये आक्रमण कर देते हैं, जिससे मक्के की फसल की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी में ही भारी नुकसान किसान भाइयों बहनों को होता है।
1: तो इसकी पहचान कैसे हो?
0: इसकी जो सूंड़ियाँ होती हैं, जो कोमल पत्ते होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं, उनको खा के उनका भोजन करते हैं और फिर तने के अंदर छेद करके घुस जाते हैं। ये जब पौधा हमारा पीला पड़ने लगता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है और लास्ट में वो सूखने लगता है, डेड हर्ट टाइप बन जाता है कि अगर आप ऊपर से उसको खींचेंगे
1: तो निकल जाएगा,
0: पूरा शाखा उसकी हाथ में आपके निकल के आ जाएगी, तो ये उसके विशेष लक्षण होते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके लिए यांत्रिक और जैविक उपाय कौन कौन से हैं?
0: देखिए, जो हमने खेतीगत नियंत्रण बताया था, यांत्रिक नियंत्रण बताया था, उसमें उसी तरीके से आप खेत की लगातार निगरानी करते रहें, हमेशा ट्रैप का प्रयोग करते रहें। निगरानी से आपको लगातार ये पता चलता रहेगा इस कीट का आक्रमण का कितना जो है सीवियरिटी है, और आप उसको अलग से भी हाथ से तोड़ के इकट्ठा करके नष्ट कर देंगे तब भी आपका जो है,
1: यानी इकट्ठा कर लें,
0: हाँ, इकट्ठा करने के बाद ही उसको
1: जमीन में गाड़ दें,
0: गाड़ दें अथवा जला दें
1: जी,
0: मतलब उसके अंडे बच्चे कहीं सर्वाइव ना कर पाए तो ये दूसरी जगह फैलता भी नहीं, खेत में भी बच जाता है। रही बात अगर हम उसके बाद भी हमें ये परेशानी हो रही है कि हाँ हमारे वहाँ कीट की खेतों में बढ़ रही है, तो उसमें हम जो है रासायनिक उपचार जरूर करते हैं। जो अब तो बीज दर की बात हम करेंगे नहीं कि हम उसमें बीज की बुआई के समय की बात करना चाहिए था, लेकिन खड़ी फसल में क्लोरेंट्रा लगभग 100 ml पर एकड़, या साइंट्रा निपोल 300 ml प्रति एकड़ की दर से इसको पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है।
1: यानी तना मक्खी पर भी क्लोरेंट्रा प्रभावी है?
0: हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखना है हम किसान भाइयों और बहनों कि जिस दवा का उपयोग आप एक बार छिड़कने में कर रहे हैं, अगर दोबारा डालने की उसकी कोई उम्मीद है तो 15 से 20 दिन के अंतराल पर इस दवा को आप अवश्य चेंज कर दें, क्योंकि लगातार एक ही रसायन का प्रयोग करना उचित नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां भी लगती हैं, जैसे झुलसा है, चारकोल गलन है और अफ्लाटॉक्सिन भी है।
0: हाँ, ये देखिए, मुख्यतः इसमें 3 से 4 बीमारियां होती हैं, लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान वाला बीमारी है इसको सीस ब्लाइट कहते हैं। ये प्राय 40 से 50 दिन के जो फसल हमारी होती है उसके ऊपर दिखाई देता है, और उसमें भी जब हमारे किसान भाई नाइट्रोजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और पौधों में हरितमा ज़्यादा रहती है तब इसका प्रकोप ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और वैसे तो इसका प्रकोप, जो कि ये फफूंदी जनित रोग है, तो ये जो है अंकुरित अवस्था से ही ये इसका अटैक हो जाता है, लेकिन अगर हमारा पौधा स्वस्थ है, लगातार निगरानी भी कर रहे हैं, बैलेंस हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, संतुलित फर्टिलाइजर दे रहे हैं, तो इसकी संभावना कम होती है या इसका क्षति स्तर कम होता है, जिससे हमें नुकसान नहीं होता है।
1: डॉक्टर साहब, इसका प्रबंधन कैसे हो?
0: इसका प्रबंधन आप, फिर मैं आग्रह करूंगा कि हाँ, आप निगरानी करें, अगर जो रोगी पौधे आपको दिख रहे हैं तो उसको उखाड़ के इकट्ठा कर लें और उसको जमीन में गाड़ दें या उसको जला दें। इसके अलावा अगर रासायनिक उपचार करने की कोई ऐसी नौबत आती है तो इसमें डिफेनोकोनाजोल 11.4% या एजॉक्सी स्ट्रोबिन 18.2% 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करें, जितना भी पानी लगता है, 200, अगर एक एकड़ की बात करेंगे तो 200 से 250 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, प्रति 200 लीटर की दर से आप इसका छिड़काव करेंगे तो इसका कलेक्शन हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे

0: सवाल होंगे मक्के की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: किसान भाइयों और बहनों, मेरा मोबाइल नंबर मुझे संपर्क करने के लिए 9760551333 9760551333 9761 3333
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का मक्के की फसल में कीट रोग प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: मेरा बस एक ही अनुरोध है कि जितना हो सके आप रसायन का कम से कम प्रयोग करें और आपकी थोड़ी सी मेहनत हमारा ये जो स्वस्थ भोजन होगा, स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा। आपकी मेहनत एक अच्छी पहचान आपके गांव की, आपके खेत की, आपके प्रदेश की बन सकती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वस्थ समाज दे सकते हैं।
0: यानी किसान भाई बहन नियमित रूप से खेत की निगरानी करते रहें और व्यवहारिक उपाय में जो यांत्रिक और जैविक उपाय हैं उनको नियमित रूप से करते रहेंगे तो जो भी कीट रोग हैं उनका प्रबंधन हो जाएगा। डॉक्टर DK श्रीवास्तव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और मक्के की फसल में कीट रोग प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हिमांशु भैया,
3: हाँ सर लवेनी,
2: देखो कितनी बढ़िया जानकारी रही ना मक्के की फसल में कीट रोग प्रबंधन, और जो है पे जानकारी दी डॉक्टर धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव भैया और उनसे उतने नीचे तरीके से बातचीत करें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों पंच का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहनी बहनी देखो जो है ये तो अपन बात कही रही जो है जिससे बड़ी नीक जानकारी मिली है। अपन खेती पाती ऐसे चलत रहा है, ऐसे काम धाम करत रहा है
2: हाँ।
3: और लेकिन कहा है कि अब कुछ गौनाई के मन का सुने के मन कह रहा
2: हाँ,
3: है।
2: हाँ भैया मन का कह रहा है, जो काम करो ना तो यही मन कहा था कि बाजा जो है अपने खेत खलिहान मेड़ पर रख लियो हाँ। और अपन काम करा करो और ये संजा मेरी काम करके आओ तब वो सुन है ना,
3: बिल्कुल
2: तो कोनो जब गौने लेके आए हैं तो सुनवा दे।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो हम वो सुनिए और सब पंचे सुने दादरा, सब पंचे सुने दादरा अरे बदरिया रे के बोल है और जो है स्वर है सतीश चंद्र श्रीवास्तव व उनके साथिन के,
2: सुना जाए भैया
3: तो सुन लीजिए।

0: वाह हिमांशु भैया, कितनी बढ़िया गौने रही चांद कबले लुकैबा बदरिया में, और स्वर रहा सतीश चंद श्रीवास्तव व साथी भैया का। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद भैया।
0: भैया। और भैया मौसम का हाल बता दें जाए।
1: हाँ बिल्कुल, जो हमका मौसम की जानकारी मिली है वो मिली है भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से। तो बहनी हमका जो है 7 दिन के मौसम की जानकारी जो मिली है वो हम बतावा चाहित है। आज यानी कि 12 मई 2026 कल से लेके 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18
0: अच्छा
1: माँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज और काल 12 और 13 माँ कहूँ कहूँ बौछार पड़े के संभावना है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहूँ कहूँ हल्की बौछार पड़े के संभावना है।
0: भैया
1: बाकी के दिनन में 14 तारीख से लेके 14, 15, 16, 17, 18 पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ कोनो चेतावनी नहीं ना, मौसम शुष्क रहे के पूरी तरह के संभावना है।
0: अच्छा भैया, तो
1: ये तो रही मौसम की जानकारी बहनी,
0: हाँ
1: और
0: भैया,
1: आपका जानकारी लेके आए हुए।
0: भैया हम एक सूचना लेके आए हैं,
1: हाँ तो
0: है
1: नहीं
0: ना।
1: बता।
0: पहले एक सूचना बता दीजिए भैया। सूचना है शारदा सहायक पोषक नहर के बंदी के है, और इमा यू है कि जो है चौधरी चरण सिंह शिरजा बैराज बहराइच लिंक चैनल चौधरी सिंह शारदा बैराज से पोषक नहर, और पोषक नहर से जो जनपद में निकले वाली मुख्य नहर है राजबहा, और वार्षिक निरीक्षण अनुरक्षण के कार्य हेतु कृषि निदेशक कृषि भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ की सहमत के उपरांत खरीफ फसल 1434 फसली 2026-27 में शारदा नहर पोषक नहर शीर्ष से 16 और 17 मई 2026 के मध्य रात से बंद की जाए, और भैया ये 14 जून 2026 का पुलह चलाई जाए, है ना। और यहमा जो है पोषक नहर से निकले वाली नहर जो प्रणाली है उमा जनपद सीतापुर बाराबंकी लखनऊ रायबरेली प्रतापगढ़ प्रयागराज जौनपुर सुल्तानपुर अयोध्या अंबेडकर नगर आजमगढ़ मऊ बलिया गाजीपुर अमेठी और वाराणसी जनपद के शारदा प्रणाली से संबंधित सिंचाई करने वाली नहर में जलापूर्ति जो है बाधित रही। भैया ये तो रही सूचना, है ना। और अब जो है अपने कल के बैठक की माँ का हुए यो बता दें जाए, है ना।
1: बिल्कुल,
0: और कल है भैया जो है बुधवार,
1: बुधवार।
0: और बुधवार के दिन होता है हेलो किसान, किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम। और कल कर विषय हुए जायद फसलों में सामयिक देखभाल, ग्रीष्मकालीन जुताई और हरी खाद उत्पादन, खरीफ उत्पादन की योजना और तैयारी। विशेषज्ञ हुए हैं डॉक्टर पंकज त्रिपाठी कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश से, और कार्यक्रम के प्रस्तुति और संचालन हुए डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के। और भैया जो फोन नंबर होता है ना वो होता है 0522 22 38 825, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और भैया जो है अब जो बैठके में अपने कार्यक्रम होता है उकर प्रतिक्रिया दे खातिर जो अपन पंच सुना थे वह चिट्ठी पाती भी लिखे, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चिट्ठी पाती लिख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है बहनी कि देखो इंटरनेट के जमाना चल रहा है, आधुनिक
0: हाँ
1: युग में
0: भैया बिल्कुल,
1: मेल भी भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, तो हम दोनों जानकारी दे देते हैं।
0: हाँ भैया,
1: तो अगर पंच भाई

0: ईमेल भेजा चाहें, ईमेल से अपन फीडबैक प्रतिक्रिया देवा चाहें, तो हमारे ईमेल पता नोट के लिए farmandhome@gmail.com। एक दोबारा बताए दे थे farmandhome@gmail.com। यही पे अपन जो है प्रतिक्रिया अपन सुझाव दे सकते हैं। और यही के साथ साथ अगर को चिट्ठी पाती लिखा चाहे भी नहीं तो वही के खाते जो अपन पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी या कार्यक्रम हेलो किसान द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ और पिन कोड जोन है वो है 22601।
1: तरह भैया कार्यक्रम का पता एक बार और बता दीजिए, लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है भैया 22601। और भैया आप चला जाए घर की ओर तो पंच से ले जाए आज्ञा।
0: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित

0: सूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में FIR दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। PAC और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय

0: और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
3: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबब जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
5: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं शान और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में गाए गीत से। फिल्म का नाम है दिल चाहता है।

जिंदगी न मिलेगी दोबारा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। इस गीत को स्वर दिया है फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल, मारिया डेलमार फर्नांडिस ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप जो गीत सुन रहे थे उसे हमने लिया था फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। आवाज़ें थीं फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल और मारिया डेलमार फर्नांडिस की। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फिल्मी गीतों की सौगात लेकर हम फिर हाजिर होंगे आज रात 8:30 पर। कार्यक्रम होगा चित्रपट से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
1: प्यारे श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। श्रोताओं कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ दोस्तों, 8826224477। ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ऐ परिंदे यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। दोस्तों उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सबके जीवन में दुख या परेशानी नहीं होती। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम निराशाओं में, परेशानियों में, उदासी में पड़ जाते हैं, पर आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आप अपनी आशा कभी नहीं छोड़िए। तो आशा बड़ी बलवान होती है, उम्मीद के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने भविष्य को आशाओं के साथ

जोड़े बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, बिना आशा और भरोसे के कुछ भी करना संभव नहीं। जो आशा में विश्वास करता है उन्हें उपलब्धि की राह मिल ही जाती है। आशा या उम्मीद ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। उम्मीद जीवन जीने का सहारा है। इसके जरिए बड़ी बड़ी जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उम्मीद ही डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? दरअसल जिंदगी में परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती। हमने जिस चीज या जिस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं होता, वो अचानक एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसी कठिन घड़ी में खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ही अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या है ये आशा? हम रात को सोते हैं इस उम्मीद से कि सुबह जीवित उठेंगे, ये है आशा। मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि इसका फल मिलेगा, ये है आशा। हम विवाह बंधन में बनते हैं कि हमारा जीवन अच्छा खुशहाल बीतेगा, ये है आशा। किसी महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खो देना होता है। उम्मीद जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनका नाम है योगेश। योगेश जी को जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां शायद वो हार मान लेते, पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई, खेत तैयार किए, बीज का इंतजाम किया। पर दोस्तों, फसल उगने का इंतजार तो उन्होंने किया और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया और पानी खेत पर पूरी रीति से भर गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उनकी सारी फसल सड़ गई। सोच के देखिए क्या बीती होगी उन पर, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कई लोग ऐसे समय पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं और दुख में गम में डूब जाते हैं। पर ऐसे समय में जो हिम्मत से काम ले और अपनी आशा को कसकर पकड़ के रखे, अपनी उम्मीद का दामन थाम ले, वही जिंदगी का असली विजेता है।

0: ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी ऐना आपको एक और कहानी बताएंगी।
1: जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ बाप का इस तरह से चले जाना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और दुख ने उसको अंदर ही अंदर घुटन में डाल दिया था। श्रोताओं, उसका दुख और उसकी घुटन उसके अंदर आत्महत्या का विचार ले आई और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और एक दिन जब वो आत्महत्या करने को जाने वाली थी, उसके दादाजी रेडियो पर एक कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके दादाजी को रेडियो सुनना बेहद पसंद था। पूजा बस घर के कुछ काम निपटा रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो इसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी रेडियो पर कार्यक्रम उड़ान शुरू हुआ और उस दिन उस कार्यक्रम का विषय था आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। और ये शब्द जैसे ही पूजा के कान में पड़ा, उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और फिर आगे कार्यक्रम में बताया गया कि आत्महत्या कैसे एक गलत फैसला है और आत्महत्या करने वाले के परिवार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जब ये सब पूजा सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने

लगी और उसको अपने बूढ़े दादा और दादी का चेहरा नजर आया। पूजा ने एकदम अपना फैसला बदल लिया और उसने सोचा कि जो तकलीफ उसको हुई है उसके माता पिता के जाने के बाद वो कैसे अपने दादा दादी को ऐसा दर्द दे सकती है। पूजा उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से उसने वायदा किया कि वह गलती से भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब से वो अपने दादा दादी की देखभाल करेगी और अपनी जिम्मेदारी को उठाएगी।

दोस्तों, देखा आपने, जिस चीज ने योगेश जी को हार नहीं मानने दी, उनको टूटने नहीं दिया, वह थी उम्मीद, आशा, होप। जी हाँ, पूजा को उस प्रोग्राम से जो मिला वह थी आशा। बस हमको भी यही करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने जीवन में आशा को पकड़ कर रखना है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक बार स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने जब इंग्लैंड से युद्ध किया तो वह युद्ध हार गया और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। पर राजा ने अपना राज्य वापस पाने को बार बार युद्ध किया, पर वह बार बार असफल होता गया। 14 बार उसने युद्ध लड़ा पर नहीं जीत पाया और भाग कर एक गुफा में छिप गया। पर दोस्तों, वहां उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती, कभी वह ऊपर चढ़ते वक्त गिर जाती और कभी जाल बनाते हुए गिर पड़ती। राजा ने गौर किया कि ऐसा लगभग 20 बार हो गया था और आखिर में मकड़ी कामयाब हुई। तभी राजा ने अपनी निराशा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, मेरे तो अभी 7 प्रयास बाकी हैं। और राजा ने फिर से उम्मीद का दामन थाम लिया और फिर खुद को तैयार किया और जब फिर युद्ध किया तो वह जीत गया, उसको उसका राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम से यही उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो असफलता भी सफलता का रास्ता आपको दिखा देती है। कई बार बच्चे स्कूल में फेल होने पर निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं। कई बार लोग अपने व्यापार में सफल ना होने पर अपना प्रयास बंद कर देते हैं। कई बार किसान भाई फसल खराब होने पर निराश होकर गलत फैसले कर लेते हैं, पर बस यही नहीं करना है दोस्तों। जबकि ये ऐसा पल है जब आपको मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ के रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है और प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर बात के पीछे भलाई होती है, पर तब जब हम अपनी आशा नहीं खोते, जब हम उम्मीद से गहरा रिश्ता जोड़ के रखते हैं। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा कि जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का घड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया और हालात कहते हैं हार मान लो, तब यही आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार और प्रयास करो। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस अपने जीवन में आशा का, उम्मीद का दामन पकड़ के रखिएगा। जी हाँ, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं

तो दोस्तों, आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव, विचार, सवाल या आपके परामर्श हमें लिख सकते हैं। तो एक बार फिर हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, पर याद रखिए, अपनी आशा के दामन को पकड़ के रखिए, क्योंकि जिंदगी में आशा ही हमें आगे लेके जाती है। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं एक व्यंग वार्ता जिसका विषय है हवा में फड़फड़ाते शब्द। वार्ताकार हैं श्री अनूप मणि त्रिपाठी।
1: साधो, एक बड़े से सभागार के मंच पर बहुत सारे कवि सजे धजे जमे हुए हैं। श्रोता कसमसा रहे हैं, वे रह रहकर हिल डुल रहे हैं, अर्थात जीवित हैं। यह कविता वाचन का द्वितीय सत्र चल रहा है। कवि जप रहे हैं, शब्द पक रहे हैं और सुनने वाले तप रहे हैं। कविता की नई जमीन बन रही है। मंच से संचालक द्वारा यह बात बार बार कही जा रही है, लेकिन कुछ कवि उत्साह के अतिरिक्त में जमीन से पहले पर्वत पठार कछार बनाने पर तुले हुए हैं। कवि दूर दूर से आए हैं और कविता को दूर तक ले जाना चाहते हैं, मगर उनको सुनकर लगता है कि किंचित कविता उनसे दूर जाना चाहती है। मैं कोई कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रोताओं का हाल देखकर बोल रहा हूँ। देखो ना, देखो, अभी जो कवि पढ़ रहा है वह निबंध को गा गा कर पढ़ रहा है, जिसके बारे में संचालक ने बताया था कि हाल ही में उनकी कविता की 13वीं किताब आई है। उनको सुनते हुए बगल में बैठा व्यक्ति कह रहा है कि इससे अच्छा तो अखबार ही पढ़ लेते। साधो, जरा इस गीतकार की आंखों में तो देखो, सजल है। ना ना ना ना, वो हूट नहीं हुआ है। एक श्रोता ने मुखड़ा सुनने की फरमाइश कर दी है। अब गीतकार क्या जाने, श्रोता का गला भरा हुआ है। कार्यक्रम के मध्यांतर में भोजन को चबा कर नहीं दबा कर खाया है। सुस्वादु भोजन, एसी की ठंडक,

इस पर दोपहरिया आ गई झपकी, निकल गया मुखड़ा। मुंह पर हाथ फेरते हुए श्रोता का कर्तव्य बोध जागा, कर दी फिर मुखड़े की फरमाइश, जैसे भोजन के समय की थी रसगुल्ले की ख्वाहिश। गीतकार ने श्रोता के मुखड़े पर मोहित होते हुए पुलकित भाव से अपने गीत का मुखड़ा दोबारा सुनाया। मुखड़ा सुनने के बाद श्रोता के मुंह से दाद की जगह डकार निकली। साधो, बड़ा कवि हूट होने से नहीं डरता, महान कवि सूट होने से नहीं डरता। कवि की एक श्रेणी और है, जानो। एक होता है घुटा हुआ कवि, वह अपने निर्धारित समय से

बड़ा कवि हूट होने से नहीं डरता, महान कवि सूट होने से नहीं डरता। कवि की एक श्रेणी और है, जानो। एक होता है घुटा हुआ कवि, वह अपने निर्धारित समय से डेढ़ गुना दुगुना जितना मन करे समय लेता है। वह समय का कोटा नहीं देखता, वह मात्र अपनी कविता की मात्रा देखता है। वह जानता है उसके लिखने से कहीं कुछ बदलने वाला नहीं है, अपनी कविता से वह स्वयं नहीं बदला। इसलिए वह इस जड़ समाज को कविता के रूप में अपनी खरी खोटी सुना सुनाकर बदला लेता है। वह अपनी सारी घुटन उस समय ही निकाल देना चाहता है, भले ही सुनने वाले का दम क्यों ना घुट जाए। इससे अलग एक होता है सिर्फ कवि, वो कवि निर्धारित समय में ही काव्य पाठ कर चुपचाप अपना आसन ग्रहण कर लेता है। हालांकि इस दर्जे का कवि हिंदी साहित्य में मिलना पुच्छल तारे जैसी एक दुर्लभ घटना मानी जाती है। साधु कवि की एक कोटी और है। पहले तो वो जिनकी कविता आकार में इतनी बड़ी होती है कि अंतर वस्तु उसके अंदर दब के मर जाती है। दूसरे वो होते हैं जो आकार में छोटी कविता लिख के भी बड़ी कविता लिखते हैं। साधु अभी जो कवि आया है उसके गले में बहुत जान है, वह चीख रहा है, अच्छा चीख रहा है, लगातार चीख रहा है। वो भूल गया कि यह कवि सम्मेलन नहीं है, यहाँ ना चीखना चलेगा ना चुटकुला। मुझे क्या लगता है कि मंच को रैली का मैदान समझ रहा है। वो चीख रहा है मगर उसकी कविता खामोश है। ऐसे में रूमी की एक बात याद आती है, अपने शब्द उठाओ, अपने शब्द उठाओ, आवाज नहीं ये बारिश है जो फूल उगाती है, गरज नहीं। साधु संचालक महोदय फरमाते हैं कि ऐसे सुधी पाठकों के लिए भी तालियां होनी चाहिए जो इतनी तन्मयता के साथ कविता सुन रहे हैं। दरअसल इस प्रशंसा के मूल में चापलूसी छुपी हुई है। संचालक के मन में खटका बना हुआ है कहीं बचे खुचे श्रोता भी सभागार से निकल ना जाएं, जबकि संचालक जानता है और बखूबी जानता है, वह अनुभवी भी है और उसके साथ कवि भी है। वह जानता है कविता सुनने वाले ये जो बचे खुचे श्रोता हैं कुर्सी छोड़कर जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रेक के आयोजकों द्वारा उपलब्ध कराए गए भोजन को उन्होंने खींच कर इतना खा लिया है कि उनसे अपनी सांस तक नहीं खींची जा रही। सुधी श्रोताओं ने तो लंच के बाद सीधे अपने घर की राह पकड़ ली। अभी सभागार में जो कुछ श्रोता दिख रहे हैं उसके लिए कविता के स्तर से ज्यादा उदरस्त की गई पूड़ियों की संख्या जिम्मेदार है। इतना ठेलने के बाद सुधी श्रोता को सुधी कहा। साधो कविता सुनते सुनते मैंने भी कविता लिख मारी है। सुनो, कविता की एक और किताब आने से, कविता की एक और किताब आने से खुश है कवि, मगर शब्द कतई खुश नहीं। उनको शिकायत है, उनको शिकायत है, वे चाहते हैं कि कविता से कभी तो कवि भी बड़ा दिखाई दे। साधो सभागार में एक बच्चा भी है जो बाल सुलभ हरकते कर रहा है। कविता के बीच उसकी निरंतर आवाजाही बनी हुई है। कवि की कविता से ज्यादा वह ध्यान आकृष्ट कर रहा है। बच्चे की गणित अच्छी है, इसका प्रमाण यह है कि उसने अपने पापा से जोर से अभी अभी कहा है कि पापा पापा अब बस दो पॉइंट सुनने को बचे हैं, बस। उसने दो बार पापा पापा कहा और दो बार बस बस। बच्चे के इस बयान से सुनने वालों के होंठों पे मुस्कान तैर गई। साधो जब से ये मोबाइल आया है तब से बड़ी राहत है, कार्यक्रम के बीच में बजना शुभ माना जाता है। इधर कवि हाहाकारी समय के द्वंद का वर्णन कर रहा है तो उधर कई श्रोता फेसबुक पर अपने टाइमलाइन में निर्द्वंद विचरण कर रहे हैं। कवि मंच से कविता सुना रहा है तो नीचे एक युवा अपने मित्र को मैसेज कर रहा है। मैसेज देखिए क्या कर रहा, ज्यादा वाह वाह ना करो नहीं तो ये रात भर सुनाएंगे। उसके मित्र ने भी मैसेज का जवाब फौरन रवाना कर दिया। मुझे लगता है कि शायद ये तब से इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि कोई वाह वाह नहीं कर रहा है। किसी और के मोबाइल पर अभी ये संदेश टपका, व्यवस्थापक महोदय चाय की व्यवस्था है ना? जवाब आया, हाँ भाई ऐसी कविता के बाद तो चाय लाजमी है। साधो कविता के बीच एक कहानी सुनो। एक कवि जब ईश्वर के पास पहुंचा तो उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? तुम्हारा दिल बैठ गया था। उसे जवाब मिला, बैठने से मतलब सिंक कर गया था। मुझसे उम्दराज एक से बढ़कर एक खुसट कवि पड़े हुए हैं, मुझे क्यों उठाया? आते ही निंदा। खैर तुम्हारे अच्छे और महान विचारों के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है कवि महोदय। उसे बताया गया, कैसे कैसे इतने अच्छे और महान विचार छोटे दिल में कैसे समा सकते थे? कवि को जवाब

0: मिल गया था। साधो, कविता लिखी जाती रहेंगी, पाठ चलता रहेगा, मंच के आगे सम्माननीय जुड़ता रहेगा। कवि का वाचाल होना चलता है, मगर कविता का मूक होना अखरता है। वाक वाणी का अर्थ ही बोलना है, तो कवि के साथ कविता का भी बोलना जरूरी है। कविता मंचा सीन होने की चीज नहीं, कविता मंच से उतरकर जब सड़क पे आती है तो उसका सौंदर्य बोध कई गुना बढ़ जाता है। कवि महोदय, इससे पहले मैं उपदेशक बन जाऊं, अंतिम बात कहकर विराम लेता हूं। साधो, लिखकर डायरी के पन्ने फाड़ते रहो ताकि नया अध्याय लिख सको।
1: हवा में फड़फड़ाते शब्द, अभी आप ये व्यंग वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे श्री अनूप मणि त्रिपाठी। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये लखनऊ केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं कुछ भक्ति रचनाएं। आज के कलाकार हैं मेनका मिश्रा। तो आइए सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं मीराबाई की भक्ति रचना मेनका मिश्रा के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं मेनका मिश्रा के स्वर में। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज आइए करते हैं बदलापुर फिल्म के गीत से। आवाज है आतिफ असलम की।

शोर इन द सिटी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं श्रेया घोषाल और उनके साथी की।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना श्रेया घोषाल और तोची रैना के स्वर में ये युगल गीत। और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग और इस गीत को स्वर दिए हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर ने।

0: भाग मिल्खा भाग। अभी आप इस फिल्म का गीत सुन रहे थे श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज रात 9:30 पर फ़ोन इन कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। फिल्म संगीत का हेलो मेरी पसंद आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या प्रसारित हो गई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा

0: पुलिस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: आशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि

0: खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीसीआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
4: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल

se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। पहली से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियन स्याह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटन्स ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए के mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: conditions are likely to prevail over Gujarat, Maharashtra and West Madhya Pradesh till tomorrow. The Met Department has also forecast hot and humid weather over coastal Karnataka for tomorrow. In badminton, Indian shuttlers Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty began their Thailand Open 2026 tournament campaign with a hard-fought win in Bangkok today. Top seeds Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Indonesia's unranked pair of Putra Aryansyah and Bagas Maulana 21-19, 23-21, 21-10 to enter the men's doubles second round. In IPL cricket, Gujarat Titans were 158 for 4 in 19 overs against Sunrisers Hyderabad at Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Sunrisers Hyderabad won the toss and opted to bowl. And now before we end the bulletin, the headlines once again. CBI registers case in alleged NEET paper leak issue. Multiple suspects detained across several states. In Tamil Nadu, AIADMK splits. Bigger faction with 30 MLAs set to support Vijay's TVK government floor test tomorrow. Chief Justice of India Suryakant constitutes high-powered committee to prepare blueprint for modernization of courts across the country. India to host two-day BRICS foreign ministers meeting beginning Thursday to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Stock indices tank around 2% as elevated oil prices and US-Iran tensions dampen markets' confidence. And in badminton, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advance to second round of Thailand Open in Bangkok. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय की टीवीके हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात की हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अमरीका ईरान कशीदगी के सबब मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 2% की कमी आई है। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की टीम बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकजी तहकीकती ब्यूरो सीबीआई ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 के मुबैना पेपर लीक के मामले में एक केस दर्ज किया है। एजेंसी ने वजारत तालीम के आला तालीम के महकमे की जानिब से मौसूल एक तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर यह मामला दर्ज किया है। एक बयान में एजेंसी ने कहा है कि उसने नीट यूजी इम्तिहान मुनक़द किए जाने के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक हो जाने के मुतालिक इन खिलाफ वर्जियों के साथ एक FIR दर्ज की है जिसमें मुजरमाना साजिश, जालसाजी, मुजरमाना एतमाद शिकनी, चोरी और सबूतों को ख़त्म करने की कोशिश और इम्तिहानात में नामुनासिब तरीक़ेकार इस्तेमाल करने की रोकथाम से मुतालिक अवामी एक्ट 2024 के तहत खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। नई दिल्ली में नीट इम्तिहान की मनसूखी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के DG अभिषेक सिंह ने बताया कि NTA तलबा के लिए दोबारा इम्तिहान मुनाकिद करेगी और ये मुनसिफाना तरीके से मुनाकिद किया जाएगा और दोबारा इम्तिहान के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। हमने NTA के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे और हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे।
1: इससे कबल आज दिन में NTA ने इस माह की 3 तारीख को मुनाकिद किए गए नीट UG 2026 इम्तिहान को मनसूख करने का फैसला किया था।

0: इस मामले में राजस्थान पुलिस की खसूसी कार्रवाइयों से मुतालिक ग्रुप एसओजी ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। एसओजी ने कल एक मुबैना सरगना को जयपुर से हिरासत में लिया था, जिसका नाम मनीष बताया जाता है। इससे कबल जराए के मुताबिक राजस्थान पुलिस एसओजी ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें मुबैना साजिश रचने वाला सिकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार शामिल है। इसके अगले दिन नीट का इम्तिहान देने वाले 4 तालिबे इल्मों को भी गिरफ्तार किया गया था। नासिक पुलिस ने भी नीट पेपर लीक मामले में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया था। बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंत बिस्व सरमा ने मुसलसल दूसरी मुद्दते कार के लिए आसाम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा में वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया।
1: मैं श्री हेमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लाओ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: डॉक्टर शर्मा के हमरा कानून साज असेंबली के 4 अरकान ने भी काबीनी वुजरा की हैसियत से हलफ लिया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजना तनियोग, असम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, मुख्तलिफ मरकजी वुजरा और एनडीए की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत में 9 मुंतखबशुदा टीवी के हुकूमत के लिए कल अक्सरियत की आजमाइश से कबल सियासी सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीलियां रूनमा हुई हैं। एआईए डीएमके हुकूमत को हिमायत फराहम करने के मामले में 2 ग्रुपों में बच गई है। साबिक वजीर आला और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडापड़ी के पलानास्वामी की क्यादत वाले ग्रुप ने पार्टी के मेंबरान असेंबली को हिदायत दी है कि वो टीवी के हुकूमत की हिमायत न करें। सीनियर लीडर अग्री कृष्णामूर्ति ने खबरदार किया है कि किसी एमएलए ने पार्टी व्हिप की खिलाफ वर्जी की तो उसे पार्टी से बरतरफी का सामना करना पड़ेगा। इधर 30 मेंबरान असेंबली की हिमायत का दावा करने वाले एक और ग्रुप ने एसपी वेलुमणि को एआईए डीएमके की कानून साज पार्टी के लीडर के तौर पर चुन लिया है। ग्रुप के लीडरों ने साबिक वजीर सीवी शनमुगम की रिहायशगाह पर एक मीटिंग के बाद आज मीडिया से मुलाकात की। शनमुगम ने ऐलान किया कि यह ग्रुप अक्सरियती वोट के दौरान टीवी के हुकूमत की हिमायत करेगा। हुकूमत को अम्मा मक्कल मोनित्र कसगम के वाहिद एमएलए एस कामराज की हिमायत भी हासिल है, जिन्हें आज उनकी पार्टी ने बरतरफ कर दिया था। वजीर आला विजय कल से हिमायत करने वाली पार्टियों के लीडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि अक्सरियत साबित करने की आजमाइश से कबल अपनी हिमायत को मजबूत कर सकें। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मुल्क भर की अदालतों की जदीदकारी और इसकी खातिर 40 से 50 हजार करोड़ रुपए की हुकूमती मदद हासिल करने के लिए एक खाका तैयार करने की गरज से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। अदालतों के बुनियादी ढांचों से मुतालिक यह मुशावरती कमेटी हुकूमत की जानिब से मुसलसल माली मदद के जरिए अदालतों में बुनियादी ढांचे के हवाले से कमियों का इजाला करेगी। अवामी कामकाज से मुतालिक मरकजी महकमे के डायरेक्टर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल भी पैनल के मेंबरान होंगे। कमेटी को इस साल 31 अगस्त तक वजीर आजम की इक्तसादी मुशावरती कौंसिल के रुकन संजीव सानियाल को अपनी तफसीली मालूमात और रकम की जरूरियात दाखिल करने का काम दिया गया है। साइबर क्राइम से मुतालिक भारतीय तालमेल मरकज ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं ताकि साइबर नौइयत की इक्तसादी जालसाजियों से निपटा जा सके और बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के पूरे मुआशी निज़ाम में मूल खातों में कमी की जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत एक साइबर सिक्योर भारत की तश्कील की जानिब मुस्तकिल काम कर रही है। ताहम उन्होंने इस बात को उजागर किया कि साइबर जराइम को खत्म करने के सिलसिले में मूल खाते भी अब एक बड़ा चैलेंज है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत इस माह की 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स वज़राए खारजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्रिक्स में

बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला अख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Money Talk.
1: Welcome to Money Talk. My name is Rajesh Lake, and today we are diving into the rise of India's toy industry, fascinating transformation, one that's happening right in the toy box. From being heavily dependent on cheap imports, India is now emerging as a serious player in the
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। सभी सुनने वालों को शायस्ता साहित का नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर सुन लीजिए 0522223885। इसे फिर सुन लें 0522223825। तो चलिए बात करते हैं अपने इस कार्यक्रम के पहले कॉलर से। हेलो,
3: महक दोस्ती की प्यार से कम नहीं होती, और बिना प्यार के दीदी जी जिंदगी खत्म नहीं होती।
2: वाह वाह।
3: अगर लखनऊ का साथ मिल जाए दोस्तों में
2: जी,
3: तो जिंदगी किसी जन्नत से कम नहीं होती, कम नहीं होती।
2: क्या कहने, क्या कहने, क्या सुंदर विचार हैं आपके। अब इसी विचार के साथ अपना परिचय भी दे दीजिए।
3: जी, मैं जिला बांदा से 35 किलोमीटर दूर और चित्रकूट धाम से 35 किलोमीटर दूर बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह आपसे रूबरू हो रहा हूँ।
2: वाह वाह दिनकर जी, क्या अच्छी तरह से आपने सुंदर तरीके से अपना परिचय दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: सत सत राम राम भेज रहा हूँ चित्रकूट से।
2: आपको भी हमारी ओर से राम राम, आकाशवाणी की ओर से राम राम। और बताइए दिनकर जी अपने बारे में, आप क्या करते हैं।
3: बिल्कुल, खाना खा के फुर्सत हुआ था और आपका प्रोग्राम सुन रहा था, खबरें चल रही थी और फोन लगाया, फोन भी लग गया, सभी मुरादें पूरी हो गई।
2: बहुत बढ़िया रहा फिर आपका तो। और इस कार्यक्रम के लिए तो आपने गीत तो पहले ही से सोच रखा होगा कि कौन सा सुनना है।
3: गीत है, फिल्म का नाम है गौतम गोविंदा।
2: जी जी,
3: गौतम गोविंदा। बड़े नाजुक से इसको संभाला था, 18 बरस संभाला था, 19वें बरस में मैं बर्बाद हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई।
2: जी जी जी, ये अपने जमाने का सुपर हिट गाना है आपने बहुत।
3: और ये मेरे कुछ मित्र हैं, हमारे सबसे सौम और शांत मांगी लाल चंदेल जी हैं, और हमारे फूलचंद पाल जी हैं खजुराहो मनकारी से
2: जी,
3: और विजय पांडे जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, इन सभी के साथ, और हम सावस्ती से हिमांशु जी हैं, इनके सभी के साथ मैं गीत को सुनूंगा और आनंद उठाऊंगा।
2: क्या बात है, क्या बात है, मतलब आपके साथ साथ इतने सारे आपके मित्र भी ये गीत सुनना चाहते हैं, तो भाई आपसे बात करते करते ही हमने इस गीत को शुरू कर दिया है। तो चलिए आप इस गीत का अपने मित्रों के साथ आनंद

0: तो ये थी हमारे श्रोताओं की पसंद की पहली पेशकश, और हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम अब क्योंकि शुरू हो चुका है तो हमें बहुत सारे श्रोता हमारे कॉल भी कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो, नमस्कार दीदी
0: जी। नमस्कार
1: जी, मैं ग्राम दिलवाली पटार तहसील छबड़ा जिला बार राजस्थान से अमर सिंह गिल बोल रहा हूँ दीदी।
0: ओहो, अमर सिंह जी राजस्थान से आप कॉल कर रहे हैं, क्या बात है।
1: जी,
0: तो कैसा मौसम है वहाँ पर राजस्थान में इस वक्त?
1: राजस्थान अभी बहुत जोर धूप पड़ रही दीदी, यहाँ पर तो बहुत गर्मी है अभी यहाँ पर।
0: अच्छा, कुछ बारिश के आसार नहीं हुए?
1: नहीं, बारिश अभी बादल हो रहे हैं,
0: जी
1: अभी कुछ बारिश हो गई, मतलब मैं निकल गई थी, फिर पास ही मौसम बन गए,
0: जी जी अच्छा। और
1: मौसम बहुत
0: वैसे
1: खराब है अभी यहाँ पर।
0: रेडियो से कब से जुड़े हुए हैं आप?
1: मैं रेडियो से कम हो गए, मेरे 10-12 साल हो गए मेरे को रेडियो जुड़े। दीदी,
0: अच्छा, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, हेलो मेरी पसंद?
1: ये क्यों क्यों पहले नहीं सुनता था मैं मोबाइल ऐप पे, सुन बोला कि अभी मैं, मतलब मैं 3 महीना हो गया मोबाइल ऐप पे जुड़े हैं ऊपर।
0: अच्छा, तो अच्छा लगा
1: तीन
0: आपको ये
1: महीना से
0: प्रोग्राम।
1: जुड़ा हूँ मैं मोबाइल ऐप पे, तो मैं पहले रेडियो सुनता था, तो रेडियो पर आ नहीं पाता था ये।
0: जी,
1: अभी 3 महीना हुआ, 3 महीना से कॉल कर रहा हूँ, लग नहीं रहा था, आज लगा कॉल।
0: ओहो, तो क्या ये पहली बार आपकी कॉल लगी है?
1: हाँ, पहली बार लगा ये।
0: अरे वाह, तो बस इसी तरह से आप प्रयास करते रहिए, आगे भी आपकी कॉल ज़रूर लगेगी। अच्छा, पहली बार कॉल लगी है

0: तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत
1: बहुत बढ़िया लग रहा है दीदी, बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को।
0: जी, तो कौन सा गीत
1: आज
0: सुनने के
1: पहली
0: लिए
1: बार
0: आज
1: कॉल लगा तो
0: आपने
1: मैं
0: मन
1: कुछ
0: बनाया?
1: दोस्तों का नाम ले लूं।
0: हाँ जी, जरूर जरूर, लेकिन गीत का नाम तो हमें बता दीजिए पहले।
1: दीदी राजा पिक्चर हैगी, चोट
0: हाँ जी,
1: लगे तुझको तो दर्द मुझे होते, बाय बाय मकसर ये होता है,
0: वाह, गीत
1: ये
0: तो
1: गाने
0: बहुत
1: की
0: सुंदर
1: बोल है
0: है,
1: दीदी।
0: भावपूर्ण है। चलिए, अब आप अपने दोस्तों के भी नाम ले लीजिए ताकि हम जल्दी
1: जैसे
0: से गीत
1: गजराज
0: शुरू करें।
1: लोधी,
0: जी
1: नरेश प्रजापति, मांगीलाल धाकर, संदीप नामदेव, ये हमारे दोस्त है रेडियो वाले, रेडियो
0: जी,
1: सुनते हैं दीदी ये भी।
0: चलिए तो फिर हम आपके लिए और आपके मित्रों के लिए हम आपको सुनवाते हैं राजा फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद
0: नमस्कार।
1: दीदी।

0: श्रोताओं, रिश्तों के अलग अलग रंग हमें तरह तरह के गीतों में देखने को मिलते हैं। देखिए, भाई और भाई के बारे में कितनी प्यारी भावनाएं इस गीत में थी, और देखते हैं हमारे अगले कॉलर अब किस तरह की भावनाओं से भरा गीत हमसे सुनना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन साहब और कहां से। जी नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कौन साहब और कहां से?
1: गुना एमपी से, तहसील मधुसूदनगर, ग्राम कीताकड़ी से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: अमर सिंह साहू जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: और फिल्म का नाम हम आपके कौन, और गाने के बोले मायन मान मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा,
0: ये सबसे अच्छी बात की।
1: तो दोस्तों को याद कर लूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने गीत का नाम सबसे पहले बता दिया, ये बहुत बढ़िया किया। अब आप बिल्कुल अपने दोस्तों
1: तो
0: के नाम बताएं। जी,
1: और मणिलाल चंदेल जी है, अनु कुमार भट्टाचार्य जी है, गोल्डी है, पूरन जी है, रविनाथ जी है, गजराज जी है, और राम नरेश कन्यर जी है
0: जी।
1: और आपको सभी जगह डेडिकेट रखा है, और आपकी आवाज कम आ रही थी इसलिए बड़ी कम आवाज आ पा रही मेरी आपकी मेरे तक।
0: अच्छा, ये गीत आपको इतना क्यों पसंद है भाई?
1: ये गीत सुनते

0: मैम अच्छा लगता है पुराने गाने जी, 93-94 गाने अच्छे लगते हैं मैम, पुराने वाले 80-90 के भी मैं बहुत दिन से रेडियो सुनता हूँ, 80-90 से सुनता हूँ मैम।
1: ओहो, और जो लोग 80-90 के समय से सुनते हैं भाई, वो तो 90 के 80 के गाने कभी भूल नहीं पाते।
0: जी मैम, जी
1: मैम। बहुत अच्छा गीत है, अपने जमाने का सुपर हिट सॉन्ग आपने पसंद किया है
0: जी। तो चलिए, नमस्कार
1: जी, नमस्कार, आपके रेडियो सेट पे हम आपको सुनवाते हैं ये
0: सुपर हिट।
1: धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो श्रोताओं,
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, और चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और देखते हैं कि वो हमें कौन से गीत की फरमाइश भेज रहे हैं। हेलो हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। वैसे अभी हमें जिन श्रोता ने कॉल की थी, हेलो
2: हेलो,
1: चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम आपसे दोबारा संपर्क हो गया। जी अपना नाम बताएं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन साहब और कहाँ से? आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो, लगता है हमारा संपर्क एक बार फिर उनसे टूट गया।

लेकिन हमें हमें नाम पता चल चुका है कि हमसे जिन कॉलर ने अभी बात की थी वो थे अनूप कुमार भट्टाचार्य जी, और आपने जिस गीत की फरमाइश की थी वो गीत था ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो अनूप जी, हमें बहुत खेद है कि हम आपका गीत तो शामिल कर रहे हैं लेकिन आपको शामिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चलिए आप सुन सकते हैं अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ यानी कि शाइस्ता। और चलिए देखते हैं अब हमारे कौन से कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन साहब और कहाँ
1: हेलो
0: से? हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है?
1: जी मैम आ रही है।
0: हाँ जी, अपना परिचय दें।
1: मैं जिला मुरादाबाद से रजा हुसैन बोल रहा हूँ मैम।
0: रजा हुसैन जी, जी रजा हुसैन जी,
1: जी
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: जी शुक्रिया मैम।
0: जी, आप रेडियो के आकाशवाणी के कब कितने पुराने लिसनर हैं?
1: आपकी आवाज़ मुझे कम मिल रही है तो मैं गाने के बोल बता दूंगा। फिल्म का नाम बता दूं मैम पहले।
0: जी जी बताइए।
1: फिल्म का नाम है प्रेम रोग और गाने के बोल हैं मेरी किस्मत में तू नहीं शायद और कुछ दोस्त हैं मेरे।
0: जी।
1: मेरा भाई सईद हुसैन, छोटा भाई आदिल हुसैन और मकसद हुसैन है और लाल मोहम्मद अंसारी है और दोस्त हैं आप और हम। थैंक
0: जी, अच्छा, कुछ अपने
1: यू
0: बारे में
1: मैम।
0: तो बताएं हमें रजा हुसैन जी कि आप
1: अच्छा
0: क्या
1: अच्छा
0: करते हैं।
1: मैम हम देखिए जिला मुरादाबाद एक गांव पड़ता है ये ग्राम मिलक बुचपुरा सा।
0: जी
1: या हमारे अगर आप लखनऊ से इधर कहीं इधर जाएंगे दिल्ली तो हमारा रेलवे स्टेशन पड़ेगा दलपतपुर।
0: अच्छा जी,
1: यहीं रहते हैं दलपतपुर के पास में। और हम
0: ओके,
1: मैम अपने हम गांव में रहते हैं तो खेती किसानी भी करते हैं हम मैम।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। और साथ में खेती किसानी के साथ तो रेडियो का बड़ा पुराना नाता है भाई।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी,
1: मैम।
0: अब आपको मेरी आवाज़ मिल रही है पूरी तरह?
1: जी हाँ अब भी कट कट के मिल रही है। और
0: अच्छा
1: देखिए
0: जी
1: जब मैं खेती किसानी करता करते
0: जी
1: हैं तो रेडियो हम अपने खेत में ले जाते हैं उसको ऑन करके।

0: देश
1: जी जी
0: तरफ
1: जी
0: रहते थे, हम
1: यही तो
0: गाने
1: खूबी
0: सुनते
1: है
0: रहते हैं। आप
1: जी जी
0: जी
1: रेडियो की देखिए यही तो खूबी है कि किसी काम में बाधा
0: जी
1: नहीं
0: मैम
1: डालता है, बल्कि और
0: जी
1: ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको सपोर्ट मिलता है। तो चलिए
0: जी
1: रजा
0: बिल्कुल,
1: जी, समय का ध्यान रखते हुए हम आपको
0: थैंक यू मैम।
1: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओ, समय कम है और हम जल्दी से बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। कौन साहब और कहाँ से?
1: मैं ग्राम बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश के मांगीलाल धाकर बोल रहा हूँ मैम।
0: मांगीलाल जी, नमस्कार। आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, समय का अभाव है, आप जल्दी से पहले अपने गीत की फरमाइश हमें भेज दीजिए।
1: मेरा गीत है आज, फिल्म का नाम है दिल। उसमें ये
0: ओहो
1: गीत है, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कहाँ
0: जी,
1: जाके मेरा दिल खो गया।
0: वाह, गीत तो बहुत अच्छा है। और
1: जी
0: देखिए
1: मैम, आपकी नींद में सोता हूँ मैं तो, कार्यक्रम में लगाता रहता हूँ कभी
0: जी
1: कभी।
0: जी जी
1: जी मैम, और कुछ मित्र को नाम लेना चाहता हूँ मैम।
0: जल्दी जल्दी बताते चलिए। देखिए, मैंने आपका गीत पीछे से शुरू कर दिया है। हाँ
1: हाँ
0: बताइए।
1: जी, नरेश प्रजापति जी हैं, नरेश प्रजापति हैं, अमर सिंह भिलाला जी हैं, और गजराज सिंह लोधी जी हैं,
0: चलिए, एकाध भूल
1: सुनील
0: चूक माफ,
1: सुनील
0: एकाध रह
1: सुनील
0: जाए, कोई बात नहीं।
1: जी जी मैम।
0: हाँ जी, फिलहाल आप गीत अपनी पसंद का सुनिए और आगे आपसे फिर भी जुड़े रहेंगे अगले कार्यक्रम में, एक बार फिर से आपसे बात होगी। तब तक के
1: जी
0: लिए
1: मैम,
0: आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, ठीक है?
1: जी जी
0: ओके
1: जी
0: जी, नमस्कार। सुनिए अपनी पसंद का गीत रेडियो सेट पे।
1: जी

0: तो श्रोताओं, हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अपनी पसंद के गीत। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए शाइस्ता जाहिद को इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ देवराज। श्रोताओं, यूं तो क्रिकेट किसी भी फॉर्मेट में खेला जाए, ये खेल सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और न केवल आकर्षित करता है बल्कि लोग इसे दीवानगी की हद तक पसंद करते हैं। और जब बात आईपीएल की होती है तो भारत में ये क्रिकेट का सबसे बड़ा मनोरंजक और व्यावसायिक मंच बनता है। ये टूर्नामेंट युवा भारतीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने, आर्थिक मजबूती और खेल को ग्लैमर के साथ जोड़कर वैश्विक स्तर पर भारत का नाम रोशन करने का अवसर प्रदान करता है। आईपीएल न केवल क्रिकेट प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन करता है बल्कि पर्यटन, खानपान, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में भारी राजस्व उत्पन्न करता है। ये भी कहा जा सकता है कि ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि भारत में क्रिकेट की संस्कृति को बदलने वाली एक व्यावसायिक क्रांति है। क्यों है लोगों में और खिलाड़ियों में आईपीएल के प्रति इतना जुनून और इसका क्या महत्व है भारतीय अर्थव्यवस्था में, आइए जानते हैं शरद श्रीवास्तव से।
2: भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग आज की तारीख में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत की एक बेहद लोकप्रिय और चर्चित इवेंट बन चुकी है, जिस पर पूरी दुनिया की उत्सुकता भरी निगाहें टिकी रहती हैं। और महज भारतीय क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, पूरे क्रिकेट जगत में सभी खेल जानकार, विशेषज्ञ, पूर्व खिलाड़ी तथा आम खेल प्रेमियों के मध्य इस वक्त यदि चर्चा का कोई सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है तो वह आईपीएल ही है। वर्ष 2008 में अपने प्रारंभ के समय जिस आईपीएल की वैश्विक ब्रांड वैल्यू करीब $2 बिलियन यानी 1700 करोड़ रुपए हुआ करती थी, वह आज बढ़कर लगभग 6 गुनी यानी $12 बिलियन हो चुकी है, जो कि भारतीय मुद्रा में तकरीबन 10,200 करोड़ रुपए बैठती है। वर्ष 2008 में बीसीसीआई ने कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमों के साथ आईपीएल के आयोजन की शुरुआत की थी। यह वो समय था जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का चलन प्रारंभ ही हुआ था। उस वक्त तक विश्व स्तर पर क्रिकेट में मुख्यतः 5 दिन के टेस्ट मैच और 50 ओवर प्रति पारी वाले एक दिवसीय मुकाबले ही लोकप्रिय हुआ करते थे। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठा था कि क्या T20 फॉर्मेट वाली आईपीएल व्यावसायिक रूप से अपने कदम जमा पाएगी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ यह सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई। आईपीएल न केवल व्यावसायिक रूप से बेहद कामयाब साबित हुई बल्कि इसकी आशातीत सफलता ने पूरी दुनिया में T20 क्रिकेट को भी लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आईपीएल की सफलता ने दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी व्यावसायिक कामयाबी की एक नई राह दिखाई और नतीजा यह हुआ कि आने वाले सालों में दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी आईपीएल की तर्ज पर प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीगों के आयोजन शुरू हो

इस तरह के कुछ प्रमुख टूर्नामेंटों में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग, इंग्लैंड की इंग्लिश क्रिकेट लीग, दक्षिण अफ्रीका की SA20, पाकिस्तान की PSL और वेस्टइंडीज की कैरेबियन प्रीमियर लीग के नाम लिए जा सकते हैं। इनके अलावा श्रीलंका, USA, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के क्रिकेट बोर्डों ने भी अपने यहाँ प्रोफेशनल T20 लीग के आयोजन प्रारंभ किए। ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल IPL की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्था।

0: ये अलग बात है कि इन तमाम लीगों में से अधिकांश व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई और कुछ सीजन के बाद बंद हो गई। दरअसल आईपीएल की जबरदस्त व्यावसायिक कामयाबी के लिए जिम्मेदार है इसका सुव्यवस्थित ढांचा और अनुभवी प्रोफेशनल टीम, जो कि मैदानों और क्रिकेटरों के प्रबंधन से लेकर प्रसारण, टिकट बिक्री, प्रचार और आर्थिक मुद्दों तक आयोजन के प्रत्येक पहलू को बड़े प्रभावी ढंग से संभालती है। इस सामूहिक प्रयास का ही परिणाम है कि साल दर साल आईपीएल की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और व्यावसायिक कामयाबी में बढ़ती ही जा रही है। आज यह न सिर्फ विश्व की सबसे महंगी क्रिकेट लीग बन चुकी है बल्कि दुनिया भर की तमाम प्रोफेशनल खेल लीगों में भी चौथे नंबर पर आ गई है। ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आईपीएल ने इंग्लैंड की मशहूर फुटबॉल लीग इंग्लिश प्रीमियर लीग को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 2008 में 8 टीमों के साथ आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। उस वर्ष शेन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर खिताब जीता था। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें कुल मिलाकर 5-5 बार आईपीएल चैंपियन बनने में कामयाब रही हैं और उनके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 बार आईपीएल खिताब जीता है। समय के साथ आईपीएल में उतरने वाली टीमों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, साथ ही टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि और विभिन्न टीमों द्वारा अपने प्रमुख खिलाड़ियों को दी जाने वाली अनुबंध राशि भी कई गुना बढ़ चुकी है। 2008 के पहले सीजन में जहां टूर्नामेंट का टाइटल प्रायोजक बनने के लिए डीएलएफ समूह ने प्रतिवर्ष 40 करोड़ रुपए की बोरी लगाई थी, वहीं आज टाटा समूह ने 2024 से 2028 तक के 5 वर्षों के प्रायोजन अधिकार 500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष में हासिल किए हैं। लेकिन आईपीएल की सबसे बड़ी खासियत यह है, अपनी लंबी कामयाब यात्रा के दौरान अब यह महज एक खेल टूर्नामेंट नहीं रहा है बल्कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुका है, जिसका लाभ असंख्य व्यक्तियों, कॉरपोरेट हाउसेस को होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी इससे कई रूपों में लाभान्वित हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं उन युवा क्रिकेट प्रतिभाओं की, जिनके लिए आईपीएल के जरिए से सर्वोच्च मंच पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक सुनहरा मौका हाथ लगा। इस मंच पर सही वक्त पर चमक जाने वाले कई युवा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के द्वार भी खुलते देखे गए और इनमें देशी और विदेशी दोनों ही तरह की प्रतिभाएं शामिल थी। विभिन्न टीमों द्वारा अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी अच्छी खासी रकम में अनुबंधित किए जाने की जो परिपाटी आईपीएल ने शुरू की, उसकी बदौलत क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले युवाओं की संख्या में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। युवा प्रतिभाओं के अलावा खेल से अवकाश ले चुके पूर्व दिग्गजों के लिए भी आईपीएल ने संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। ऐसे तमाम नामचीन खिलाड़ी आज कमेंटेटर, तकनीकी विशेषज्ञ, कोच के रूप में विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़कर अपनी आजीविका चला पा रहे हैं। अब बात करते हैं देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर आईपीएल के प्रभाव की। एक प्रमुख अखबार के सर्वे के मुताबिक आईपीएल के जरिए से देश में लगभग 12.5 लाख रोजगारों का सृजन हुआ है। इनमें होटल, पर्यटन, टैक्सी, खानपान तथा विज्ञापन सेक्टर में बने अवसर शामिल हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अप्रैल और मई के 2 महीनों में, जबकि आईपीएल का सीजन अपने पूरे शबाब पर होता है, उस दौरान देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखी जा रही है। सीजन के दौरान विभिन्न फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेल रहे विदेशी स्टार खिलाड़ियों के प्रशंसक उनका प्रदर्शन देखने के लिए निश्चित रूप से भारत पहुंचते हैं। यदि देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी में आईपीएल के प्रत्यक्ष योगदान की बात करें तो अब तक आईपीएल प्रबंधन, आयकर व जीएसटी के रूप में भारत सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपए की कर राशि अदा कर चुका है। इसे भी आईपीएल के एक सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आईपीएल आज की तारीख में महज एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक व्यापक जीवन दृष्टि अर्थात परसेप्शन की शक्ल ले चुका है। भारतीय अर्थव्यवस्था और जनजीवन पर तो वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभाव डाल ही रहा है, साथ ही इसके अनूठे बिजनेस मॉडल ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्डों को भी समृद्धि की एक नई राह दिखाई है।
1: श्रोताओं, खेल न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं बल्कि मानसिक मजबूती के साथ व्यक्तित्व विकास में भी ये योगदान करते हैं। इनसे ऊर्जा का सदुपयोग होता है और आजकल खेल एक शानदार करियर विकल्प भी बन गया है जो युवाओं को न केवल नाम बल्कि अच्छी आय भी प्रदान करता है। बस आवश्यकता है प्रतिभाओं को खोजकर एक मंच देना और कुशल प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। जनपद मथुरा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है,

0: सुनते हैं जिला खेल अधिकारी राकेश यादव से की गई ये बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जिला खेल कार्यालय से जुड़कर जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
2: हमारे यहाँ सुबह और शाम, सुबह 5:30 बजे से 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक प्रशिक्षण का कार्य चलता है, जिसमें हमारे पास 8 कोचेज हैं। फुटबॉल, हॉकी, फेंसिंग, जूडो, बॉक्सिंग, कुश्ती, एथलेटिक्स, ये सारे और स्विमिंग के हम लोग 8 लोग हैं। तो बच्चे आते हैं यहाँ रोज़ प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने यहाँ चले जाते हैं, और उनको जितने भी हमारे कोचेज हैं सब बहुत डिसिप्लिन और अनुशासित हैं। बच्चों को स्किल पर और उनकी फिजिकल फिटनेस पर काम किया जाता है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं।
1: और वर्तमान में हमारे ज़िले के खिलाड़ियों के लिए विभिन्न खेलों से संबंधित किस प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं?
2: हमारे पास सभी ग्राउंड आधुनिक तरीके से बने हुए हैं, जैसे फेंसिंग का है, उसमें पिस्ट वगैरह है जो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। जूडो है, जूडो का हॉल है, मैट्स हैं। कुश्ती है, कुश्ती का हॉल है, मैट्स हैं। तो सारे उन मानकों पर है जो एक बाहर खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेता है। तो वो हमारी सरकार साथ में बहुत अच्छे सहयोग कर रही है, खेलों को आगे बढ़ा रही है। खेलों में बहुत सारे पुरस्कार सरकार के द्वारा, सरकार नौकरियां भी खेल कोटे से देने लगी है, ये सब है।
1: जिला खेल कार्यालय से खिलाड़ी किस प्रकार से जुड़ सकते हैं इसके बारे में और बताएं।
2: बड़ी सरल प्रक्रिया है, हमारे यहाँ जो कोचेज हैं 8 खेल के या और अन्य खेल के, तो उनमें आता है बच्चा एक 18 साल से नीचे है, वो 210 रुपये उसका पूरे साल का कार्ड बनता है। जो हमारे यहाँ फीस एक है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे लेके 210 रुपये में पूरे साल का एक कार्ड वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने लगता है। सुबह शाम आके वो कार्ड आइडेंटिटी कार्ड रहता है, मिनिमम फीस है, आ सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा कि जिस खेल में इच्छुक है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उस पर फिर हमारे कोचेज उस बच्चे पे काम करते हैं, काम करके वो बच्चा हमारे जिले के लिए, हमारे मंडल के लिए, हमारे राज्य के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए खेलता है।
1: जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर आते हैं सीधा अपना यहाँ जुड़ सकते हैं या वो किसी स्कूल से संबंधित होना चाहिए?
2: ऐसा कुछ नहीं है किसी स्कूल से, लोकल बच्चे गार्जियंस आते हैं अपने घर से बच्चे लाते हैं। जरूरी नहीं है कि स्कूल का बच्चा है, सारे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं तो वो इंडिविजुअल गार्जियंस ले आता है। कोई स्कूल नहीं आ रहा है, उनकी संख्या नहीं हो रही है, तो वो सीधा आ सकता है, तो ऐसी कोई उसमें पाबंदी नहीं है।
1: वर्तमान में किस खेल में विशेष रूप से खिलाड़ियों की रुचि देखने को मिल रही है?
2: यहाँ जो बेल्ट है हमारी मथुरा की या मथुरा के आसपास की, वो कुश्ती वाली है। तो कुश्ती यहाँ का एक समझ लीजिए जनपद का खेल है, यहाँ के लोकल खेल है, तो कुश्ती में ज़्यादा बच्चों की रुचि रहती है। तो यहाँ हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी कुश्ती का ही चल रहा है, तो उसमें बच्चे लाभान्वित होते हैं, खेलने जाते हैं।
1: और इसके अलावा और किन किन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है?
2: एथलेटिक्स में है, फुटबॉल में है, सारे बच्चे जूडो में है, बैडमिंटन में भी है, सारे खेलों में बच्चे पर्याप्त हैं।
1: यहाँ पर स्टेडियम में एक तरणताल बना हुआ है, उसमें क्या विशेष सुविधाएं, क्या उसके लिए यहाँ विशेष कोच रखे हुए हैं?
2: बिल्कुल, स्विमिंग का मैं खुद हूँ, तो मैं बच्चों को कोचिंग देता हूँ। लाइफ गार्ड है, उसकी प्रक्रिया आजकल में पूरी हो जाएगी, रेगुलर चालू हो जाएगा। अभी भी स्विमिंग पूल चल रहा है, उन बच्चों को एडमिशन है जो बच्चे स्विमिंग जानते हैं या स्विमिंग के खिलाड़ी हैं, उन सारे बच्चों को हम एडमिशन दे रहे हैं और चला रहे हैं स्विमिंग।
1: तैराकी में भी क्या कुछ विशेष रुचि देखने को मिल रही है?
2: हाँ, तैराकी में जो बच्चे हैं वो आते हैं, अपने कंपटीशन में भाग भी लेते हैं और अपना प्रैक्टिस करते हैं।
1: सरकार के द्वारा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ हमारे जनपद के खिलाड़ियों को किस प्रकार मिल रहा है?
2: पूरे इंडिया स्तर पर खेलो इंडिया भारत सरकार की स्कीम है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई है पूरे देश में। तो हर एक जनपद में अलग अलग खेल है। हमारे यहाँ कुश्ती का चयन हुआ है, जो कुश्ती खेल है वहाँ 30 बच्चों का चयन किया जाता है और उन 30 बच्चों को रेगुलर अभ्यास किट वगैरह हमारी सरकार द्वारा दिलाई जाती है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाता है।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन उनको एक सही मंच नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीणांचल के क्षेत्रों में भी खेलों को लेकर क्या कोई विशेष योजना है?
2: जी बिल्कुल, विशेष योजनाएं इस बार जो विधानसभा स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा, जिले स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा, वो उसी का भाग है जो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं वो पहले विधानसभा स्तर पर भाग लेंगे।

0: फिर सांसद खेल स्पर्धा हुई जिले स्तर पे, और इसके बाद जोन स्तर पे आगरा में जोन होगी, फिर इसके बाद स्टेट होगी। ऐसे उन बच्चों को अवसर दिए जाते हैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए और अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए।
1: मथुरा जनपद में मोहन पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा अन्य जगह भी स्टेडियम वगैरह या अन्य सुविधाएं खेलों से संबंधित मौजूद हैं?
0: जी, जैसे हमारा एक समकक्ष विभाग है, हम लोग मिलके काम करते हैं, जिला युवा कल्याण अधिकारी, वो माट में उनका स्टेडियम है, कोसी में है, एक शेरगढ़ में है, तीन उनके बड़े स्टेडियम बने हुए हैं, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके व्यूज वगैरह हैं तो उसको देखते हैं।
1: जो खिलाड़ी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन वो प्रतिभावान हैं, तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या सरकार द्वारा उन्हें कुछ सहायता या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है?
0: जी बिल्कुल, कराई जाती है जूनियर स्तर पर, सब जूनियर स्तर पर और सीनियर स्तर पर। हमारे यहाँ एक क्लब क्रीड़ा कोष की व्यवस्था है, जो खेल साथी पोर्टल पे अच्छे बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट से लेके सिक्स प्लेस तक पोजीशन है, वो राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रतिभावान हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, उनको एक क्लब क्रीड़ा कोष के माध्यम से आर्थिक सहायता उनके उपकरण खरीदने पर, उनके भोजन पर, उनके अभ्यास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा एक कोष बनाया गया है, उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ से चार तीरंदाजी में बच्चे हैं और दो कुश्ती में हैं, उनको लाभ अभी तक हम 14 लाख रुपए दे चुके हैं तीरंदाजी पे और लगभग 4 लाख रुपए कुश्ती पर।
1: इसमें राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से भी कुछ सहायता मिलती है?
0: बिल्कुल, जब बच्चा अच्छा अचीव करने लगता है तो छात्रवृत्तियाँ हैं, खिलाड़ी को पुरस्कार राशि है जो हमारा विभाग सब देते हैं।
1: आगे आने वाली कुछ विशेष बड़ी प्रतियोगिताओं के बारे में बताना चाहेंगे?
0: हम इस साल 26-27 में बहुत सारी यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, बहुत सारे ट्रायल्स होंगे, बहुत सारे जिले और मंडल स्तर की प्रतियोगिताएं होंगी, तो उनमें हम लोग प्लान कर रहे हैं कैसे कराना है।
1: यहाँ जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं तो समय समय पर उनको प्रतियोगिताओं के बारे में और ट्रायल्स के बारे में सूचित किया जाता है?
0: बिल्कुल, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से खिलाड़ियों का जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनका प्रचार प्रसार करके अधिक से अधिक जनमानस तक हमारी बात पहुंचे, सरकार की बात पहुंचे, सरकार खेल के रूप में बड़ा काम कर रही है तो वो बच्चे पार्टिसिपेट करें और प्रतियोगिताओं में भाग लें।
1: ऐसे अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देती हैं और उनको खेलों से दूर रखते हैं? देखा जा रहा है कि आजकल खिलाड़ी जो हैं खेलों में भी बड़ा देश का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं, तो क्या संदेश रहेगा इसको लेकर आपका?
0: खेल में अनुशासित रहें बच्चे और अपना बेस्ट करें, ये नहीं देखें कि ये आइडियल, सबके आइडियल होते हैं, उनके भी आइडियल हैं, उन आइडियल को पकड़ें। जैसे आप एथलेटिक्स के हैं तो पीटी ऊषा वगैरह या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे, हमारे थ्रोअर हैं अभी चोपड़ा जी, उनका इतिहास देखें कि उतना कितना ही वर्क करते थे जब ये सफल हुए, तो उस पर फोकस करना पड़ेगा बच्चों को जो ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो वो ज़रूर वो अचीव करेंगे जो उनने किया। नीरज चोपड़ा ने जो अचीव किया, हमारी उड़न परी कहलाने वाली पीटी ऊषा थी, उनने बहुत अचीव किया, हमारे नामी ग्रामी आप जानते ही हैं, दद्दा ध्यानचंद का नाम सुना होगा आपने, वो तो महान हस्ती थे, उनके जन्म दिवस पे हम लोग 29 अगस्त को बढ़िया खेल डे बनाते हैं और बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं।

0: और अब श्रोताओं खेल की सुर्खियों के साथ हैं हेमेंद्र कृष्ण शर्मा।
1: खेलों में सबसे पहले बात खेल हॉकी की। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी नवनीत कौर और पुरुष टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 1980 के मास्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ

खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल हैं। 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब बलजीत सिंह पुरस्कार विधु देवी खारी बम को दिया गया, जबकि हॉकी इंडिया प्रगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजीत पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्ले पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को 5-5 लाख का चेक दिया गया। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 48 टीमें तैयार हो गई हैं। पिछले 2.5 साल से क्वालिफाइंग प्रक्रिया चल रही थी। उत्तरी मेक्सिको के मॉन्टरी में मंगलवार को खेले गए अंतर महाद्वीपीय प्लेऑफ में इराक ने बोलीविया को 2-1 से हराकर 48वां और अंतिम स्थान हासिल किया। यह मैच बोस्निया हर्जेगोविना की यूरोपीय प्लेऑफ में 4 बार के चैंपियन इटली पर पेनल्टी शूटआउट में उलटफेर भरी जीत के कुछ घंटे बाद खेला गया। क्वालिफाइंग के आखिरी दिन यूरोप की 8 टीमें 4 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। विश्व कप के लिए क्वालिफाइंग करने वाली एक अन्य टीम कांगो थी, जिसने मेक्सिको में जमैका को 1-0 से हरा दिया। स्वीडन, तुर्की और चेक गणराज्य तीनों ने यूरोपीय प्लेऑफ में क्वालिफाइंग किया है। स्वीडन ने पोलैंड को 3-2 से, तुर्की ने कोसावा को 1-0 से, चेक गणराज्य ने डेनमार्क को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया। विश्व कप 11 जून से अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा कि विश्व कप फुटबॉल में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में जबरदस्त कारनामा किया। वे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के चैंपियन बन गए हैं। 22 साल के अल्कराज ने पुरुष एकल के फाइनल में दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-2, 7-5 से हराया। अल्कराज का यह 7वां ग्रांड स्लैम है। पहली बार उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रचा था। सर्बिया के जोकोविच का 25वां ग्रांड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। हालांकि जोकोविच के पास हर रिकॉर्ड है। उन्होंने रोजर फेडर और राफेल नडाल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनके पास सेरेना विलियम्स से एक और अधिक खिताब है। सेरेना के नाम 23 एकल खिताब हैं। जोकोविच टेनिस के दमदार खिलाड़ी रहे हैं। कोर्ट पर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। उनकी सर्विस और बैकहैंड ड्राइव देखते ही बनता है। जोकोविच से आने वाले समय में भी बेहतरीन खेल देखने को मिलेगा। भारत में 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हॉकी और क्रिकेट को जरूर शामिल किया जाएगा, जबकि कबड्डी, योगासन, खो खो और मलखम जैसे पारंपरिक भारतीय खेलों में से 2 को जगह दी जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे की अध्यक्षता में इसके प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह मेजबान शहर अहमदाबाद में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। हमारे पारंपरिक खेलों में से कबड्डी, मलखम, खो खो और योगासन में से 2 को शामिल करने का प्रयास है। ग्लासगो में इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में बजट में कटौती के कारण क्रिकेट और हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। खेल मंत्री ने कहा कि भारत में होने वाले खेलों में इसकी वापसी होगी। भारत में अब खेलों को प्राथमिकता में रखा जा रहा है। भारत में 2010 के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है। भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी। इसके लिए सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। भारत में 2013 के बाद रेस नहीं हुई है। ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के 10 वर्षीय आरित कपिल स्पेन के मेनारका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के अंतिम दौर में ऑस्ट्रेलिया के सैमुअल असाका के साथ ड्रॉ खेलकर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर IM नाम हासिल करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आरित ने यह उपलब्धि 10 साल 7 महीने की उम्र में हासिल की। प्रतियोगिता में आरित का सबसे शानदार प्रदर्शन अर्जेंटीना के 12 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर ओरो के खिलाफ रहा, जिन्हें शतरंज की दुनिया का मेसी कहा जाता है। टिपे सिंगेमन एंड कंपनी शतरंज टूर्नामेंट के 31वें संस्करण में भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरेगेसी ने शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ड्रॉ पर रोक दिया। मैच के दौरान

0: शासन ने क्वीन साउंड पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने सटीक बचाव करते हुए 24वीं चाल चलकर पास्ट प्यादे के खतरे को खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोड़े को सक्रिय करते हुए स्थिति को सरल बनाया। रुक के आदान प्रदान के बाद सफेद मोरों के पास जीत का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। ये टूर्नामेंट क्वालिफाइंग शतरंज के सबसे मजबूत आयोजनों में से एक माना जाता है। इसमें 2024 के विजेता नॉडरबैक, 2021 के चैंपियन जॉर्डन वान, फॉरेस्ट और स्वीडन के नंबर एक खिलाड़ी निल्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी खिताब के लिए मुकाबला कर रहे हैं। क्रिकेट के खेल में आईपीएल का 19वां संस्करण चल रहा है। ये टूर्नामेंट मई के अंत तक चलेगा। इस समय आईपीएल टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में चल रहा है। प्रत्येक टीम प्लेऑफ में आने के लिए संघर्ष कर रही है। टूर्नामेंट में अब तक 50 से ज्यादा मैच हो चुके हैं। इस समय में खेले जा रहे सभी टीमों के सभी मुकाबले टूर्नामेंट के लिए अहम माने जा रहे हैं। अभी तक पहले नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद, दूसरे स्थान पर पंजाब किंग्स, तीसरे स्थान पर आरसीबी और चौथे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स जैसे टीमें हैं। इस बार मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी ने सभी को प्रभावित किया है। सूर्यवंशी ने आकर्षक क्रिकेट खेली है। सूर्यवंशी बहुत जल्द भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा, संजू सैमसंग, रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की दो बार मैच में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स अभी तक अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। आईपीएल क्रिकेट अपने चरम पर है। कौन जीतेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आईपीएल क्रिकेट भारतीयों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। खेल जगत में यह महीना उपलब्धियों और संघर्ष से भरा रहा। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, खेल दर्पण के आज के इस अंक में बस इतना ही। आलेख वाचन और प्रस्तुति सहयोग देवराज कृष्ण दीक्षित का था। प्रस्तुत करता थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र पर तैयार किया गया।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है अजय कुमार के स्वर में राग जोग में ध्रुपद गायन।

Da na na.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अजय कुमार का राग जोग में ध्रुपद गायन। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो घड़ी की घड़ी में रात के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख

0: बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे

0: consumption and avoid unnecessary purchase of gold. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad tonight, chasing a target of 169 runs. Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11:10 और 10 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी और अंतिम सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।